ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज एवं न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। आज दिन सोमवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 8 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा प्रारंभ होती है।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज दो दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स शामिल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के तीन दिन जोन टू सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देशभर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 मई को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनः परीक्षा के लिए केंद्रों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। एनटीए ने बताया है कि परीक्षा शहर की सूचना पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है और इसे केवल उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र के शहर के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जा रहा है। पुनः परीक्षा 21 जून को होगी। सीबीआई वर्तमान में इस मामले की जांच कर रही है। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है।

पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉक्टर एम नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि कर्नाटक विधान परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटल्य उम्मीदवार हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने जुलाई महीने में तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है। संगठन की वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। ओपेक प्लस के 7 सदस्य देशों सऊदी अरब, रूस, अल्जीरिया, इराक, कजाकिस्तान, कुवैत और ओमान ने अगले महीने प्रतिदिन लगभग 1,88,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है।

0: यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गेरोस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में सबसे पहले आइए सुनते हैं संवेद स्वर में ये देश गान।

श्रोताओं, भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आकाशवाणी आगरा से प्रसारित किया जा रहा है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम भक्ति रचना मुकेश की आवाज में।

0: अभी आप सुन रहे थे मुकेश अश्विनी भिड़े, अनुराधा पौंडवाल और साथियों की आवाज़ों में कुछ भक्ति रचनाएं। इसी के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अभी यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम चिंतन का। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के विचार।
1: खुदा पर विश्वास हर धर्म की बुनियादी कल्पना है। हर धर्म की यही शिक्षा है और मनुष्य की प्रकृति में ये बात मौजूद है। ईश्वर के अस्तित्व के विषय में मतभेद के बावजूद किसी को संदेह नहीं। कर्म से भटकाव की आखिरी सीमा दुराचार है और विश्वास मार्ग से भटकना ही नास्तिकता है। इसलिए दुराचार और नास्तिकता का कोई प्रकार ऐसा नहीं था जिससे अपना जीवन खाली रहा हो, और दुराचार स्वयं भी पूर्ण रूप से नास्तिकता है। दुनिया किसी के लिए कभी नहीं बदल सकती, लेकिन अगर तुम स्वयं बदल जाओ तो उसको भी बिल्कुल बदला हुआ पाओगे। तुम्हारी दुनिया तुम्हारे लिए युवावस्था में तो ऐसी न थी जैसी अब बुढ़ापे में नजर आ रही है। मिलन की शाम में यही रोज वाली दुनिया कितनी रोमांचकारी लगती थी, अब विरह की सुबह में वो बात कहाँ। विधाता की एक अनजानी शक्ति कब से अपनी ओर खींच रही थी, परंतु भुलावे की दुर्बलता ने दामन थाम रखा था। सत्य की ज्योति कब से आवरण उठा चुकी थी, परंतु अपनी ही अनुचित दृष्टि का पर्दा रुकावट बना हुआ था। कृपा करने के लिए अदृश्य स्वयं पुकार रहा था, परंतु मन वासनाओं के झमेलों में खोया हुआ था। इश्क की असफलताओं ने अंतिम चोट की तो अनायास ही आंखें खुल गईं। देखा तो एक दूसरे ही संसार का आकर्षण सामने था। न वो आसमान था, न वो जमीन, न वो संसार था, न वो वासना। जिस हाथ ने यहाँ तक पथ प्रदर्शन किया था स्वयं उसको भी ढूंढा तो पता न था। मानो वो एक दीपक था कि जब तक रात के अंधियारे में चलते रहे वो पथ प्रदर्शक बना रहा। जब भोर हो गई तो आवश्यकता न थी, बुझा दिया गया। आँखों का तो ये हाल था, कान लगाए तो अंदर और बाहर हर ओर एक ही आवाज उठ रही थी। वही दुनिया जिसमें अपने आप को भूलकर अपने हर जलवे से आंखों को, अपने हर नगमे से कानों को मस्ती के निरंतर निमंत्रण दिए, अब उसका कोना कोना चप्पा चप्पा होशियारी और दूरदृष्टि का आगार था। कण कण को बोलते हुए महसूस किया, पत्ते पत्ते पर कोई संदेश अंकित देखा। फूलों ने जबान खोली, पत्थरों ने उठ उठ कर संकेत किए, धूल ने उड़ उड़ कर मोती बरसाए। आसमानों को बार बार उतरना पड़ा कि सवालों का जवाब दें। धरती को कई बार उछलना पड़ा कि आकाश के तारे तोड़ लाए। फरिश्तों ने बाजू थामे कि कहीं पांव न लड़खड़ाए। सूरज चिराग लेकर आया कि कहीं ठोकर न लग जाए। सब ने आवरण उतार फेंके, सारे पर्दे छलनी हो गए, सबकी आंखों में

0: कहानियाँ थीं। रात जैसे खो गई, अंधकार की खोज की मगर न मिला। निद्रा का पता पूछा तो किसी ने न बताया। सोया उत्साह जाग उठा और दिल फिर नई शक्ति और प्रेरणा के साथ वापस आ गया। इस जीते जागते संसार में जो कुछ है उनमें से कोई भी न था जिसकी भ्रिकुटी पर तेवर या नयनों में चंचलता हो। सबकी जवानी बोलती हुई, सबके संकेत स्पष्ट, सबकी रेखाएं उभरी हुई थीं। न कोई होठ बंद रहा, न कोई प्रकाश छिपा रहा। आँखों और कानों के द्वारा जो कुछ प्राप्त हुआ, दिल की व्यापकता ने सबको समेट लिया।
1: अभी आप सुन रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के विचार। इसी के साथ ही कार्यक्रम चिंतन अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आपसे थोड़ी ही देर में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार होंगी वाणी जयराम, संगीत होगा सतीश भाटिया का। 6:45 पर सुनेगा कार्यक्रम खेती की बातें, जिसमें आज आप सुनेंगे कृषि लागत कम कैसे करें विषय पर डॉक्टर ओपी राजपूत की वार्ता। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में सुबह 7:10 पर सुनेगा चिकनगुनिया रोग एवं बचाव विषय पर डॉक्टर H.L. राजपूत की वार्ता। आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास आप सुन सकेंगे सुबह 7:31 पर। सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि सुना जा सकेगा 8:45 पर। और पुरानी फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा आप सुन सकेंगे सुबह 9:25 पर।

लोक संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:45 पर सुनेगा कृष्ण गोपाल शर्मा के गाए कुछ लोकगीत। आपके साथ संगत करता होंगे हारमोनियम पर देवेंद्र कुमार शर्मा, ढोलक पर राम अवतार, बांसुरी पर ज्वाला प्रसाद और नक्कारा पर ईश्वर सिंह खींची। सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरसरिता का प्रसारण समय रहेगा सुबह 10:00। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे पंडित राम कृष्ण का क्लैरिनेट वादन, आप प्रस्तुत करेंगे राग मंगल भैरव। कार्यक्रम आज के कलाकार सुना जा सकेगा सुबह 11:00। कार्यक्रम में सुनेगा फिल्म अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया के बारे में कुछ बातें कुछ गीत। कार्यक्रम आप सुन सकेंगे सुबह 11:30 पर। कार्यक्रम का विषय रहेगा नई गहराई को जागृत करें। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी सुना जा सकेगा दोपहर 12:00। 12:30 पर सुनेगा नई फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए तराने। घर संसार कार्यक्रम में दोपहर 1:15 पर बहनें सुनेंगी नई पीढ़ी की परवरिश पर चर्चा, मेरी माटी मेरा देश, फैशन ब्यूटी, रेसिपी टाइम और गीत संगीत के अलावा सुनेगा चित्रांशी की वार्ता, विषय होगा जल संरक्षण में महिलाओं का योगदान। दोपहर 1:45 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार होंगे आशा भोसले और गुलाम अली। उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 2:30 पर आप सुन सकेंगे शिप्रा बोस का राग मिश्र खमाज में गायन। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत सुना जा सकेगा 2:45 पर। दिन में 3:00 सुनिएगा लोकप्रिय फिल्म

संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन। संध्याकालीन सभा में शाम 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर संध्या।

युवाणी कार्यक्रम में 5:30 पर युवा साथी सुनेंगे हम बदलेंगे युग बदलेगा पर चर्चा नई पहल। साथ ही सुनवाई जाएगी गुंजन सिंह की वार्ता, विषय होगा पृथ्वी के जीवन तंत्र का हृदय है हमारे महासागर। कार्यक्रम ग्राम्यालोक में 6 बजे ग्रामीण अंचल के श्रोता सुनेंगे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना पर चर्चा। साथ ही सुनवाई जाएगी धान की तैयारी विषय पर सौरभ उपाध्याय से श्री कृष्ण की बातचीत। लोकगीतों के अलावा सुनेगा नई किस्में के बारे में, साथ ही बताया जाएगा मंडी भाव और दी जाएगी मौसम की जानकारी। इसी के साथ ही कार्यक्रम विवरण यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। श्रोताओं, इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:35 हो रहे हैं। आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान। गायक कलाकार हैं वाणी जयराम, संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

देवाधिदेव महादेव तथा पार्वती का धाम पर्वत श्रेष्ठ कैलाश, जिस पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो सभी ऋतुओं में समान रूप से हरा भरा रहता है, शीतल स्निग्ध छाया देता है, जहां मंद सुगंधित वायु बहती रहती है। ये स्थान शिवजी का विश्राम स्थल है। इसी वृक्ष की शीतल छाया में शिव इस मुद्रा में बैठे हैं, जैसे स्वयं शांत रस मूर्तिमान हो उठा हो। सुअवसर पाकर पार्वती वहां आती हैं। आदर सत्कार की भंगिमा के साथ शिवजी ने उन्हें अपनी बाई ओर आसीन किया। पार्वती को अनायास अपने पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। स्वामी की प्रशस्ति करते हुए उन्होंने श्री रघुनाथ की कथा सुनाने का अनुरोध किया।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, गायक कलाकार थी वाणी जयराम और संगीत था सतीश भाटिया का। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम खेती की बातें का। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं कृषि लागत कम कैसे करें विषय पर डॉक्टर ओपी राजपूत की वार्ता।
1: अपने देश में कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति वर्ष 1966-67 से आई और हरित क्रांति युग में कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। फलस्वरूप खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता आई। आज हम 212 मिलियन टन से ऊपर खाद्यान्न उत्पादन कर रहे हैं। हरित क्रांति की सफल कहानी के पीछे जो राज है वह है अधिक उपज देने वाली किस्में, सिंचाई में अत्यधिक जल का उपयोग, रसायन उर्वरकों एवं कृषि रसायनों का अत्यधिक प्रयोग जिनसे उत्पादन बढ़ा। निश्चय ही अत्यधिक उर्वरकों के प्रयोग ने खेती को उर्वरक आधारित बना दिया है। भूमि जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है। कृषि रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग हुआ आदि ने भूमि की दशा बिगाड़ी है। उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग हुआ मानव पर रसायन के कुप्रभाव पड़ने लगे, पर्यावरण बिगड़ा आदि दुष्परिणाम दिखाई देने लगे हैं। साथ ही कृषि लागत मद जैसे उर्वरक, सिंचाई जल, बीज आदि महंगे होते चले जा रहे हैं। जहां कृषकों को खेती में अधिक लागत लगानी पड़ती है वहीं तुलनात्मक खर्च एवं मुनाफा अनुपात घटता जा रहा है जो निश्चय ही एक चिंतनीय विषय है। अतः इन विषम परिस्थितियों में हमें चाहिए कि कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नई कृषि तकनीकों एवं स्वदेशी अनुभवों को अपनाकर भविष्य में खेती की जाए ताकि उनके प्रयोग से बगैर उत्पादन में कटौती के कृषि लागत में कमी की जा सके। कुछ प्रमुख नई विकसित कृषि तकनीकें इस प्रकार हैं। समय से बुवाई एवं उचित पौध संख्या से अधिक उपज ली जा सकती है। ये बगैर खर्च के मद हैं। कहावत है आगिल खेती भागे जाए, पाछिल खेती पाछे जाए। अतः किसी भी फसल की समय से बुवाई कर दी जाए तो उस फसल से 50% सफलता मिलना सुनिश्चित है। फसलों में विशेषकर गेहूं में क्रिस क्रॉस दोनों तरफ से धन के निशान पर बुवाई विधि से खरपतवारों की संख्या में काफ़ी कमी आ जाती है। अतः खरपतवारों द्वारा फसल से ली जाने वाली चुंगी जैसे खाद, पानी एवं निकाई गुड़ाई में लगी मजदूरी में काफ़ी बचत की जा सकती है। दीर्घकालीन फसल चक्र में बदलाव से मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता बनी रहती है और फसलों में कीट रोग भी कम लगते हैं। अर्थात 100 रोगों का एक इलाज फसल चक्र में फेर बदलाव। प्रायः कृषक बगैर उचित फसल चक्र अपनाए खेती करते रहते हैं जो गलत है। अतः कृषकों को ऐसे फसल चक्र अपनाना चाहिए कि जिनमें दलहनी फसल अवश्य हो। इससे भूमि मजबूत होती है और उर्वरक की बचत भी होती है। फफूंदनाशी, कीटनाशी एवं राइजोबियम कल्चर से हम काफ़ी बचत कर सकते हैं। अर्थात FRI का सिद्धांत

अपनाया जाए। ऐसा करने से फसलों की लागत में काफ़ी कमी की जा सकती है। जैव उर्वरक जैसे राइजोबियम कल्चर, दलहनों जैसे अरहर, मूंग, उड़द, चना, मटर, मसूर आदि में, एजोटोबैक्टर गेहूं, सरसों, आलू आदि में, एजो स्पाइरिलम बाजरा, ज्वार, मक्का में आदि द्वारा 2 से 2.5 ग्राम कल्चर प्रति किलोग्राम बीज द्वारा बीज उपचार से 20 से 25 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर अर्थात 1 कट्टा यूरिया लगभग की सीधी बचत की जा सकती है और उपज में 10 से 15% की वृद्धि भी होती है। PSV यानी फास्फेट कल्चर के इतनी ही मात्रा में प्रयोग से फास्फोरस तत्व की 50% बचत संभव है। ये जैव उर्वरक मात्र 7 से 8 रुपये प्रति पैकेट यानी 250 ग्राम वजन के की दर से उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग इफ़को नेफेड द्वारा उपलब्ध हैं। ट्राइकोडर्मा फफूंदी कल्चर द्वारा फसलों में लगने वाली फफूंद पर नियंत्रण से कम लागत में अधिक मुनाफा लिया जा सकता है, जिसे बीजोपचार 4 से 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा कल्चर प्रति किलोग्राम बीज के साथ, मृदा उपचार में 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति 100 से 150 किलोग्राम सड़ी कंपोस्ट, पर्णीय छिड़काव में 3 से 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर तथा सब्जियों, धान आदि की पौध की जड़ों को 250 ग्राम 1 पैकेट कल्चर प्रति 10 से 15 लीटर पानी में घोलकर 5 से 10 मिनट तक डुबोकर करना चाहिए। ऐसा करने से फफूंद रोग नहीं लगेंगे। 0.5% जिंक सल्फेट 21% जस्ता के पत्तियों पर घोल छिड़काव से मात्र 10% खर्च में तुलनात्मक 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर भूमि में प्रयोग के प्रायः सभी फसलों में, विशेषकर तिलहनों में जैसे राई, सरसों, सूरजमुखी, तिल आदि में 10 से 15% उपज आसानी से बढ़ाई जा सकती है। फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं क्रिटिकल स्टेजेस पर सिंचाई देने से कम सिंचाई जल से अधिक उपज ली जा सकती है। वर्तमान में सिंचाई जल उपलब्धता की एक समस्या है। ऐसा करने से जल की काफ़ी बचत कर खेती को सस्ता बनाया जा सकेगा। फुब्बारी या स्प्रिंकलर सिंचाई एवं ड्रिप सिंचाई, बूंद बूंद कर टपक सिंचाई अपनानी चाहिए ताकि जल की काफ़ी बचत की जा सके। सरकार द्वारा ऐसी सिंचाई हेतु अनुदान भी दिया जाता है। उर्वरकों का संतुलित प्रयोग किया जाए। धान यानी अन्न वाली फसलों में 4:2:1, दलहनों में 1:2:1, नत्रजन, फास्फोरस, पोटास तत्व दिए जाएं। उर्वरकों के सही प्रयोग हेतु मिट्टी की जांच के आधार पर ही दें। उर्वरक क्षमता बढ़ाने हेतु हल्की भूमि में नत्रजन 2 से 3 बार में, फास्फोरस व पोटास तत्वों की पूरी मात्रा 1 ही बार में, बीज बुवाई से पूर्व कूड़ों में बीज के 5 से 6 सेंटीमीटर नीचे दें। प्रायः कृषक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करते हैं, अतः इस विधि से उर्वरक दें तो उर्वरकों की मात्रा में काफ़ी बचत की जा सकती है। एकीकृत पोषण प्रबंधन, एकीकृत खरपतवार प्रबंधन, एकीकृत सिंचाई प्रबंधन एवं एकीकृत कीट व्याधि प्रबंधन से खाद, सिंचाई जल, खरपतवार नियंत्रण पर बगैर उपज के कटौती के कृषि लागत को काफ़ी हद तक घटाया जा सकता है। जैव कीटनाशी, बायोपेस्टिसाइड जैसे नीम का तेल, तंबाकू, रीठा, गेंदा, तुलसी, मेंथा के अर्क के प्रयोग से कम खर्च में सफल कीट नियंत्रण कर रसायनों के मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों से भी बचा जा सकता है। नीम का तेल 5 से 6 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर कीट नियंत्रण हेतु फसलों पर छिड़कें। गौमूत्र एवं नीम की पत्तियों का अनुपात 4:1 में बने कीटनाशी द्वारा कीट नियंत्रण उपयोगी है, जिस पर न के बराबर खर्च आता है। इसे आसानी से बनाया जा सकता है। छाछ या मट्ठी के प्रयोग के लिए 10 से 12 लीटर मट्ठा जो खट्टा हो प्रति हेक्टेयर 200 से 250 लीटर पानी में घोलकर सभी फसलों में जैसे कपास, सब्जियां या अन्य फसलों में फूल आने के बाद 2 से 3 बार छिड़काव करने से कीट नियंत्रण के साथ साथ उपज में वृद्धि, उत्पाद जैसे फल बीज की गुणवत्ता में सुधार आता है, चमक

0: आती है। यह कम खर्चीली स्वदेशी वैज्ञानिकों द्वारा स्वीकृत विधि है।
1: अभी आप सुन रहे थे कृषि लागत कम कैसे करें विषय पर डॉक्टर ओपी राजपूत की वार्ता। इसी के साथ ही कार्यक्रम खेती की बातें यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, सुबह के 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हमारा अगला प्रसारण।

0: राज्यैः सह सहकारं सुदृढं कर्तुं द्विदिवसीय यात्रायै यूरोपीय संघस्य उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलम् अद्य असमराज्यस्य गुवाहाटी नगरम् आगमिष्यति। यूरोपीय संघस्य मतानुसारं चर्चाः तेषु विषयेषु केन्द्रिताः भविष्यन्ति यत्र यूरोप देशस्य तथा पूर्वोत्तरस्य च समानहितानि सन्ति। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः श्वः नवदिल्ल्यां भूपत्तन प्रबन्धन व्यवस्थायाः उद्घाटनं करिष्यति। गृहमन्त्रालयेन उक्तं यत् LPMS इत्यस्य आरम्भः भारतस्य आधुनिक तन्त्रज्ञान सक्षम सीमा प्रबन्धन व्यवस्थायाः कृते महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। भारतीय मल्ल क्रीडकाः ह्यः मंगोलियायां ओपन क्रीडायां भारतस्य कृते द्वे स्वर्ण पदके द्वे कांस्य पदके च विजितवन्तः इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY को लागू करने वाला 36वां राज्य बनने जा रहा है। ये विश्व की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार राज्य में ABPMJAY योजना लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर आज हस्ताक्षर करेगी। इस समझौता ज्ञापन पर नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाएंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन के 3 दिन के जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देश भर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य उपस्थित होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की सूचना जारी कर दी है। एजेंसी के अनुसार पुनर्परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित होगी। NTA ने कहा कि परीक्षा शहरों की जानकारी प्रवेश पत्र नहीं है, इसे केवल अभ्यर्थियों को उनके परीक्षा केंद्र वाले शहर की जानकारी देने के लिए जारी किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से महेश केवट और कर्नाटक से डॉ एम नागराज को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने घोषणा की कि कर्नाटक विधानसभा परिषद चुनाव के लिए लिंगराज पाटिल और रघु कौटिल्य उम्मीदवार होंगे। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज 2 दिन के दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा, हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य

सेवा और फार्मास्यूटिकल से सेक्टर शामिल हैं। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल चुका है। संघर्ष से होर्मूज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ुरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गोरेस में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेवियो कोबली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माहे, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है।

0: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं चिकुनगुनिया रोग एवं बचाव विषय पर डॉक्टर H.L. राजपूत की वार्ता।
1: दोस्तों, आज हम बात करेंगे चिकनगुनिया और डेंगू की। ये इस मौसम में हर वर्ष होता है। जैसा कि आप सभी लोगों ने एक दो साल से ही चिकनगुनिया सुना होगा, लेकिन ये बीमारी बहुत पुरानी है। ये फ्रेंच पैथोलॉजिस्ट के नाम पे बीमारी है। चिकनगुनिया के लक्षण हैं, हमारे सारे शरीर में जकड़न होती है, तीव्र बुखार होता है, चकत्ते पड़ जाते हैं सारे शरीर पर, जोड़ों में दर्द होने लगता है। दर्द अक्सर बड़े जोड़ों में होता है, घुटने के हैं, आपके कलाई के हैं, कोहनी के हैं, इन जोड़ों में दर्द होता है और ये बहुत समय तक होता है। बुखार उतरने के बाद या बीमारी ठीक होने के भी 6 महीने से लेकर के 2 साल तक इसका दर्द बना रह सकता है। शरीर में अकड़न कम से कम बुखार ठीक होने के बावजूद भी 1-2 महीने तक रह सकती है, लेकिन उस सबसे बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसका कारण होता है फैल्सीपैरम मलेरिया, जो मादा मच्छर होता है उसके काटने से होता है। तो हमें फैल्सीपैरम मलेरिया या जो मच्छर है उससे अपने को बचाना है। मलेरिया की एक साइकिल होती है, जो हमारे ब्लड में पहुंचने के बाद वो कीटाणु हमारी जो रक्त कणिका हैं उनको नष्ट कर देती हैं, हमारे शरीर में खून का बनना बंद हो जाता है। एक रक्त कणिका होती है जिसको हम प्लेटलेट कहते हैं, उसकी मात्रा जब इन कीटाणुओं की वजह से एक निश्चित लेवल से, क्रिटिकल लेवल से कम हो जाती है, तो हमारे शरीर में रक्त का जमना बंद हो जाता है। उसकी वजह से हर जगह से ब्लीडिंग या रक्त स्राव होने लगता है और वो एक घातक बीमारी हो जाती है। उसमें हमें तुरंत अपने रक्त की निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से जांच करानी चाहिए और अगर एक क्रिटिकल लेवल से नीचे अगर प्लेटलेट चली गई हैं तो हमें प्लेटलेट्स या रक्त चढ़वाना चाहिए और अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इसके बचाव के उपाय यही है कि हमें बच्चों को या खुद पूरी बांह के कपड़े पहनने चाहिए, मच्छरों से जितना हो सकता है बचाव करना चाहिए। हमें जहाँ जहाँ मच्छरों की ब्रीडिंग होती है खुले स्थान पर, जहाँ सीलन भरा स्थान हो, रद्दी हो, रद्दी के अखबार हो, खुली जगह पानी हो, कूलर का पानी हो, उन सबको हमें नियमित अंतराल से बदलते रहना चाहिए। कहीं पर भी कूड़ा करकट इकट्ठा नहीं होते रहना चाहिए। शाम को हमें इस तरह के स्प्रे करने चाहिए जिससे मच्छर घर से बाहर रहें और घर में अपना खिड़की दरवाजे, जो कि एक आम सी बात है जिनसे हम मच्छरों को बचा सकते हैं, उससे दूर रखना चाहिए। और जब ये चिकनगुनिया बीमारी हो ही गई है, आपकी लक्षण से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से प्रूफ भी हो गया है, तो हमें तुरंत ही अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करके इसका निदान कराना चाहिए। इससे बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मित्रों, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, चिकनगुनिया और डेंगू, इन दोनों में एक बहुत बारीक सी लकीर होती है। जब चिकनगुनिया में प्लेटलेट की मात्रा एक निश्चित सीमा से नीचे चली जाती है तो हम उस बीमारी को डेंगू कह देते हैं। डेंगू दो तरह से होता है, एक हेमरेजिक, एक नॉन हेमरेजिक, जिसमें रक्त श्राव होने लगता है, शरीर के हर अंग से खून बहने लगता है। उसकी वजह यही है कि शरीर में प्लेटलेट कम हो गई, खून जिसकी वजह से खून जमता है वो नहीं जमता है, तो शरीर में से खून की मात्रा कम हो जाती है और ये एक इमरजेंसी हो जाती है। हालांकि आपको एक चीज़ और कह दूं कि डेंगू अभी तक अपने इस क्षेत्र में बहुत कम केसेस पाए गए हैं। हम प्रूवन केसेस की बात कर रहे हैं, जिनको हम सिद्ध नहीं करते हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं, बहुत कम केसेस पाए गए हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ज़्यादातर मामलों में ये केसेस चिकनगुनिया के हैं। चिकनगुनिया बहुत बिनाइन बीमारी है, साइलेंट बीमारी है, इससे बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं। हाँ, ये अवश्य है कि इसके जो जोड़ों के दर्द है,

0: है, शरीर की अकड़न है, ये महीनों तक मरीज को परेशान करती है।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर H.L. राजपूत की वार्ता, विषय था चिकुनगुनिया रोग एवं बचाव। इसी के साथ ही कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं संवेद स्वर में ये देश गान।

अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वर में ये देश गान। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7:18 हो रहे हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे लखनऊ केंद्र से हमारा अगला प्रसारण। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। एपीजे अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ।

0: तब खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में प्रबुद्ध जनसंवाद कार्यक्रम में विकास कार्यों की सराहना की, कहा रक्षा उत्पादन और अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र बन रही है प्रदेश की राजधानी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 और उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 की लखनऊ में की समीक्षा। अधिकारियों को नई स्टार्टअप नीति 2026 तैयार करने के दिए निर्देश। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आगरा में 2 दिवसीय राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन को किया संबोधित, कहा केंद्र और प्रदेश सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत बनाए रखने के लिए है दृढ़ संकल्पित। और उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक और समकक्ष पदों के लिए आज से शुरू होगी भर्ती परीक्षा। 10 जून तक 2 पालियों में 1180 केंद्रों पर होने वाली लिखित परीक्षाओं के लिए किए गए हैं विशेष इंतजाम। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित केंद्र सरकार के कई मंत्रीगण ने कल अलग अलग स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सरकार की उपलब्धियों के बारे में चर्चा की। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ के कैंट विधानसभा क्षेत्र के मंडल 1 में आयोजित प्रबुद्ध जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ी है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ रक्षा उत्पादन और अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र बन रही है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कानपुर देहात के अकबरपुर में प्रबुद्ध वर्ग से संवाद किया और केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर चर्चा की। श्री चौधरी ने पार्टी के जिला कार्यालय में संगठनात्मक बैठक कर कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से भी संवाद किया। इस अवसर पर उन्होंने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मंडल स्तर तक योग शिविर आयोजित करने के निर्देश भी दिए।
2: भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव काम करता रहा, 365 दिन काम करता है, चुनाव हो या चुनाव ना हो। ये सही है कि चुनाव जब आता है तो थोड़ा सा और रणनीति चेंज करनी, और मुझे पूरा विश्वास है अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, और जो 12 साल तक प्रधानमंत्री जी ने काम किया है और जो 10 साल तक योगी जी ने काम किया है।
1: केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने वाराणसी में पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों, गरीबों, महिलाओं और युवाओं का विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार पेपर लीक मामले पर सख्त कार्रवाई कर रही है और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
3: मोदी जी का नेतृत्व सबको साथ में ले जाने वाला नेतृत्व है, देश के विकास का नेतृत्व है, किसान है, गरीब है, महिला है, युवा है, सबको न्याय देने वाला उनका नेतृत्व है। उनके पास मेजोरिटी है और नीट एग्जाम में जो भी मतलब गड़बड़ हुई है, नीट घोटाले में या नीट पेपर भुट्टी में जो भी लोग है उनको बख्शा नहीं जाएगा।
1: केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर में जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 के विभिन्न प्राविधानों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
4: मुख्यमंत्री ने प्रदेश को देश का अग्रणी स्टार्टअप गंतव्य बनाने के लिए नई स्टार्टअप नीति 2026 तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में स्टार्टअप्स को प्रारंभिक चरण से लेकर विस्तार और वैश्विक प्रति

0: स्पर्धा तक हर स्तर पर आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाए। नई नीति में भरण पोषण भत्ता, प्रोटोटाइप अनुदान, सीड कैपिटल सहायता तथा पेटेंट एवं गुणवत्ता प्रमाणन से जुड़े प्रोत्साहनों को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला उद्यमियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर उद्यमियों तथा पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड क्षेत्र के स्टार्टअप्स को विशेष प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए भी उपयुक्त प्राविधान शामिल किए जाएं। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
1: एक अन्य बैठक में मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 की समीक्षा करते हुए कहा कि डेटा, एआई और डिजिटल अवसंरचना भविष्य की अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार हैं। प्रदेश ने वर्ष 2030 तक 2 गीगावाट से अधिक की अतिरिक्त डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल आगरा में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में चौथे स्तंभ की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। केंद्र और प्रदेश सरकार इसे मजबूत बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है। श्री मौर्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 10 जून को सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने का गौरव मिलने पर अग्रिम बधाई दी।
2: मैं इसकी माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं और यह देश के लिए गौरव की बात है। और अभी हम मानते हैं कि 2029 तक ही नहीं, आगे भी अभी कई चुनावों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ही हम सबका नेतृत्व करेंगे और देश को विकसित बनाएंगे। विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश।
1: उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक और समकक्ष पदों के लिए आज से 10 जून तक 75 जिलों में 1180 केंद्रों पर 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के अपर सचिव भर्ती सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया है कि ये परीक्षाएं 2 पालियों में होंगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: भर्ती परीक्षा में 32,000 से अधिक पदों के लिए 30 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की भागीदारी को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे ने गोरखपुर और लखनऊ जंक्शन के बीच 2 विशेष अनारक्षित ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। अभ्यर्थी बिना टिकट बुकिंग के आसानी से यात्रा कर सकेंगे। आकाशवाणी समाचार कक्ष से दीपाली सिंह।
1: उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक और समकक्ष पदों की भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को सरकार ने बस के किराए में भी 50% छूट देने का फैसला लिया है। इस छूट का लाभ अभ्यर्थियों द्वारा अपना एडमिट कार्ड दिखाने पर दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं।
4: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: कल से घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। प्रदेश भर में एक बार फिर तेज धूप, भीषण गर्मी और उमस से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग ने आज से लेकर अगले 2 दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की आशंका जताई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में प्रबुद्ध जनसंवाद कार्यक्रम में विकास कार्यों की सराहना की। कहा, रक्षा उत्पादन और अनुसंधान का महत्वपूर्ण केंद्र बन रही है प्रदेश।

0: देश की राजधानी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 और उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 की लखनऊ में की समीक्षा। अधिकारियों को नई स्टार्टअप नीति 2026 तैयार करने के दिए निर्देश। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आगरा में दो दिवसीय राष्ट्रीय पत्रकार सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, केंद्र और प्रदेश सरकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत बनाए रखने के लिए है दृढ़ संकल्पित। और उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक और समकक्ष पदों के लिए आज से शुरू होगी भर्ती परीक्षा। 10 जून तक दो पालियों में 1180 केंद्रों पर होने वाली लिखित परीक्षाओं के लिए किए गए हैं विशेष इंतजाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओ, इस समय स्टूडियो की घड़ी में 7:31 हो चुके हैं। प्रस्तुत है आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास। श्रोताओ, कार्यक्रम में सबसे पहले कुछ खोए हुए व्यक्तियों की सूचना सुन लीजिए। थाना कुरावली मैनपुरी से प्राप्त सूचना के अनुसार रवीना पुत्री अरविंद सिंह विगत 27 अप्रैल 2026 से लापता हैं। ये ग्राम घाटमपुर मैनपुरी की रहने वाली हैं। रवीना की आयु 19 वर्ष, ऊंचाई 5 फुट 1 इंच, रंग गोरा और चेहरा गोल है। ये सलवार सूट पहने हुए हैं। रवीना के बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया थाना कुरावली जनपद मैनपुरी के पते पर सूचित करें। थाना बेवर मैनपुरी से प्राप्त सूचना के अनुसार तनु पुत्री मनोज कुमार विगत 31 मार्च 2026 से लापता हैं। ये मोहल्ला ब्रह्मनान बेवर मैनपुरी की रहने वाली हैं। तनु की आयु 17 वर्ष, कद 5 फुट, रंग गेहुआ और चेहरा अंडाकार है। ये सफ़ेद रंग का टॉप, नीले रंग का पैंट पहने हुए हैं। तनु के बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया थाना बेवर मैनपुरी के पते पर सूचित करें। थाना बेवर मैनपुरी से प्राप्त एक अन्य सूचना के अनुसार ममता देवी पत्नी सर्वेश कुमार विगत 30 मार्च 2026 से लापता हैं। ये ग्राम बहरामऊ मैनपुरी की रहने वाली हैं। ममता देवी की आयु 28 वर्ष, ऊंचाई 5 फुट, रंग सांवला और चेहरा गोल है। ये पीले रंग की साड़ी ब्लाउज पहने हुए हैं। ममता देवी के बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया थाना बेवर जनपद मैनपुरी के पते पर सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों की सूचना समाप्त हुई।

आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। श्रोताओं, आइए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की मुख्य सूचनाओं पर। केंद्र व्यवस्थापकों के साथ कर्मचारियों की भी होगी बायोमेट्रिक। शहर के 28 केंद्रों पर सोमवार यानी आज से आयोजित होने वाली पुलिस आरक्षी भर्ती लिखित परीक्षा की सुरक्षा को लेकर इस बार अहम बदलाव किया गया है। अभ्यर्थियों के अलावा इस बार केंद्र व्यवस्थापक और परीक्षा कराने आने वाले कर्मचारियों की भी बायोमेट्रिक होगी। लिखित परीक्षा सोमवार से दो पालियों में आयोजित की जा रही है, जिसमें एसीपी, निरीक्षक, उप निरीक्षक समेत 1000 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। प्रत्येक केंद्र का प्रभारी निरीक्षक को बनाया गया है। रविवार को डीएम ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि व्यवस्था में लापरवाही मिली तो संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होगी। भर्ती परीक्षा को लेकर त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है, जिसमें सुरक्षा, परीक्षा और गोपनीयता है। तीनों कार्य की जिम्मेदारी अलग अलग एजेंसियों को सौंपी गई है। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र की जांच के बाद बायोमेट्रिक फेस रिकॉग्निशन के बाद ही परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। इससे पूर्व परीक्षा में केंद्र व्यवस्थापक और उसके कर्मचारियों की बायोमेट्रिक नहीं होती थी। डीसीपी सिटी ने बताया कि इस बार केंद्र व्यवस्थापक और उसके कर्मचारियों की भी बायोमेट्रिक अनिवार्य कर दी गई है। हालांकि उन्हें अभ्यर्थियों के साथ लाइन में नहीं लगना होगा, उनकी व्यवस्था अलग से की गई है। केंद्रों के बाहर 1000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, जो कि केंद्रों के आसपास फोटो स्टेट की दुकानों समेत अन्य स्थानों पर भी नजर रखेंगे। वहीं रविवार दोपहर डीएम ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। लू व गर्मी को देखते हुए साफ सफाई, विशेष रूप से विद्युत प्रकाश व्यवस्था, शीतल जल एवं मेडिकल टीम की व्यवस्था के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिकायत पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। केंद्रों पर सवा घंटे पहले पहुंच जाएंगे प्रश्न पत्र। प्रत्येक पाली की परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र पहुंचाने का समय भी निर्धारित है। इससे पहले या बाद में प्रश्न पत्र केंद्रों पर नहीं आएंगे। केंद्रों पर सवा घंटे पहले प्रश्न पत्र पहुंच जाएंगे। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे है। सुबह 8:45 से 9 बजे के दौरान पेपर लॉकर रूम में पेपर लाकर रूम से केंद्र पर भेजे जाएंगे। इसी तरह दूसरी पाली 3 से 5 बजे तक है, जिसमें 1:45 से 2 बजे के बीच केंद्रों पर पेपर भेजे जाएंगे। 8 से 10 जून तक होने वाली परीक्षा में प्रत्येक दिन 25,536 अभ्यर्थी शामिल होंगे। प्रत्येक पाली में 12,768 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे।

झूठ। पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को रोडवेज ने विशेष सुविधा दी है। अभ्यर्थियों को परीक्षा से एक दिन पहले और एक दिन बाद तक किराए में 50% तक छूट मिलेगी। रोडवेज द्वारा अभ्यर्थियों के लिए 228 बसों को संचालित किया जा रहा है। रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि पुलिस भर्ती परीक्षा में आने वाले परिचालक को अपना प्रवेश पत्र दिखाकर यह छूट पा सकेंगे। यदि इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीन से टिकट जारी नहीं होता है तो परिचालक डिपो प्रभारी से फोन पर संपर्क करके उनसे अनुमति लेकर मैनुअल टिकट दे सकते हैं। रोडवेज ने आगरा में 4 डिपो, ISPT, सैटेलाइट बस अड्डा, ईदगाह, बिजलीघर और मथुरा में भूतेश्वर बस अड्डा और पुराना बस अड्डा पर हेल्प डेस्क बनाई है। प्रत्येक डिपो के प्रभारी हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं।

रेलवे पुलों पर लगेंगे प्लास्टिक रबर वाले स्लीपर। रेलवे अब स्टील गार्डर वाले रेल पुलों पर पारंपरिक कंक्रीट या लकड़ी के स्लीपरों की जगह विशेष रूप से तैयार कंपोजिट स्लीपर का इस्तेमाल करेगा। प्लास्टिक रबर वाले इस स्लीपर को 25 टन तक के भारी एक्सेल लोड को आसानी से वहन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इससे यात्री ट्रेन 160 और मालगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गुजर सकेगी। वर्तमान में स्टील के भारी पुलों से जब ट्रेनें गुजरती हैं तो कंक्रीट के स्लीपर भारी कंपन और झटके को पूरी तरह सोख नहीं पाते हैं। इसे पटरियों और पुल के पूरे ढांचे पर भारी दबाव पड़ता है और इनमें अधिक मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है। लकड़ी के स्लीपर मौसम की मार, दीमक और नमी के कारण जल्दी सड़ जाते थे। इन दोनों समस्याओं के समाधान के रूप में अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन की सिफारिश पर इन कंपोजिट स्लीपर को मंजूरी दी गई है। यह ट्रेनों के तेज कंपन और भारी दबाव को आसानी से सोख लेती हैं, जिससे पुलों पर झटके बेहद कम लगेंगे। पटरियों के टूटने या ट्रैक फ्रैक्चर होने का जोखिम लगभग खत्म हो जाएगा।

समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण किए बिना कॉलेजों में आवेदन कर रहे अभ्यर्थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के आवासीय संस्थान और संबद्ध कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। कॉलेजों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन से पहले विश्वविद्यालय के समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है, मगर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण के बिना ही ऑनलाइन आवेदन कर दिया है। इनके आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। विश्वविद्यालय के आवासीय संस्थान और आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी में संबद्ध कॉलेजों में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय के समर्थ पोर्टल पर ₹400 का शुल्क जमा कर पंजीकरण अनिवार्य है। समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण करने के बाद एक अभ्यर्थी 50 अलग अलग पाठ्यक्रमों

और कॉलेजों के लिए आवेदन कर सकता है। समर्थ पंजीकरण के बाद मिलने वाली आईडी से ही कॉलेजों में प्रवेश के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने समर्थ पोर्टल पर स्नातक में प्रवेश के लिए अभी आवासीय संस्थान और आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी में संबद्ध स्थायी मान्यता प्राप्त कॉलेजों की 75,000 सीटों को खोला गया है, मगर तमाम छात्रों ने समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण किए बिना ही कॉलेजों की वेबसाइट पर स्नातक में प्रवेश के लिए आवेदन कर दिया है। इसके चलते अभी तक समर्थ पोर्टल पर 20,000 ही पंजीकरण हुए हैं। समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण कम होने के चलते विश्वविद्यालय प्रशासन ने अंतिम तिथि जारी नहीं की है, वहीं कॉलेजों ने भी प्रवेश की अंतिम तिथि जारी नहीं की है। डीन एकेडमिक का कहना है कि समर्थ पोर्टल में पंजीकरण के बाद ही आवासीय संस्थान और कॉलेजों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। समर्थ पोर्टल के पंजीकरण के बिना आवेदन ना करें। श्रोताओं, सूचनाओं का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन पहले सुन लेते हैं ये गीत।

श्रोताओ, कार्यक्रम आसपास आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। दिन में धूप से हाल बेहाल, रात को आंधी के साथ बौछार। शहर में रविवार को उमस और धूप से शहरवासी दिन भर बेहाल रहे। रात 8 बजे आंधी आफत लेकर आई, राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ी। इसके बाद बौछार शुरू होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को आसमान साफ रहने और धूप निकलने का पूर्वानुमान जताया है। शहर में रविवार को सुबह आंशिक बादलों की वजह से उमस अधिक रही। सुबह 8:30 बजे आर्द्रता 63% तक पहुंच गई। बादल छटने के बाद धूप निकल आई। दिन चढ़ने के साथ धूप तेज होती चली गई। घर से बाहर निकलने पर तेज धूप आंखों को चुभी। रात 8 बजे के करीब मौसम में बदलाव आया। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी आने से हर तरफ धूल के गुबार छा गए। इसे जनजीवन प्रभावित रहा। रात 9 बजे के करीब बौछार शुरू हो गई। अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.8 डिग्री सेल्सियस रहा। सामान्य से अधिकतम तापमान 0.3 डिग्री सेल्सियस अधिक और न्यूनतम तापमान 2.6 डिग्री सेल्सियस कम रहा। शनिवार को अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.0 डिग्री सेल्सियस रहा था। मौसम विज्ञानी ने बताया कि सोमवार से तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी। 11 जून को लू चल सकती है।

आगरा मथुरा समेत 14 जिलों में आज तेज हवा और वज्रपात का अलर्ट। प्रदेश में एक बार फिर गर्मी का असर तेज होने लगा है। करीब 10 जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। मौसम विभाग ने सोमवार को अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा समेत 14 जिलों में तेज हवा, गरज चमक और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। साथ ही आने वाले दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होने की संभावना जताई है। मौसम विज्ञानी के अनुसार प्रदेश में अगले 2 दिनों में उमस बढ़ने

की संभावना है। श्रोताओं, ये थी आज की मुख्य सूचनाएं, और आइए अब आनंद लेते हैं इस गीत का।

श्रोताओ, इसी के साथ ही कार्यक्रम आसपास अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओ, सुबह के 8 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हमारा अगला प्रसारण।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बनें। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। अप्रैल में हुए युद्ध विराम के बाद ईरान ने पहली बार इसराइल पर मिसाइल हमले किए। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना लागू होने जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार होगा।
4: पश्चिम बंगाल केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना से जुड़ रहा है। आज दिल्ली में केंद्र सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा। आज की इस हस्ताक्षर के साथ पश्चिम बंगाल 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ने वाला अंतिम राज्य बन जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार ने 2018 से आयुष्मान भारत परियोजना शुरू की थी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इसे राज्य में लागू नहीं किया। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा ने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद राज्य के लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। काश्मीर नाहर, आकाशवाणी कोलकाता।
3: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
5: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में बाद दोपहर 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
3: इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, देश भर की 15 विधानसभाओं के पीठासीन और उपपीठासीन अधिकारी तथा विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विकसित भारत 2047 का सपना जनभागीदारी, नवाचार, उद्यमिता और सामूहिक संकल्प के माध्यम से ही साकार हो सकता है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने युवा पीढ़ी से नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आग्रह किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
6: NTA द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। NTA ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए NTA की आधिकारिक

0: वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने कल नई दिल्ली में बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इंडोनेशिया भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी

0: की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ है। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा कि गहन सभ्यतागत संबंधों पर आधारित भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। दोनों नेताओं ने कल 8वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता भी की। इस दौरान दोनों पक्षों ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। दोनों नेताओं ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, शिक्षा, काउंसलर मामले, सांस्कृतिक और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संबंधों पर बातचीत की। इससे पहले दिन में श्री सुगियोनो ने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी की आगामी इंडोनेशिया यात्रा के लिए उत्सुक हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों और महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
3: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
2: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
4: हमने जो पौधा लगाया उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं, ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
2: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33-35% तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि राज्य के सीमावर्ती जिलों से लगभग 4800 अवैध प्रवासियों को बांग्लादेश भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध आप्रवासन एक गंभीर समस्या है और उनकी सरकार इसके लिए समन्वित प्रयास कर रही है। जम्मू के पर्यटन निदेशालय ने रामबन जिला प्रशासन के सहयोग से रविवार को गोल उपमंडल के सुरम में नरसिंहा क्षेत्र में एक दिन के गोल मेले का आयोजन किया। इसमें रामबन और रियासी जिलों के 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 2 दिन का मेगा लेवेंडर महोत्सव कल संपन्न हुआ। डोडा जिले में चौथी बार हुए इस महोत्सव में लेवेंडर और सुगंधित पौधों की खेती करने वाले किसानों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, औद्योगिक भागीदारों, खरीदारों, विक्रेताओं और अन्य हितधारकों ने हिस्सा लिया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। इसराइल के रक्षा बलों के अनुसार ईरान ने इसराइल पर कई मिसाइलें दागी हैं। एक रिपोर्ट।
5: 8 अप्रैल को हुए युद्ध विराम के बाद इसराइल पर यह ईरान का पहला हमला है। हमले के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इसराइल के प्रधानमंत्री

0: बेंजामिन नेतन्याहू से कहेंगे कि वे जवाबी हमला ना करें। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा वह चाहते हैं कि ईरान बातचीत के लिए सामने आए। इसराइल ने बताया है कि वायु रक्षा प्रणाली ने दो मिसाइलों को रास्ते में ही निष्क्रिय कर दिया। यह तनाव उस समय और बढ़ गया जब इसराइल ने बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हमला किया। उधर ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया की चेतावनी दी है। ईरान के संसद के मुख्य अध्यक्ष और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बगीर गालिबाफ ने कहा है कि क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ठिकानों और संपत्तियों को निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने अमरीका पर युद्ध विराम और बातचीत के प्रति गंभीर न होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ईरान के सशस्त्र बल किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन का कहना है कि उसके दबाव के कारण ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए फिर से तैयार हुआ है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। देश का विश्वसनीय लोक प्रसारक आकाशवाणी आज अपने 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। वर्ष 1936 को आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्ट सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया था। वर्ष 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया। आकाशवाणी आज 591 रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है। आकाशवाणी का प्रसारण 23 भाषाओं और 146 बोलियों में किया जाता है। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। फिलीपींस में आज सुबह 7.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया। इससे कुछ तटीय क्षेत्रों में सुनामी आने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट पुरुष सिंगल्स का ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। उन्होंने रोलैंड गैरसोर में खेले गए रोमांचक 5 सेट के फाइनल में इटली के फ्लेविया कोबोली को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून के आगे बढ़ने के साथ देश कुछ क्षेत्रों में बारिश होगी जबकि अन्य क्षेत्रों में लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर आज लू की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
2: मुकेश, राजधानी दिल्ली से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों ने आज अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। दैनिक जागरण ने संसदीय समिति के राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पेपर लीक किस मामले पर सवाल पूछने पर लिखा है, संसदीय समिति ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से पूछा कि पेपर लीक किसे माना जाए। जनसत्ता इसी खबर पर लिखता है, संसदीय समिति ने पूछा क्या है पेपर लीक की परिभाषा। पत्र ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 29 रुपए की बढ़ोतरी होने की भी अपने मुख्य पृष्ठ पर प्रकाशित किया है। पंजाब केसरी ने इंडिया गठबंधन में तनातनी शीर्षक से लिखा है, दिल्ली में बैठक आज, माकपा और झामुमो ने कांग्रेस की हरकतों पर जताई आपत्ति। हिंदुस्तान के शब्द हैं, विपक्ष मतभेदों के बीच करेगा गठबंधन। दैनिक जागरण ने विपक्षी मोर्चे में खींचतान शीर्षक से संपादकीय आलेख में लिखा है, वर्तमान में इंडिया गठबंधन पहले जितना एकजुट और मजबूत नहीं दिख रहा है। वहीं लोक सत्य ने नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल की भारत यात्रा के दौरान उनका बयान प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने मौसम का मिजाज बताते हुए लिखा है, गर्मी उमस ने बढ़ाई चुभन, आज से बारिश कर सकती है तपिश।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 36वां राज्य बनेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए शहरों की जानकारी जारी की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ इंडिया रीजन जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत ने कहा, इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक प्रमुख स्तंभ। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: हरियाणा के वजीर आला नायब सिंह सैनी, हरियाणा असेंबली के स्पीकर हरविंद्र कल्याण, मुल्क भर के 15 लेजिस्लेचर्स के प्रिसाइडिंग और नायब प्रिसाइडिंग अफसरों के साथ साथ कानून साज असेंबलियों के मेंबरान शिरकत करेंगे। इफ्तिताही इजलास के दौरान हरियाणा विधानसभा की स्पीकर हरविंद्र कल्याण इस्तकबालिया खुतबा देंगे। इस मौके पर हरियाणा की तरक्की और तारीख को पेश करते हुए एक खसूसी दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई जाएगी। इसके बाद लोकसभा की स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश और वजीर आला नायब सिंह सैनी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। इसके बाद टेगोर थिएटर में शाम को एक सकाफती प्रोग्राम मुनाकिद होगा, जिसमें आईन और भारत के मालामाल सकाफती विरासत को उजागर किया जाएगा। आकाशवाणी आज अपने क्याम के 90 साल पूरे होने की तकरीब मना रहा है। 8 जून 1936 को आज ही के दिन इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम बदलकर ऑल इंडिया रखा गया था। ये तारीखी दिन मुल्क की सकाफत, इत्तिलात और नशरियाती तारीख में एक खसूसी लम्हा है, जहां आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो खिदमात को तेजी से उसत दी गई और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी 591 स्टेशन ऑपरेट कर रहा है, जो भारत की 98% आबादी तक पहुंच रहा है। आकाशवाणी 23 जुबानों में 146 इलाकाई जुबानों में मुख्तलिफ प्रोग्राम नशर कर रहा है। आकाशवाणी का एक्सटर्नल सर्विसेज डिवीजनल 100 से ज्यादा मुल्कों में अपनी नशरियाती खिदमात फराहम कर रहा है और आलमी सतह पर भारत की आवाज को पहुंचा रहा है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दूरअंदेश क़यादत में गुज़श्ता 12 साल के दौरान सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर भारत में एक नुमाया तब्दीली आई है। इस मुद्दत के दौरान मोदी हुकूमत ने गरीब, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों की बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोभा आपके लिए अहम शोबों में गुज़श्ता 12 साल के दौरान हुकूमत की कोशिशों पर एक खसूसी फीचर लेकर आया है। आज हम माहौलियाती तहफ़ुज़ के लिए हुकूमत की तरफ से किए गए इकदाम पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: गुज़श्ता 12 साल के दौरान भारत ने ठोस पॉलिसी इकदामात और मुस्तकिल नफाज के जरिए पायदार माहौलियाती तब्दीली का मुशाहिदा किया है। मुल्क में जंगलात और दरख्तों की तादाद में इजाफा हुआ है, दलदली जमीनों, मैंग्रोव्स और साहिली माहौलियाती निजाम को बहाल किया गया है। नीज नमामि गंगे प्रोग्राम के जरिए दरियाओं की बहाली का अमल भी आगे बढ़ा है। आलूदगी को कम करने और दरियाए गंगा और उसके मुआविन दरियाओं के माहौलियाती निजाम को बहाल करने के मकसद से साल 2014 में नमामि गंगे प्रोग्राम का आगाज किया गया था। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने बताया कि इस प्रोग्राम की वजह से दरियाए गंगा की सफाई में नुमाया बेहतरी आई है।
2: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
1: साल 2014 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम मुहिम का आगाज किया था, जो दुनिया की सबसे बड़ी अवामी माहौलियाती तहरीक बनकर उभरी। आकाशवाणी ने उससे बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस मुहिम के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाने की मुहिम में हिस्सा लिया।
3: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
1: आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: वजारत खारजा ने कहा है कि इंडोनेशिया भारत की मशरक नवाज पॉलिसी का एक क्लीदी सुतून है, जबकि इंडोनेशिया के वजीर खारजा सुगोनियो ने कल नई दिल्ली में वजीर खारजा और डॉक्टर ए जयशंकर के साथ वसी तर मुजाकरात के गहरे तहजीबी राबतों का जिक्र करते हुए वजारत खारजा ने कहा कि भारत इंडोनेशिया का जामे क्लीदी शराकतदारी जारी रहेगी, जिससे तआवुन के नए शोबों में इजाफा होगा। इससे पहले दिन में जनाब सुगोनियो ने बताया कि वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया के आइंदा दौरे के मुंतजिर हैं। इसराइल डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर देर रात मिसाइलों से हमले किए। 8 अप्रैल की जंगबंदी के बाद से इसराइल पर इस तरह का यह पहला हमला है। ईरानी

0: हमलों के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू को बताएंगे कि वो ईरान की जानिब से इसराइली ठिकानों को निशाना बनाने के बाद जवाबी कार्रवाई करने से गुरेज करें। इसराइली डिफेंस फोर्सेज ने कहा है कि इसराइल के कई इलाकों में ईरानी हमलों के बाद सायरन की आवाजें सुनी गईं, क्योंकि इसराइल की जानिब से बढ़ने वाले कई मिसाइल हमलों को नाकारा बना दिया गया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और आला मुजाकरात मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने खबरदार किया है कि खित्ते में अमरीकी अड्डों और असासों को निशाना बनाया जा सकता है। शुमाली इसराइल पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले शुरू किए जाने के बाद मगरबी एशिया में आज एक बार फिर सूरत हाल कशीदा हो गई है, जिससे खित्ते में कई हफ्तों से जारी जंग बंदी के इम्कान कम हो गए हैं और हवाई हदूद को बंद कर दिया गया है। इस्लामी पासदारान इनकलाब ने कहा है कि ये मिसाइल हमले इसराइल के रामत डेविड एयरबेस पर किए गए, जिसे तेहरान ने इसराइली जंगी तैयारों के हमलों के लिए एक अहम पॉइंट के तौर पर शनाख्त की थी, जिसने इतवार को बैरूत के दाहिया जिले को निशाना बनाया था। लेबनान के सेहत से मुतालिक अहलकारों का कहना है कि बैरूत में हमले से 2 अफराद हलाक और 11 दीगर जख्मी हो गए हैं। इसराइल ने कहा है कि उसने अपने हवाई दिफाई निजाम को फ़ाल कर दिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: तेहरान ने इस ऑपरेशन को मज़ाहमत की एक मुनज़्ज़म कार्रवाई करार दिया है। ईरान की मुसल्ला अफवाज के कमान सेंटर खातिमुन्नबिया सेंटर हेडक्वार्टर ने खबरदार किया था कि लेबनान की राजधानी पर कोई भी हमला सुर्ख लकीर उबूर करने के मुतरादिफ होगा। आबादी वाले मुकामात के बजाय मखसूस फौजी तनसीबात को निशाना बनाकर ईरान की फौजी क्यादत ने यह इशारा दिया कि वो खित्ते में पायदार अमन की खातिर माहदे के लिए जारी मुजाकरात को खतरे में डाले बगैर इसराइल को नुकसान पहुंचाना चाहता है। विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर जर्व ने इटली के फेलियो कोबिलियो को 5 सेट के सनसनीखेज फाइनल में हराकर पहली मर्तबा फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। दुनिया के तीसरे नंबर के खिलाड़ी ने 4 घंटे और 20 मिनट के सख्त मुकाबले में फेलियो को 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 और 6-1 से हराया। अलेक्जेंडर का यह पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है। 29 साल खिलाड़ी ऐसे पहले जर्मनी खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 1937 में हेनर हेंकल के बाद फ्रेंच ओपन का खिताब जीता। इधर कोबिली भी पहली बार ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे हैं। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
2: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के अखबारात ने भारत इंडोनेशिया मुश्तरका कमीशन इजलास JCM की नई दिल्ली में हुई बातचीत को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि दोनों ममालिक के वज़राए खारजा ने दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेते हुए सियासी दिफाई बहरी उमूर और तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में तआवुन बढ़ाने पर तबादले ख्याल किया। रोजनामा प्रताप ने नेपाल के वजीर खारजा के इस बयान को नुमाया किया है कि भारत नेपाल मिलकर एक साथ काम करने के ख्वाहां, दोनों ममालिक के ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त हुई है। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने भारतीय सनती तरक्की योजना भव्य पोर्टल का आज करेंगे इफ्तिताह। इस इकदाम का मकसद भारत को एक आलमी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। इस खबर को प्रताप ने खसूसियत के साथ शाये किया है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मगरबी बंगाल उन 36 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में शामिल हो जाएगा जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नाफिज करेगा। इम्तहानात मुनाकिद कराने वाली कौमी टेस्टिंग एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 के दोबारा इम्तहान के लिए इम्तहान के शहर से मुतालिक स्लिप जारी कर दी है। ये इम्तहान इस माह की 21 तारीख को कराया जाएगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज चंडीगढ़ में कॉमनवेल्थ पार्लियामानी एसोसिएशन CPA इंडिया रीजन जोन 2M कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। भारत ने कहा है कि इंडोनेशिया भारत की मशीक नवाज पॉलिसी का एक अहम सुतून है। और टेनिस में जर्मनी के अलेक्जेंडर जेरब ने इटली के फेलियो कोबिल को 5 सेट में हराकर फ्रेंच ओपन का खिताब जीत लिया है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।
3: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं इस समय

स्टूडियो की घड़ी में 8:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। कार्यक्रम में सबसे पहले आइए सुनते हैं किशोर कुमार, महेंद्र कपूर और शैलेंद्र की आवाजों में फिल्म अमर अकबर एंथनी का ये गीत। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत बद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार, महेंद्र कपूर और शैलेंद्र की आवाज़ों में आनंद बख्शी की शब्द रचना को, जिसकी धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम था अमर अकबर एंथनी। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म धर्मात्मा का ये गीत। गीतकार हैं इंदिवर, संगीतकार हैं कल्याण जी, आनंद जी।

आशा भंसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे मजरूह सुल्तानपुरी की शब्द रचना को। धुन बनाई थी आर डी बर्मन ने। फिल्म का नाम था हम किसी से कम नहीं। श्रोताओं, कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म देश प्रेमी का ये गीत।

हसीना, तुम डाकू मैं हूँ शीशा, तुम पत्थर शीशा पत्थर, टकराने दो।

आशा भोसले की आवाज़ों में भी आप सुन रहे थे फिल्म मिस्टर नटवरलाल का ये गीत। गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीतबद्ध किया था राजेश रोशन ने। श्रोताओं, कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म रखवाला का ये गीत। गीत को लिखा है इंदिवर ने, संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म रखवाला का ये गीत। गीत को लिखा था इंदिवर ने, संगीतबद्ध किया था कल्याण जी आनंद जी ने। इस गीत के साथ ही सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। सुबह के 9:15 होने को हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे लखनऊ केंद्र से हमारा अगला प्रसारण।

0: थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है, जिले की हलचल। जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए अमरोहा और कानपुर देहात जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं अमरोहा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मरगूब हुसैन का।
1: प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अमरोहा में 24 व 25 मई को दो दिवसीय दौरे पर रहे। दौरे के पहले दिन उप मुख्यमंत्री ने भाजपा जिला कार्यालय में संगठनात्मक बैठक में प्रतिभाग किया। दौरे के दूसरे दिन डिप्टी सीएम ने कलेक्ट्रेट सभागार में प्रभारी मंत्री केपी मलिक की उपस्थिति में विकास कार्यों की समीक्षा की। इसके उपरांत उप मुख्यमंत्री ने विभागवार योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इससे पहले उप मुख्यमंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गजरौला का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने मरीजों से बातचीत कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। गर्मी के कारण डिप्टी

0: सीएम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि
1: धूप में निकले सर ढक के रखें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें। जिले के सभी अस्पतालों में बेड आरक्षित करने के साथ साथ दवाइयों का इंतजाम किया गया है। ORS घोल को सभी आशा वर्कर के माध्यम से गांव-गांव पहुंचाया जा रहा है और यदि किसी को किसी सहायता की आवश्यकता पड़ती है उसके लिए तत्काल सभी को अलर्ट मोड पर रखते हुए इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ अस्पताल का रख रखाव और स्थितियों का व्यवहार IPD OPD अच्छी स्थिति में है।
0: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान गणना डोर टू डोर अमरोहा में 22 मई से शुरू हो चुकी है जो कि 20 जून तक चलेगी। जिले में अब तक 3,518 प्रगणकों द्वारा 95,000 मकानों का सूचीकरण व गणना कर ली गई है। अमरोहा में जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि
2: हम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि जो भी सेंसस कर्मचारी आपके घर पे आए आप उन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस दें। आप उनको पूरा डेटा एकदम शुचिता से अवेलेबल कराएं। इस डेटा का जो उपयोग है भारत के जनगणना में जो डेटा मिलता है उसका पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन में उसका रोल होता है। जितना शुचितापूर्ण डेटा होगा उतनी अच्छी पॉलिसीज बनेंगी और उतनी अच्छी लोकोन्मुखी स्कीमों का धरातल पे क्रियान्वयन किया जा सकेगा। लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन पूरी और एकदम एक्यूरेटली दें। इससे कोई भी प्रोसिक्यूशन वाली कार्रवाई किसी के भी विपरीत नहीं की जाएगी। ये केवल एक डेटा कलेक्शन की एक एक्सरसाइज है। इन्फॉर्मेशन लेने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण हमेशा हर समय कायम रखें।
0: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वर्ष 2026 की बोर्ड परीक्षाओं में अमरोहा में शानदार प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के सम्मान में विकास भवन सभागार में 1 जून को जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ की अध्यक्षता में मेधावी विद्यार्थी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जनपद स्तर पर कुल 18 मेधावी विद्यार्थियों को प्रत्येक को 21,000 रुपए का चेक, प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का सीधा प्रसारण भी देखा गया। जिलाधिकारी ने बताया कि राज्य स्तर पर अमरोहा के 6 मेधावी विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया। इन विद्यार्थियों को 1,00,000 रुपए नकद, टैबलेट, प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किए गए। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 39वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 29 मई को अमरोहा में अनेक स्थानों पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर राष्ट्रीय लोकदल द्वारा गजरौला में हवन एवं गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, किसान एवं क्षेत्रवासियों ने बड़ी संख्या में सहभागिता करते हुए चौधरी चरण सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित किए तथा उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को याद किया। कार्यक्रम का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन यज्ञ से हुआ। इसके उपरांत आयोजित गोष्ठी में वक्ताओं ने चौधरी चरण सिंह के जीवन संघर्ष, किसानों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता तथा देश के विकास में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष सचिन चौधरी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह केवल एक राजनेता नहीं बल्कि देश के करोड़ों किसानों की आशा और विश्वास के प्रतीक। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गांव, गरीब, किसान और मजदूर वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। आज भी उनके विचार और सिद्धांत प्रासंगिक हैं तथा देश की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का मार्ग दिखाते हैं। 1 जून से 30 जून तक चलने वाले खेत बचाओ अभियान के शुभारंभ अवसर पर 1 जून को अमरोहा में कृषि विज्ञान केंद्र गजरौला में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में धनौरा, गजरौला एवं हसनपुर ब्लॉक के किसानों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस मौके पर केंद्र के प्रभारी अधिकारी डॉक्टर के मिश्र ने कहा कि समय की मांग है कि सभी किसान अपने खेत को बचाने के लिए अपने खेत की मिट्टी को पहचानने और उसमें आवश्यकता अनुसार संतुलित मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करें। रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग करने से मृदा का स्वास्थ्य, भूजल स्तर एवं वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। इसके कारण मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर शीशपाल सिंह ने फसलों के साथ साथ सब्जियों एवं बागवानी में कृषकों के द्वारा अत्यधिक मात्रा में कृषि रसायनों का उपयोग करने के कारण इकोलॉजिकल संतुलन बिगड़ गया है। इसके कारण लाभदायक कीट एवं मधुमक्खियों को काफी नुकसान हो रहा है जिसको बचाने की अत्यंत आवश्यकता है। केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर अमित तोमर ने जैव उर्वरक, जैविक कीटनाशक एवं विभिन्न प्राकृतिक अवयवों को अपनाने पर जोर दिया जिससे वातावरण का संतुलन बना रहे।
3: अमरोहा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं कानपुर देहात जिले की हलचल। आलेख और स्वर है देवेश सिंह का।
4: प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और कानपुर देहात के प्रभारी मंत्री संजय निषाद ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पौधारोपण करके पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का संदेश दिया। उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधे लगाए और कहा कि वृक्ष जीवन का आधार है। मंत्री ने पौधारोपण को प्रकृति के संतुलन और मानव जीवन की रक्षा के लिए अनिवार्य बताया। उन्होंने आम जनता से अपील की कि वे अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और पर्यावरण को हरा भरा रखने में अपना योगदान दें। मंत्री ने अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि लगाए गए पौधों की उचित देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ताकि लगाए गए पौधे सुरक्षित रह सकें। केंद्र सरकार के

0: 18 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कानपुर देहात के प्रभारी मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने जिले में रात्रि प्रवास किया। इस दौरान उन्होंने सेवा संस्कार सुशासन एवं सम्मान अभियान के तहत ग्रामीणों से सीधा संवाद किया और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के साथ भोगनीपुर तहसील के अमरौधा ब्लॉक के स्थित रनिया ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल लगाई। कार्यक्रम में अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों को केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। इसका मुख्य उद्देश्य पात्र लाभार्थियों को योजनाओं से जोड़ना था। इस दौरे के दौरान मंत्री संजय निषाद ने जन सुनवाई में लापरवाही करने पर नाराजगी जताई। कार्यक्रम में दोनों मंत्रियों ने केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियों और प्रदेश सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध और गाँवों के समग्र विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रात्रि चौपाल के माध्यम से सरकार और जनता के बीच सीधे संवाद की पहल को और मजबूत किया गया। जनपद कानपुर देहात और आसपास के क्षेत्रों में पिछले हफ्ते हुई बारिश और गरज चमक से भीषण गर्मी व उमस से बड़ी राहत मिली है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे आम जनजीवन राहगीरों और किसानों को राहत का एहसास हुआ है। पिछले सप्ताह हुई बौछारें और बादलों की आवाजाही ने चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं लू से काफी हद तक निजात दिलाई। बारिश के कारण पारे में गिरावट दर्ज की गई, जिससे मौसम में ठंडक और हवाओं में ताजगी महसूस हुई। प्री मानसून की इस बारिश ने खेतों और पेड़ पौधों को नई जान दी है, जिससे किसानों और पर्यावरण को भी फायदा पहुंचा है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में बारिश के बाद तापमान में उतार चढ़ाव और उमस बढ़ने की स्थिति भी देखी गई है। कानपुर देहात में मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना 2026 के तहत नई बस सेवा का शुभारंभ किया गया। विधायक रसूलाबाद पूनम संखवार और जिलाधिकारी कपिल सिंह ने कलेक्ट्रेट परिसर में बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह बस तिस्ती रसूलाबाद से केंजरी रूरुआ होते हुए अकबरपुर माती तक संचालित होगी। योजना से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आवागमन में बेहतर सुविधा मिलेगी और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी। कानपुर देहात के भोगनीपुर क्षेत्र में थर्मल पावर प्लांट के नाम पर हुए 400 करोड़ के जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मूसानगर थाने में FIR दर्ज की गई। जिलाधिकारी कपिल सिंह की जांच रिपोर्ट के बाद कानपुर कमिश्नर ने बड़ा एक्शन लेते हुए ग्राम सभाओं की जमीनों का पुनर्ग्रहण निरस्त कर दिया है। 761.41 एकड़ जमीन को वापस सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करके ग्राम सभा के नाम निहित करने का आदेश जारी हो चुके हैं। कानपुर देहात के गौसगंज भोगनीपुर मूसानगर में अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर अहिल्या आर्मी भारत एकता मिशन के तत्वावधान में नगर में एक शोभा यात्रा निकाली गई। अहिल्या आर्मी भारत एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र पाल ने बताया कि अहिल्याबाई होलकर ने देश भर के अनेकों मंदिर घाटों धर्मशालाओं कुओं और सड़कों का निर्माण कराया था। उन्होंने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने महेश्वर को सांस्कृतिक और व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया और महेश्वरी साड़ी उद्योग को बढ़ावा दिया, जो आज भी प्रसिद्ध है। कानपुर देहात में हाईस्कूल और इंटर परीक्षाओं में जनपद स्तर पर सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले 19 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समारोह में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला सहित जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने मेडल व प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। मेधावी विद्यार्थियों ने अपनी सफलता का श्रेय कड़ी मेहनत, शिक्षकों और अभिभावकों के मार्गदर्शन को दिया। राज्य मंत्री ने कहा, ऐसे सम्मान से विद्यार्थियों को प्रोत्साहन मिलता है और अन्य छात्रों को भी उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रेरणा मिलती है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। इस समय स्टूडियो की घड़ी में 9:25 हो रहे हैं। प्रस्तुत है पुरानी फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा। श्रोताओं, कार्यक्रम में सबसे पहले आइए सुनते हैं आशा भोंसले और साथियों की आवाज़ों में प्रदीप की शब्द रचना को, जिसकी धुन बनाई है सी रामचंद्रन ने। फिल्म का नाम है पैगाम।

आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म पैगाम का ये गीत। गीत को लिखा था प्रदीप ने, संगीतबद्ध किया था सी रामचंद्र ने। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में फिल्म मिस्टर एक्स इन बॉम्बे का ये गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारीलाल।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म मिस्टर एक्स इन बॉम्बे का ये गीत। गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, पुरानी फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में फिल्म बदतमीज का ये गीत। गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने।

सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे फिल्म बदतमीज का ये गीत। गीत को लिखा था हसरत जयपुरी ने, संगीतबद्ध किया था शंकर जयकिशन ने। श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है चलती का नाम गाड़ी। गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीतबद्ध किया है एस टी बर्मन ने।

श्रोताओ, आशा भोसले और किशोर कुमार के गए फिल्म चलती का नाम गाड़ी के इस गीत के साथ ही पुरानी फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा भी यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। इस समय सुबह के 9:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कृष्ण गोपाल शर्मा के गाए कुछ लोकगीत। आपके साथ संगत करता है हारमोनियम पर देवेंद्र कुमार शर्मा, ढोलक पर राम अवतार, बांसुरी पर ज्वाला प्रसाद और नक्कारा पर साथ दे रहे हैं ईश्वर सिंह खींची। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति।

श्रोताओं, कार्यक्रम लोक संगीत आकाशवाणी के आगरा केंद्र से प्रसारित किया जा रहा है। आप सुन रहे हैं कृष्ण गोपाल शर्मा के गाए कुछ लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे कृष्ण गोपाल शर्मा के गाए कुछ लोकगीत। आपके साथ हारमोनियम पर संगत कर रहे थे देवेंद्र कुमार शर्मा, ढोलक पर राम अवतार, बांसुरी पर ज्वाला प्रसाद और नक्कारा पर संगत कर रहे थे ईश्वर सिंह खींची। इसी के साथ ही कार्यक्रम लोक संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी

0: का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। श्रोताओं, अब समय है सदाबहार फिल्म संगीत के कार्यक्रम सुर सरिता का। कार्यक्रम में पहला गीत सुनेंगे उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में, जिसे हमने लिया है फिल्म राजा भैया से। लेकिन पहले लेते हैं ये छोटा सा अंतराल।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे हरिहरन और चित्रा की आवाज़ों में फिल्म जिद्दी का ये गीत। गीत को लिखा था समीर ने, संगीतबद्ध किया था दिलीप सेन समीर सेन ने। कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं छोटे से अंतराल के बाद।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में भी आप सुन रहे थे फिल्म खुद्दार का ये गीत। गीत को लिखा था जमीर काजमी ने, संगीतबद्ध किया था अनु मलिक ने। श्रोताओ, सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में फिल्म आन का ये गीत। गीत को लिखा है समीर ने, संगीतबद्ध किया है अनु मलिक ने।

अलका याग्निक और अभिजीत की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म यस बॉस का ये गीत। गीत को लिखा था जावेद अख्तर ने, संगीतबद्ध किया था जतिन ललित ने। इस गीत के साथ ही सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। सुबह के 10:30 हो रहे हैं। अब समय है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत का। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पंडित रामकृष्ण का क्लैरिनेट वादन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग मंगल भैरव।

शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित रामकृष्ण की राग मंगल भैरव में बजाई क्लैरिनेट। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ।

अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन आकाशवाणी आगरा। पूर्वाहन के 11 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम आज के कलाकार। कार्यक्रम लेकर मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त विशेषता शर्मा। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

साथियों, इस कार्यक्रम में हम हर रोज आपसे मिलते हैं किसी एक कलाकार की कहानी के साथ। लेकिन आज इस कार्यक्रम में जिस कलाकार को हमने शामिल किया है, उनके बारे में हम आपसे क्या ही कहें। सुनहरी धूप की किरणों से चमकती वो घनी जुल्फें, सागर जैसी गहरी और नीली आंखें, ऐसी भावुक आंखें जिनमें एक अजीब सी कशिश है और डूब जाने का मन करता है। एक ऐसी शख्सियत जिसकी एक मुस्कुराहट में वो जादू है जो वक्त की

रफ्तार को थाम ले जनाब। सादगी और आधुनिकता का एक बेमिसाल मेल, जिसे शब्दों में पिरोना बड़ा मुश्किल है। कभी वो झूठ बोले कवा काटे की शोख और चुलबुली किशोरी बनकर हमारे दिलों में उतरी, तो कभी प्यार करने वाले कभी डरते नहीं की धुन पर दुनिया से बगावत करने वाली हिम्मत भी बनी। उनकी अदाओं में जहां एक तरफ मासूमियत का पहरा था, वहीं दूसरी ओर एक ऐसी गरिमा थी जिसने पर्दे पर आते ही ये बता दिया कि अब एक नए युग का आगाज होने जा रहा है। जी हाँ, आज के कलाकार कार्यक्रम में हम उस हसीन जादूगरनी की बात कर रहे हैं जिन्होंने न केवल बॉबी बनकर तहलका मचाया, बल्कि दशकों तक भारतीय सिनेमा की सबसे गरिमामयी और प्रभावशाली अभिनेत्री बनी रही, जिनका चेहरा ऐसा लगता था जैसे चांद खिला हो, और जुल्फ जुल्फ थी घनेरी शाम सी, और आंखें सागर जैसी नीली और गहरी, जिनमें बस डूब जाने का मन होता था। देखते ही उनसे ये पूछने का दिल करता था कि सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या? हाँ हाँ, हम जानते हैं, आप भी यही सोच रहे होंगे कि जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं उनका नाम क्या है, और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग तो अब तक नाम जान भी चुके हों, लेकिन हम आपको बताएं कि वो कौन है, उससे पहले क्यों ना उन्हीं से पूछ लें कि उनका नाम क्या है।

0: जी हाँ, तो बताइए, सागर जैसी आंखों वाली ने अपना नाम बताया या नहीं? भाई, गीत ने जरूर बता दिया होगा कि हमारी आज की कलाकार हैं डिंपल कपाड़िया। साथियों, डिंपल कपाड़िया का फिल्मी सफर किसी परिकथा जैसा ही है। वो साल था 1973, जब राज कपूर अपनी एक बहुत बड़ी फिल्म बनाने जा रहे थे और उसके लिए उन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी। आप जानते हैं वो फिल्म कौन सी थी? वो फिल्म थी बॉबी। और इसी फिल्म के लिए जब वो हीरोइन तलाश रहे थे, तब उनकी नजर 16 साल की एक लड़की पर पड़ी। कहते हैं कि राज कपूर साहब को एक ऐसी अभिनेत्री चाहिए थी जिसमें वेस्टर्न की सादगी हो और इंडियन मासूमियत दोनों साथ साथ हों। और जानते हैं, जब बॉबी फिल्म रिलीज हुई तो उसने भारतीय सिनेमा के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। डिंपल कपाड़िया रातों रात नेशनल क्रश बन गई। उनके द्वारा पहने गए पोल्का डॉट शर्ट और मिनी स्कर्ट उस दौर में लड़कियों का यूनिफॉर्म बन गए थे। उस फिल्म में उनकी और ऋषि कपूर की जोड़ी ने टीनेज रोमांस की एक ऐसी परिभाषा लिखी जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। उनके प्यार में गहराई भी थी और मासूमियत भी। इस फिल्म का वो गीत तो आपने सुना ही होगा, मुझे कुछ कहना है, ये भी खूब प्रसिद्ध हुआ था। और साथ ही साथ वो गीत जिसके बिना अंताक्षरी तो अधूरी ही है। जरा सोचिए कौन सा है वो गीत। आप सोचिए, तब तक हम आपको सुनवा ही देते हैं।
1: बाहर से कोई

जी हाँ साथियों, चाबी का खोना तो ठीक है, लेकिन आप कहाँ खो गए? जरा अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर तो आइए और वापस हमारे पास आइए, ताकि हम और आप और भी बातें कर सकें। आप जानते हैं, बॉबी फिल्म के बाद डिंपल कपाड़िया रातों रात हिट हो गई थी और एक के बाद एक फिल्में उनकी झोली में आने लगी। लेकिन जब डिंपल सफलता के सातवें आसमान पर थी, तभी उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसमें

पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि बॉबी फिल्म की रिलीज से कुछ ही महीने पहले उन्होंने उस समय के सुपरस्टार राजेश खन्ना से शादी कर ली। ये शादी इतनी बड़ी खबर थी कि इसके फुटेज सिनेमा घरों में फिल्मों से पहले दिखाए जाते थे। डिंपल कपाड़िया ने अपनी शादी के बाद सिनेमा से पूरी तरह दूरी बना ली। एक दशक तक उन्होंने किसी आम महिला की तरह अपने घर और परिवार को संभाला, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। वैवाहिक जीवन के उतार चढ़ाव और अलगाव के बाद जब उन्होंने 1985 में फिल्म सागर से वापसी की, तब दुनिया ने देखा कि वक्त उनकी खूबसूरती और हुनर को छू तक नहीं पाया है। सागर फिल्म के वो दृश्य और ऋषि कपूर के साथ उनकी केमिस्ट्री आज भी उनके प्रशंसकों के जहन में ताजा है। और सिर्फ ऋषि कपूर ही नहीं, बल्कि हम आपको बता दें कि डिंपल कपाड़िया और अमिताभ बच्चन की जोड़ी को भी खूब पसंद किया गया था। अजूबा और मृत्युदाता जैसी फिल्मों में इनकी जोड़ी बहुत पसंद की गई। दोनों की ऑन स्क्रीन गरिमा दर्शकों को खूब भाती थी। एक और किस्सा याद आया। कुछ ही दिन पहले जब मैं एक मैगजीन पढ़ रही थी, तब उसमें बड़ा अच्छा किस्सा लिखा हुआ था, तो मन में आया क्यों ना आपके साथ भी बांट लूं। जानते हैं, कहा जाता है कि राजेश खन्ना ने डिंपल को पहले प्रपोज किया था, और जब उन्होंने प्रपोज किया था तो उन्होंने समुन्द्र किनारे डिंपल का हाथ थामकर अपनी पुरानी अंगूठी पानी में फेंक दी थी, ये जताने के लिए कि अब उनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ डिंपल का स्थान है। और शायद सागर किनारे दोनों कुछ ये भी गुनगुना रहे हों।

जी हाँ साथियों, हमें भी आपका साथ इतना ही प्यारा है कि आपके लिए अगर दुनिया में दोबारा भी आना पड़े तो हम जरूर आएंगे, बेशक आएंगे, बार बार आएंगे। लेकिन फिलहाल बात करते हैं डिंपल कपाड़िया के बारे में। आप जानते हैं, जब डिंपल कपाड़िया ने वापसी की तो दूसरे दौर में भी ये साबित कर दिया कि डिंपल कपाड़िया केवल एक खूबसूरत चेहरे का नाम नहीं है। उन्होंने 1993 में रुदाली जैसी ऑफबीट फिल्म को चुना, जिसमें उन्होंने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया था जो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाती है, जो चाहकर भी रो नहीं पाती है, और इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इस फिल्म में उनकी आंखों की वो चुप्पी चीख से ज्यादा गहरी थी। इसके बाद दृष्टि, लेकिन और प्रहार जैसी फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय के वो आयाम दिखाए जिनकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। यहां तक कि उन्होंने अपनी दूसरी पारी में दिल चाहता है फिल्म में एक मैच्योर महिला का किरदार निभाकर नई पीढ़ी को भी अपना कायल बना लिया। और उनकी प्रतिभा की सबसे ताजा मिसाल है क्रिस्टोफर नोलन की हॉलीवुड फिल्म टीनेट, जहां उन्होंने अपनी मौजूदगी से अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को भी मंत्रमुग्ध कर दिया है। साथियों, डिंपल कपाड़िया का जिक्र तब तक अधूरा है जब तक हम उनके बेमिसाल और सदाबहार स्टाइल की बात ना करें। 90 के दशक से लेकर आज तक उनके परिधान हो या उनके बालों का खास अंदाज, सब कुछ उनका सिग्नेचर स्टाइल बन गया है। और एक दौर था जब लड़कियां उनको हूबहू कॉपी करने की भी कोशिश करती थीं। तो साथियों, आज भी डिंपल कपाड़िया अपने प्रशंसकों के दिल में इस तरह मौजूद हैं कि हम उनका नाम बार बार लेते हैं, उन्हें बार बार याद करते हैं।

जी हाँ साथियों, डिंपल कपाड़िया कल भी आज की कलाकार थी और आज भी आज की कलाकार हैं। बॉबी फिल्म से शुरू हुआ ये सफर आज भी जारी है और हम दुआ करते हैं कि उनकी ये मुस्कुराहट और उनकी अदाएं हमेशा यूं ही बरकरार रहें। और इसी के साथ कार्यक्रम आज के कलाकार संपन्न करने की रेडियो की विशेषता को दीजिए अनुमति।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आइए आप सुनते हैं समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। एक बार फिर से स्वीकार कीजिए मेरा यानी विशेषता शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, बहुत देर से रेडियो पर आप हमें सुन रहे हैं, बैठे बैठे थक गए होंगे, है ना? तो चलिए कहीं घूम आते हैं। क्या कहा, कैसे और कहाँ? अच्छा चलिए, अपनी आंखों को जरा बंद कीजिए, बस कुछ पलों के लिए। कर ली? अब चलिए हमारे साथ। जरा सोच कर देखिए, शाम का वक्त हो, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हों, और अचानक से हमारा ध्यान उस असीम नीले फैलाव पर चला जाए जो क्षितिज तक फैला हुआ है। वो विशाल नीली चादर जो अपने भीतर न जाने कितने रहस्य, कितनी कहानियां और कितनी जिंदगियों को समेटे हुए है। उसकी सतह पर उठती गिरती लहरें मानो धरती की धड़कन हो। समझ गए हम कहाँ पहुंच गए हैं? हम पहुंच गए हैं सागर के किनारे। आपने कभी सोचा है कि आती और जाती हुई लहरें हमसे क्या कहती?

सकती हैं। वो बस किनारे तक आकर लौट नहीं जाती, बल्कि हमें बुलाती हैं कि हम अपनी रोजमर्रा की उथली सोच से थोड़ा सा बाहर निकलें। वो हमसे कहती हैं, बाहर की इस चकाचौंध और शोर शराबे से थोड़ा सा ठहर कर अपने भीतर और इस पूरी सृष्टि के भीतर छुपी उस नई गहराई को जागृत करें। वो लहरें हमसे कहती हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये सागर गहरा नहीं है, बल्कि हमारे भीतर भी वो गहराई कहीं ना कहीं छुपी हुई है, ज़रूरत है उसे पहचानने की। प्यारे साथियों, जब हम गहराई शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में क्या आता है? शायद कोई बहुत गहरा कुआं, या फिर वो अंतहीन नीला समंदर जिसके तल का किसी को अंदाज़ा नहीं है, वही समंदर जिसके किनारे पर अभी आप अपने मन में घूम रहे हैं। लेकिन आज हम उस गहराई की तो आपसे बात ही नहीं कर रहे जो सिर्फ और सिर्फ भूगोल के नक्शों पर नापी जाती है। आज हम बात कर रहे हैं आपके और हमारे अस्तित्व की गहराई की। अच्छा, एक बात बताइए, हम में से कितने लोग रोज सुबह उठकर सिर्फ भागने में लग जाते हैं, घड़ी की सुइयों के साथ दौड़ना, काम पूरा करना और बस सो जाना? आप सबका जवाब होगा कि हाँ, हम भी यही करते हैं। लेकिन क्या हमारी जिंदगी सिर्फ इसी सतह पर तैरने का नाम है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। सतह पर तो हमेशा उथल पुथल होती ही है, तूफान आते हैं, नावें डगमगाती हैं, लेकिन जैसे ही आप सतह से थोड़ा नीचे उतरते हैं तो वहां क्या मिलता है? एक असीम शांति, एक ठहराव, एक ऐसा संसार जो ऊपर के किसी भी तूफान से बेअसर है, जहां बस और बस हम हैं। आज हमें अपने भीतर उसी शांति और उसी नई गहराई को जगाने की जरूरत है। तो आप अपने मन की शांति के साथ जरा सागर के किनारे घूमिए, मैं भी थोड़ा सा घूम कर आती हूँ।

जी हाँ, गीत पूरा हो गया है और अब सागर किनारे से जरा वापस लौट आइए। खूबसूरत गीत के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में। अब गीत सुन लिया है तो क्यों ना कुछ बातें की जाएं। साथियों, हम जो बातें बीच में छोड़कर गए थे, चलिए उन्हीं बातों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे अपनी सोच और अपने अस्तित्व को नई गहराई देने की, एक नई गहराई को जागृत करने की। अब एक बड़ा ही दिलचस्प सा सवाल मेरे मन में उठ रहा है, जरा सोच कर देखिए। जब हम गहराई की ओर कदम बढ़ाते हैं तो सबसे पहले हमारा सामना किससे होता है? सोचिए सोचिए, हमारा सामना होता है खुद से, स्वयं से, हमारे अपने अनछुए पहलुओं से, उन पहलुओं से जिनके बारे में हम बात नहीं करना चाहते। जब हम समंदर की ऊपरी लहरों को देखते हैं तो वो बहुत चंचल लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे कोई गोताखोर नीचे जाता है, उसे एक अजीब सा सन्नाटा और बेहद खूबसूरत जीव जंतुओं का एक पूरा संसार दिखाई देता है। लेकिन ऊपर से सतह की ओर जाना, गहराई की ओर जाना ही सबसे मुश्किल काम है। आप ऊपर ऊपर तो आराम से घूम सकते हैं, लेकिन जब सोचेंगे कि गहराई की ओर चलना है तो एक अजीब सी घबराहट होगी, लेकिन जब गहराई में पहुंच जाएंगे तो उस सुकून का कहना ही क्या। ठीक वैसे ही हमारी जो जिंदगी में ऊपरी स्तर है ना, वहाँ बहुत शोर है। सोशल मीडिया का शोर है, करियर की चिंताएं हैं, दूसरों से आगे निकलने की होड़ है, लेकिन जब आप इस शोर से दूर अपने भीतर उतरते हैं तब आपको पता चलता है कि आपके अंदर क्षमताओं का कितना बड़ा खजाना छुपा हुआ है। जरूरत है अपने भीतर की गहराई को नापने की। साथियों, इस गहराई को जगाने का एक बहुत बड़ा फायदा जानते हैं क्या है? वो फायदा है कि ये गहराई हमें लचीलापन देती है, फ्लेक्सिबिलिटी देती है। आपने देखा होगा कि जब सतह पर भयंकर चक्रवात या तूफान आते हैं तो बड़े बड़े जहाज जो होते हैं वो भी डगमगा जाते हैं। तटीय इलाकों में तो तबाही तक मच जाती है, लेकिन क्या कभी किसी तूफान ने समंदर के सबसे निचले तल को हिलाया है? नहीं ना। नीचे का संसार हमेशा शांत और स्थिर रहता है। हमारी जिंदगी में भी जब दुख आए, असफलताएं आए, तनाव के तूफान आए, तो अगर हमारी सोच थोड़ी गहरी होगी तो हम ऊपर से भले ही थोड़े विचलित हों, लेकिन अंदर से कभी नहीं टूटेंगे। ये गहराई हमें वो मानसिक मजबूती देती है जो हमें हर परिस्थिति में खड़े रहना सिखाती है। कितना भी कुछ भी बुरा क्यों ना हो जाए, उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा है, ये गहराई हमें ये सिखाती है और हमें प्रेरित करती है कि हम मजबूती के साथ वहीं खड़े रहें। और सब छोड़िए, कितना भी बुरा क्यों ना हो रहा हो, आपके संग कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो आपसे बेहद प्रेम करता है, तो फिर टूटने की क्या जरूरत है जब आपसे प्यार करने वाला, आपसे प्रेम करने वाला आपके साथ खड़ा हुआ है। अब आप कहेंगे कि भाई चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। ठीक है, माना, पर अंधेरा तो एक ही है ना, और तारे, तारे तो लाखों हैं। उन लाखों तारों को देखिए ना, एक अंधेरे से क्यों डरते हैं?

तो समझे आप, बस अपनी हिम्मत बनाए रखिए, ये तूफान ये दौर भी गुजर जाएगा। और कोई हो या ना हो, हम अपने कार्यक्रमों के साथ हमेशा आपके साथ हैं। अच्छा, जरा एक और बात पर गौर कीजिए, आज के दौर में हमारी सहानुभूति और हमारे रिश्ते इतने उथले क्यों होते जा रहे हैं, कभी सोचा है आपने? अगर नहीं सोचा तो अब सोचिए। आज हम किसी की पोस्ट पर लाइक तो तुरंत कर देते हैं, लेकिन किसी के पास बैठकर उसका दर्द सुनने का वक्त हमारे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि हम रिश्तों को भी सिर्फ सतह पर जी रहे हैं, गहराई में तो उतरते ही नहीं हैं। जब हम अपने भीतर की गहराई को जगाएंगे तो हमारे भीतर दूसरों के प्रति सच्चा प्रेम जागेगा। हम सिर्फ शब्दों को नहीं सुनेंगे, बल्कि सामने वाले की खामोशी, उसकी आंखों के पीछे छिपे जज्बातों को भी पढ़ पाएंगे। जैसे एक विशाल जलराशि पूरी धरती की गंदगी को अपने भीतर समाकर भी हमें साफ हवा और जीवन देती है, वैसे ही हमें भी दूसरों की गलतियों को माफ करने की गहराई अपने अंदर लानी होगी। चलिए अब थोड़ा सा और सोचते हैं और इस विषय को आगे लेकर चलते हैं। हमारी ये आंतरिक गहराई हमें इस पूरी कायनात से जोड़ती है, पूरे ब्रह्मांड से जोड़ती है। जब हम खुद को गहरा बनाते हैं तो हम पाते हैं कि हम इस ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, बहुत छोटा सा, और ये पूरी प्रकृति हमारी रगों में बह रही है। जो जीवन उस नीले फैलाब के भीतर धड़क रहा है, वही जीवन हमारे भीतर भी है। जब ये एहसास जागता है तब इंसान स्वार्थी नहीं रह जाता, फिर वो सिर्फ अपने फायदे के लिए प्रकृति का दोहन नहीं करता, बल्कि वो एक रक्षक की भूमिका में आ जाता है। तब उसे समझ जाता है कि इस धरती के संतुलन को बचाए रखना किसी एक संस्था या सरकार का काम नहीं है, बल्कि ये उसकी खुद की, स्वयं की जिम्मेदारी है। लेकिन दोस्तों, जब हम इस जिम्मेदारी की बात करते हैं तो क्या हम वाकई अपनी इस जीवनदायिनी नीली दुनिया के प्रति वफादार हैं? जरा सोचिए, आपने कभी सोलर सिस्टम को देखा है? उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ग्रह है जो हमें नीले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि वहां जल है, विशाल जलराशि है। इस विशाल जलराशि को हम धीरे धीरे करके बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारे भीतर भी एक विशाल जलराशि है, एक गहराई है, और उसको भी हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। जरा सोचिए, जो विशाल जलराशि सदियों से बिना थके हमें ऑक्सीजन दे रही है, हमारे मौसमों को संभाल रही है, आज उसकी सेहत कैसी है? मैं आपकी सेहत की नहीं, उस जलराशि की सेहत की बात कर रही हूं। आज हमारी उथली सोच और स्वार्थ की वजह से उस गहराई में जहर घुल रहा है। प्लास्टिक का कचरा, फैक्ट्रियों के रसायन, हमारा गैर जिम्मेदाराना रवैया उस शांत संसार का दम घोट रहा है, और वो तो कुछ कहता भी नहीं, रोता भी नहीं। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि अगर वो नीला संसार बीमार हुआ तो हमारी धरती पर जीवन का ये खूबसूरत सा ताना बाना बिखर जाएगा।

साथियों, अब सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ मूक दर्शक बने रहेंगे या इस समुन्दर के लिए कुछ करेंगे भी, अपनी आंतरिक गहराई को जगाकर इसके संरक्षण के लिए आगे आएंगे भी? जवाब हमारे और आपके हाथों में है। हम बड़े बड़े वादों की नहीं बल्कि छोटे छोटे और ठोस कदमों की शुरुआत करने की ज़रूरत है। सिंगल यूज प्लास्टिक को अलविदा कहना, अपने स्तर पर कचरे का सही प्रबंधन करना और नदियों तालाबों को प्रदूषित होने से बचाना, क्योंकि यही नदियाँ आखिर में उस विशाल नीले विस्तार में जाकर मिलती हैं। अब बताइए, इसमें मैंने नया क्या बता दिया आपको? सब तो आप जानते ही हैं, बस ज़रूरत है करने की। जब हम इन जल स्रोतों की रक्षा करते हैं तो हम सीधे उस महाजल राशि को जीवनदान दे रहे होते हैं। तो ये जुगनू जो बात पते की कह रही है, इसे मान लीजिए और काम शुरू कर दीजिए।

कुछ धक धक धक धुआं ना उठता है। हाँ।

0: ना बाबा।
1: प्यार करूंगी इस बार में, प्यार करूंगी इस बार में, इसको एक महीने में।
0: ठीक ठीक ठीक।

0: तो खाते ना, पीते रहो।
1: प्यारे साथियों, रेडियो पर हमारी बातें सुनना और गानों का लुत्फ उठाना दोनों बहुत अच्छा है, लेकिन आज हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम के खत्म होने के बाद आप खुद को सिर्फ 5 मिनट का वक्त दें, खिड़की के पास बैठें, आसमान को देखें। हाँ हाँ, हम जानते हैं बहुत धूप होगी, चलिए ठीक है, शाम को देख लीजिएगा। बस आंखें बंद करके अपनी सांसों को महसूस कीजिएगा। खुद से पूछें कि क्या मैं सिर्फ सतह पर तैर रहा हूँ या मेरे पास भी वो गहराई है जो इस दुनिया को और मुझको और भी खूबसूरत बना सकती है। याद रखिएगा, मोती हमेशा गहराई में ही मिलते हैं। अपनी सोच को गहरा कीजिए, अपने कर्मों को गहरा कीजिए, उस नीली दुनिया को बचाने का संकल्प लीजिए और इस पूरी मानवता के लिए मिसाल बनिए। और फिलहाल तो मुझे यानी विशेषता को आप इजाजत दीजिए इस कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत को संपन्न करने की। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, दोपहर के 12 बजे हैं। आइए आप सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो आइए श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है ग्रामपुत की कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे और नयन पांडे जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी चाहे कितनी भी खूबसूरत हो अपनों के बिना अधूरी लगती है।
3: बहुत सुंदर संदेश आपका, इसके लिए हमारा आभार स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखते हैं,
2: ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 4 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। इस बात की जानकारी को बहुत ही सरल और सहज ढंग से बताया गया। हमने

0: व्यक्तिगत रूप से इन बातों पर अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
1: कृष्ण कुमार गुप्ता जी आगे लिखते हैं, करगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बखान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी हासिल हुई। इस अप्रतिम प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
0: धन्यवाद कृष्ण कुमार जी, आपकी प्रतिक्रियाओं से हमारा उत्साह बढ़ता है।
1: साथ ही साथ हम अन्य सभी श्रोताओं से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजें, सिर्फ सुविचार भेजकर ही संतुष्ट न हो जाएं।
0: जी, और अगला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
1: लिखते हैं, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। सोमवार से शुक्रवार तक हम रोज सुनते हैं, हमारे साथ हमारे बच्चे भी सुनते हैं
0: जी।
1: एक सुझाव है कि यदि सब्जी, फूल, फल व मोटे अनाज पर भी जानकारी सुनवाई जाए तो हम सबों को बड़ा लाभ होगा।
0: दिनांक 12 मई को भीषण गर्मी के उपाय, बचाव, नवतपा, थर्मल लैग जैसी बेहद उम्दा जानकारी हमने सुनी, परिवार के सभी को बेहद पसंद आई। अब उमंग कार्यक्रम में 17 सदस्य और जुड़ गए हैं। दिन पे दिन संख्या बढ़ रही है, कार्यक्रम की उपयोगिता सबको जोड़ती जा रही है। ये ज्ञान का भंडार है, इसलिए हम हृदय से उमंग टीम को आभार, धन्यवाद, शुक्रिया अदा करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल, अंजलि जंघेल, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी का।
0: गांव खिंदासर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर से कानाराम चौहान जी का।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे आपके प्रिय कार्यक्रम उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, किन दो देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था और उस दीवार का नाम क्या था?
0: इसका उत्तर है साथियों, 9 नवंबर 1989 को पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी देशों के बीच की दीवार को गिरा दिया गया था। इसे बर्लिन वॉल कहा जाता है।
1: जी, हमारा दूसरा प्रश्न था, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल में स्थित भारतीय अनुसंधान केंद्र का नाम है दक्षिण गंगोत्री। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी।
1: और अब सुनिए हमारे द्वारा पूछा गया तीसरा प्रश्न और उसका उत्तर। हमारा प्रश्न था, गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोल कर एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकते हैं?
0: गोबी के शीत मरुस्थल में बनाए जाने वाले मोबाइल घरों को यर्ट कहते हैं।
1: जी, और अब हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं।
0: इसका उत्तर है साथियों, लद्दाख क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में पाए जाने वाले पेड़ को विलोवुड ट्री कहते हैं, जिनसे क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं।
1: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के किस गांव में पड़ता है?
0: इसका उत्तर है, समुद्र तल से दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर भारत के स्पीति घाटी के हिक्किम गांव में पड़ता है।
1: तो श्रोताओं, ये थे हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। उन सभी श्रोताओं को हमारा शुक्रिया जिन्होंने भाग लिया और उत्तर भेजे। अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है,
0: भारत की किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? श्रोताओं, आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आईडी यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं और साथ ही साथ हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भी।
0: प्रश्न एक बार मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है? इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप कृपया CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए।
1: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो सुनते हैं कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
0: एक चिर परिचित लोक कथा पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि यदि कोई प्रशंसा करे तो हमें तुरंत प्रभावित नहीं होना चाहिए, हमें तथ्यों की जांच करनी चाहिए कि कहीं प्रशंसा किसी स्वार्थ के कारण तो नहीं की जा रही है।
1: जी,
2: प्यारे बच्चों नमस्ते, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक कहानी। कहानी का नाम है चालाक लोमड़ी। इस कहानी में लोमड़ी एक कौवे से रोटी का टुकड़ा छीन लेती है। कैसे छीनती है? बात यूं है कि एक बार एक कौवे को रोटी का टुकड़ा मिला। रोटी का टुकड़ा उसने

अपनी चोंच में दबा लिया। एक लोमड़ी ने रोटी का टुकड़ा जब कौवे के मुंह में देखा तो सोचा, यदि ये रोटी मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। जानते हो फिर लोमड़ी ने क्या किया? नहीं भाई, आगे क्या हुआ?

आगे क्या हुआ ये तो मैं नहीं बताऊंगी। तो सुनो ये पूरी कहानी इस गीत में।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम चालाक लोमड़ी।
1: जनजातीय समुदाय की प्रगति, आकांक्षा और विकसित भारत की यात्रा के जनजातीय गरिमा उत्सव में आइए, हम सब साथ जुड़ें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से प्रेरित होकर जनजातीय समुदाय आशा, सम्मान और दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 10 मई से 9 जून तक हर पीढ़ी की प्रगति को प्रदर्शित करता ये आयोजन एक सशक्त, समावेशी, आत्मनिर्भर और विकसित भारत की ओर अग्रसर है।
2: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम,
0: राजा रवि वर्मा।
2: ये कार्यक्रम भारत के महान चित्रकार राजा रवि वर्मा की जीवनी को एक नाटक के रूप में प्रस्तुत करता है और बताता है कि किस तरह से उन्होंने कैनवस पर अपने पेंट ब्रश से भारतीय चित्रकला को एक नया आयाम दिया, जिसका शाश्वत प्रभाव आज भी उसी प्रकार से बना हुआ है।

बेचारा कौवा अपनी रोटी गंवा बैठा ना। क्यों भला? क्योंकि उसने लोमड़ी से जब अपनी झूठी प्रशंसा सुनी तो वो घमंड में आकर गाने लगा और रोटी मुंह से गिर गई।

0: अरे अरे तुम लोगों ने ये क्या किया? कोचू मंगला, तुमने तो मंदिर की दीवारी गंदी कर दी। कोयले से ये क्या चील बिलाऊ बना दिए? अभी तो मंदिर सफेदी से पुतवाया था, तुमने उसे भी गंदा कर दिया। ठहरो ठहरो, मैं अभी राजा साहब से तुम्हारी शिकायत करता हूँ।
1: लगभग 150 साल पुरानी बात है। उस समय देश पर अंग्रेजों का राज्य था और छोटी बड़ी ढेर सारी रियासतें थीं जिनके राजा हुआ करते थे। ऐसी ही एक रियासत थी त्रावणकोर और उसकी राजधानी थी त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम को अब तिरुवनंतपुरम कहा जाता है और अब ये केरल राज्य की राजधानी है। उस समय त्रिवेंद्रम के राजा थे आयिल्यम तिरुनाल। उनकी ही रियासत में एक गांव था किलिमानूर, जहां का प्रबंध राजवर्मा देखते थे और उन्हें भी राजा कहा जाता था।
2: उनका एक हरे भरे बाग में मंदिर था। मंदिर को अभी हाल ही में सफेदी से पुतवाया गया था। राजा राजवर्मा की बहन थी उमा अंबाबाई, उनके बड़े बेटे थे कोच्चू। कोच्चू उनका घर का नाम था। वैसे उनका नाम रवि वर्मा था। रवि वर्मा की बहन थी मंगला। दोनों एक दिन बगीचे में खेल रहे थे। खेल खेल में कोच्चू ने कहा,
3: मंगला
4: हाँ
3: आ देख, मैं तुझे इस सफेद दीवार पर घोड़ा बनाकर दिखाता हूँ।
4: ठीक है।
3: अच्छा देख, वो कोयले का टुकड़ा पड़ा है ना?
4: हाँ हाँ।
3: उठाकर मुझे दे।
4: अच्छा, ये लो कोयले का टुकड़ा।
3: हाँ।
4: अब बनाकर दिखाओ घोड़ा।
1: कोच्चू ने कोयले से लकीरें खींचनी शुरू की और देखते ही देखते घोड़े का चित्र बना दिया।
3: ये हाँ ऐसे ये मैंने बना दी घोड़े की टांग।
4: अरे वाह।
3: और ये इसकी पूंछ।
4: अरे तुमने तो बिल्कुल सही घोड़े का चित्र बना दिया। पूंछ उठाकर भागते हुए घोड़े का चित्र बहुत सुंदर है।
3: अच्छा ले कोयला ले, और अब तू भी बना सुंदर सा चित्र।
4: लेकिन मुझे तो ले, अरे मगर
3: ओ, अब बना तो सही। ले पकड़ कोयला पकड़।
4: ठीक
3: हाँ,
4: है
3: हाँ, अब बना।
2: मंगला चित्र बनाने जा ही रही थी कि उधर से गुजरते हुए माली की निगाह उन पर पड़ गई। माली ने डांटा,

0: दीवार खराब कर दी और फिर राजा साहब से शिकायत करने चला गया। इस पर मंगला बोली,
1: भाई अब क्या होगा, माली गया है शिकायत करने, मामा देखेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे।
2: तू चिंता मत कर। अच्छा चल, हम दोनों झाड़ियों में छिप जाते हैं।
1: ठीक है,
2: चल चल चल चल, चल। हम दोनों झाड़ियों में छिप जाते हैं।
3: कोच्चू और मंगला झाड़ियों के पीछे छिप गए और तभी माली राजा साहब को लिए हुए वहां पहुंचा।
4: अरे ये तो घोड़े का हूबहू चित्र बना दिया है कोच्चू ने, देखो तो सही, पूंछ उठाए घोड़ा कैसा भाग रहा है।
0: माली परेशान, राजा तो चित्र की तारीफ कर रहे हैं, मंदिर की दीवार खराब कर दी, इस बारे में कुछ कह ही नहीं रहे।
5: कहाँ है कोच्चू और मंगला? है
6: मालिक, मैं अभी तो उन्हें छोड़कर गया था, आप उन पर नाराज होंगे ये सोचकर कहीं इधर उधर भाग गए होंगे।

राजा साहब ने पहचान लिया कि कोच्चू में चित्रकार बनने की क्षमता है। राजा साहब स्वयं एक अच्छे चित्रकार थे, विद्या प्रेमी थे। उन्होंने कोच्चू को प्रोत्साहित किया, उसे चित्र बनाना सिखाने लगे। लेकिन कोच्चू के पिता नीलकांतन भट्टा तिरपड़ को यह पसंद नहीं था कि उनका बड़ा बेटा कोच्चू बड़ा होकर एक चित्रकार बने। नीलकांतन वेदों के ज्ञाता, संस्कृत के विद्वान थे। वो चाहते थे कि कोच्चू उनकी तरह संस्कृत का विद्वान बने। केरल की अपनी एक प्रथा रही है कि शादी के बाद दुल्हन दूल्हे के घर रहने के लिए नहीं जाती, बल्कि दूल्हा ही दुल्हन के परिवार में रहने के लिए आता है। नीलकांतन भी अंबाबाई के भाई राजा साहब के यहां रहते थे। उन्हें राजा साहब की बात माननी पड़ी, लेकिन यह भी तय रहा कि कोच्चू संस्कृत भी सीखेंगे। कोच्चू अपने पिता से संस्कृत भी सीखने लगे, मां से संगीत और मामा राजा साहब से चित्रकला। इस प्रकार साहित्य, कला और संस्कृति के धार्मिक और कलात्मक परिवेश में उनका पालन पोषण हुआ। तरुणावस्था आते आते वो सभी में सिद्धहस्त होते चले गए। तभी त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया।

0: बहन अम्बा
1: जी,
0: त्रावणकोर के राजा का बुलावा आया है। उन्होंने कहला भेजा है कि घराने में कोई अच्छा सा विवाह योग्य युवक हो तो उसे भी साथ लेते आए।
1: फिर
0: क्या, राजा का बुलावा आया है तो मुझे जाना तो पड़ेगा ही। सोचता हूँ कोचू को साथ ले जाऊं। यहाँ वो जो कुछ लिख पढ़ सकता था, जितना कुछ सीख सकता था
1: जी,
0: सीख ही चुका है। आगे सीखने के लिए उसका त्रिवेंद्रम जाना ही ठीक रहेगा।
1: तो फिर
0: तुम कहो तो उसे त्रिवेंद्रम ले जाऊं।
1: ले जाओ, मैं क्या मना करती हूँ। हाँ, उसके पिताजी से भी पूछ लो।

पिता नीलकांतन ने भी स्वीकृति दे दी। भला उन्हें क्या आपत्ति होती। त्रिवेंद्रम जाकर कोच्चू आगे ही बढ़ेगा, वहां के विद्वानों, गुणियों और कलाकारों से उच्च शिक्षा पाएगा, और सबसे बड़ी बात कि त्रिवेंद्रम के राजा का उसे आश्रय मिलेगा। और इस प्रकार कोच्चू त्रिवेंद्रम के राज दरबार में पहुंच गए।

0: आपके यहाँ सब कुशल क्षेम तो है?
1: जी हाँ, ईश्वर की कृपा से सब ठीक है।
0: आपके साथ ये नवयुवक कौन है?
1: महाराज, ये रवि है, मेरी बहन अंबाबाई और बहनोई विद्वान नीलकांतन भट्टा तिरुपद का बड़ा बेटा। इसे भी मैं आपके दर्शनों के लिए अपने साथ ले आया हूँ। इसने तमिल और संस्कृत का अध्ययन किया है महाराज। गायन, वादन और कथकली में निपुण है और चित्रकला का अभ्यास करता है।
0: अरे, तब तो ये नवयुवक बहुत अच्छा है, बहुत गुणवान है।
1: महाराज, इसमें आगे बढ़ने की बहुत ललक है, लेकिन हम किलिमानूर में रहकर इसे जितना सिखा सकते थे उतना सिखा दिया है। आगे की शिक्षा तो उसे आपके आश्रय में ही मिल सकती है।
0: इसमें क्या परेशानी है, इसकी उच्च शिक्षा की व्यवस्था हम यहीं करा देंगे। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े गुणी और ज्ञानी विद्वान हैं। राज चित्रकार रामास्वामी नायकर हैं। हम इसे चित्रकला की शिक्षा रामास्वामी नायकर से दिला देंगे।
1: आप ऐसी व्यवस्था करा दें तो बड़ी कृपा होगी।
0: आप निश्चिंत हो जाएं, समझ दीजिए कि इसकी व्यवस्था हो गई।

0: राजा तिरुनाल ने दरबार में उपस्थित राज चित्रकार रामस्वामी नायकर को संबोधित करते हुए कहा,
1: नायकर जी, आज से ये नवयुवक आपका शिष्य है। इसे आप राजकीय रंगशाला में चित्रकला की उच्च शिक्षा दें। ये हमारे राजा राजवर्मा का भांजा है और होनहार नवयुवक है, और अब ये हमारे संरक्षण में है।
2: रामस्वामी नायकर ने देखा कि नव युवक का हाथ तो उनसे भी कहीं अधिक सधा हुआ है। ऐसे में इसे कुछ सिखाने का मतलब होगा अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। इसलिए उन्होंने उसे कुछ नहीं सिखाया, बल्कि उसे डांटता फटकारता रहा। तिरुनाल को पता चला कि रामस्वामी उसे कुछ नहीं सिखा रहे, तो उन्होंने रवि को रंग दिए, विदेशी चित्रकारों के चित्रों के एल्बम दिए और कहा,
1: रवि
3: जी,
1: तुम इन चित्रों को देख देख कर चित्र बनाना और रंग भरना सीखो, बराबर अभ्यास करो।
3: जी।
0: रवि वर्मा यही करने लगे। तभी दरबार में राज परिवार के लोगों के चित्र बनाने के लिए एक विदेशी चित्रकार आया। नाम था उसका थियोडोर जेनसन। राजा तिरुनाल ने उससे कहा कि वो रवि वर्मा को अपनी कला सिखाए, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इस पर राजा तिरुनाल ने कहा,
1: मिस्टर जेनसन,
4: यस,
1: जब आप चित्र बना रहे हों, तब इसे अपने पास खड़ा रहने दें।
4: नहीं नहीं, ऐसा करने से मेरा ध्यान भंग होगा। मैं इसे अपने पास भी खड़ा रहने नहीं दे सकता।
1: तो फिर हमें आपसे चित्र नहीं बनवाने हैं, आप जा सकते हैं।
2: राजा तिरुनाल की ये बात सुनकर जेनसन घबरा गया। घबराता क्यों ना, इससे उसे मिलने वाले भरपूर धन और मान सम्मान खोने का डर जो पैदा हो गया। वो सोचने लगा,
4: राजा साहब की बात तो मुझे माननी ही पड़ेगी। अगर नहीं मानता तो मेरी इज्जत और मान खत्म हो जाने का डर है। अच्छा, सिखाऊंगा उसे चित्र बनाना। ऐसा सिखाऊंगा कि उसे कभी कुछ समझ नहीं आएगा। पर मैं राजा साहब को ना क्यों करूं?
2: इस तरह हार कर उसने राजा तिरुनाल की बात मान ली। लेकिन उसने भी यही कोशिश की कि रवि वर्मा उसे काम करता देखकर भी कुछ न सीख सके। लेकिन रवि वर्मा तो उसके कुछ ना सिखाते

0: हुए भी बहुत कुछ सीख गए। वो बराबर चित्र बनाते रहे। उन्हीं दिनों मद्रास में आयोजित चित्र प्रदर्शनी में उन्होंने अपना एक चित्र भेजा। इस चित्र को सर्वश्रेष्ठ माना गया और उन्हें मद्रास के गवर्नर की ओर से स्वर्ण पदक पुरस्कार में दिया गया। इस स्वर्ण पदक से शुरू हुआ उन्हें सम्मान और पुरस्कारों के मिलने का सिलसिला, जो बराबर जारी रहा। उन्हें देश और विदेश के अनेक सम्मान मिले। अंग्रेजों ने उन्हें हिंद केसरी सम्मान और राजा की उपाधि दी। उन्होंने अनेक राजा महाराजाओं और बड़े बड़े लोगों के व्यक्ति चित्र बनाए, जो अंग्रेज चित्रकारों द्वारा बनाए चित्रों से कहीं अधिक उत्तम थे। उन्हें अनेक राजा महाराजाओं ने आमंत्रित किया और अपने महलों में लगाने के लिए चित्र बनवाए। इन चित्रों के बदले में उन्होंने रवि वर्मा को खूब धन मान सम्मान दिया। यहां तक कि मैसूर के महाराज ने तो उन्हें इनाम में दो हाथी तक दिए।
1: राजा रवि वर्मा ने केवल राजा महाराजाओं के चित्र ही नहीं बनाए, बल्कि आम लोगों के चित्र भी बनाए और सबसे अधिक चित्र बनाए देवी देवताओं के, भागवत और पुराणों के। कवि कालिदास की कृति शाकुंतलम पर आधारित उन्होंने कई चित्र बनाए, जिनमें से एक चित्र को तो विदेशों में भी खूब प्रशंसा मिली। ये चित्र था राजा दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का। इस चित्र को अंग्रेज विद्वान सर मोनियर विलियम्स ने देखा तो वो बहुत प्रभावित हुए। सर मोनियर विलियम्स ने कवि कालिदास के नाटक शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। वो इस चित्र को अपने अनुवाद के मुख पृष्ठ पर छापना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने रवि वर्मा से अनुरोध किया कि इस चित्र को छापने की उन्हें अनुमति दें। रवि वर्मा ने अनुमति दे दी। इस चित्र के मुख पृष्ठ पर छपने से इसकी देश विदेश में खूब प्रशंसा हुई और किताब भी खूब बिकी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राजा रवि वर्मा, और अब इसी के साथ हम आज के उमंग कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए आप सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है केके की आवाज में। सईद कादरी के बोल हैं संगीत प्रीतम का। फिल्म का नाम है गैंगस्टर।

0: देश के विकास में सहभागी बने।
1: आइए अब सुनते हैं बॉडीगार्ड फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है एशकिन और क्लिंटन ने। शब्बीर अहमद और नीलेश मिश्रा के बोल हैं, धुन बनाई है हिमेश रेशमिया ने।

बॉडीगार्ड। जी हाँ, इस गीत को अभी आप सुन रहे थे इसी फिल्म से। गीत को गाया था ऐश किंग और क्लिंटन ने, शब्बीर अहमद और नीलेश मिश्रा के बोल थे, धुन बनाई थी हिमेश रेशमिया ने। कार्यक्रम में तराने का अगला तराना हमने लिया है मोहित चौहान की आवाज़ में, इरशाद कामिल के बोल हैं, धुन बनाई है प्रीतम ने और फिल्म का नाम है जब वी मेट।

अभी आप सुन रहे थे मोहित चौहान की आवाज़ में इरशाद कामिल के बोल। संगीत प्रीतम का था, फिल्म का नाम था जब वी मेट। आकाशवाणी आगरा से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए तराने। आइए आप सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज़ में अमिताभ भट्टाचार्य के बोल। संगीत प्रीतम का है, फिल्म का नाम है फैंटम।

फैंटम फिल्म के इस गीत के बाद अगला जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे गाया है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने। इब्राहिम अश्क के बोल हैं, संगीत राजेश रोशन का, फिल्म का नाम है क्रिश।

आकाश उनका गीत अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ों में। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम नए तराने अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 1 बजने को है। अब आप समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। उन्होंने कहा कि इन 12 वर्षों ने निर्धनों और वंचितों के जीवन में आशा, अवसर और स्वावलंबन के नए अध्याय लिखे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धन शोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने

0: रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
1: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
0: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से ईरान के मिसाइल हमले पर जवाबी कार्रवाई न करने का आग्रह किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि इससे शांति समझौते तक पहुंचने के प्रयासों में बाधा आ सकती है। उन्होंने ईरान से फिर वार्ता शुरू करने का आग्रह किया है। भारतीय शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक निफ्टी और सेंसेक्स में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.6% की गिरावट आई। सेंसेक्स 434 अंक गिरकर 73,809 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi today highlighted the government's 12-year journey of welfare for the poor. In a social media post, he said India has witnessed many transformations and at the core of these changes is Garib Kalyan. He said the government has always been inspired by Antyodaya and the effort has always been to ensure that the benefits of development reach those who were left behind for decades. The Prime Minister underlined that every initiative like Jan Dhan accounts, direct benefit transfers, Swachh Bharat, PM Awas Yojana, Jal Jeevan Mission and Ayushman Bharat has been driven by the objective of ensuring dignity and opportunity to people. He also said technology has played a vital role in ensuring a better quality of life for the poor. West Bengal is set to implement the Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, marking a significant step towards expanding healthcare coverage in the state. The National Health Authority and Government of West Bengal will sign a Memorandum of Understanding in New Delhi today in the presence of Union Health Minister J.P. Nadda and West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari. Under the Trinamool Congress regime, Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana was not implemented in the state. Trinamool Congress strongman Jahangir Khan was arrested early this morning by the West Bengal police. He was apprehended near the Nepal border. He was reportedly attempting to flee across the border when STF officials, acting on a secret tip-off, intercepted and detained him. The arrest comes in the wake of the Palta Assembly re-election held on the 21st of last month. Just 48 hours before polling, Jahangir Khan dramatically withdrew from the contest, announcing at a press conference that he was stepping aside in support of a special development package promised by Chief Minister Shubhendu Adhikari. Despite his withdrawal, Khan's name remained on the ballot beside the Trinamool symbol and he finished fourth while the BJP candidate won the election. Jharkhand Chief Minister Hemant Soren suffered a major legal setback today after a special PMLA court rejected his discharge petition in a money laundering case linked to 8.86 acres of land in Ranchi's Batgai area. The court had earlier reserved its order.

कार्यक्रम घर संसार सुन रही मेरी सभी श्रोता बहनों को आपकी रेडियो सहेली शिवांगी दुबे का प्यार भरा नमस्कार। हमेशा की तरह घर संसार के पिटारे में है ढेर सारी बातें, तो चलिए बहनों शुरू करते हैं आज का सफर, आज की चर्चा नई पीढ़ी की परवरिश से। बहनों बहुत तेजी से ना समय बदल रहा है, बचपन बदल रहा है और उसके साथ साथ पेरेंटिंग के तरीके भी बदल रहे हैं। आज के बच्चे पहले से शायद थोड़ा ज़्यादा तेज, समझदार और सेंसिटिव हो चुके हैं। उनके पास ढेर सारी जानकारी है, बहुत ज़्यादा जानकारी, एक्सपोजर भी ज़्यादा है, लेकिन साथ ही चैलेंजेस भी उतने ही बढ़ गए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है बहनों कि क्या हम अपने बच्चों के दोस्त बने या उन्हें अनुशासन में रखें। दरअसल सही जवाब इन दोनों के बीच ही कहीं छुपा है। बहनों बच्चों के साथ आज के समय में दोस्ती जरूरी है ताकि वो खुलकर अपनी बात कह सकें, अपनी परेशानियां शेयर कर सकें, लेकिन साथ ही अनुशासन भी उतना ही जरूरी है ताकि उन्हें सही और गलत का फर्क समझ आ सके। अगर हम सिर्फ दोस्त बन जाएंगे तो कहीं ना कहीं सीमाएं टूट सकती हैं, और अगर सिर्फ सख्त रहेंगे तो बच्चे हमसे दूर होते जाएंगे। दोनों ही आदर्श परवरिश की स्थितियों में नहीं गिने जा सकते, इसलिए ज़रूरी है बहनों कि एक ऐसा संतुलन बनाया जाए जहां प्यार भी हो, समझ भी हो और सही मार्गदर्शन भी। कभी कभी बच्चों को रोकना भी ज़रूरी होता है और वो भी प्यार ही है, और कभी कभी उन्हें उचित आज़ादी देना भी ज़रूरी है। बहनों आज की परवरिश चुनौतियों से भरी है। जहां पहले बच्चों का बचपन आंगन में खेलते कूदते बीतता था, तो वहीं आज का बचपन मोबाइल स्क्रीन और डिजिटल दुनिया के बीच गुजर रहा है। बच्चों पर जानकारी ज़्यादा है पर सही इस्तेमाल और सही इस्तेमाल की समझ शायद उतनी नहीं, इसलिए उन्हें आपके सही गाइडेंस की ज़रूरत भी उतनी ही ज़्यादा है। अब सिर्फ बच्चों को कमांड देना ही परवरिश नहीं है, बल्कि उन्हें सुनना, उन्हें समझना, ये भी परवरिश का

बहुत जरूरी अंग बन चुका है। तो बहनों, परवरिश अब सिर्फ ना तो शक्ति है और ना ही आजादी, ये इन दोनों के बीच का संतुलन है। साथ ही आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में माँ बाप के लिए एक चुनौती समय की कमी भी है। पर फिर भी याद रहे कि आपके बच्चों को आपका समय, आपका ध्यान और आपका साथ चाहिए, क्योंकि परवरिश सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, ये रिश्तों की राह है जो भरोसे, प्यार और समझ से बनी है, और बच्चे इसी राह पर चलकर अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो चर्चा में फिलहाल बातें इतने ही, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: बहनों, मेरी माटी मेरा देश में आज हम बात करेंगे समंदर की बेटियों की, क्योंकि आज है विश्व महासागर दिवस। तो चलिए करते हैं भारत की उन बेटियों की बात जिन्होंने अपने जज्बे और अपनी समझ से नापा समंदर को, गहराइयों से ऊंचाइयों तक। बहनों, जब हम समंदर और विज्ञान की बात करते हैं तो सबसे पहले जिस नाम की गूंज सुनाई देती है वो है अदिति पंत। भारत की ऐसी बेटी जो कि पहली महिला वैज्ञानिकों में से एक है जिन्होंने अंटार्कटिका अभियान 1983 में हिस्सा लिया। उन्होंने समुद्र विज्ञान में बहुत से महत्वपूर्ण शोध किए बहनों, खास करके समुद्र के पानी में समुद्र की संरचना और जीवन को समझने में। और जब बात समुद्र के भीतर छुपी विशाल दुनिया को समझने की आती है तो एक नाम जो सामने आता है वो है आशा डी बोस। उन्होंने इंडियन ओशन में ब्लू वेल पर रिसर्च कर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। साथ ही ये ओशन वेल नामक संस्था की संस्थापक भी हैं, जो मरीन रिसर्च और एजुकेशन पर काम करती हैं। और अगर बात समुद्र के किनारों, प्रकृति और पर्यावरण की करें तो जिन बेटियों का नाम सामने आता है वो हैं जानकी लेनिन और सुनीता नारायण। जहां जानकी अपने लेखन से समुद्री तटों, जैव विविधता और प्रकृति के संरक्षण के प्रति जागरूक कर रही हैं, तो वहीं सुनीता लंबे समय से जल संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और क्या क्लाइमेट चेंज पर काम कर रही हैं। हमारे जल स्रोतों और महासागरों को बचाने के लिए आवाज उठा रही हैं। और बहनों, इसी कड़ी में अब बात आती है साहस की, समंदर की सुरक्षा और जिम्मेदारी की। तो यहाँ जिस बेटी का नाम गर्व से लिया जाता है वो है उज्ज्वला गोस्वामी। भारतीय नौसेना में महिला पायलट के रूप में उन्होंने समुद्र के ऊपर उड़ान भरते हुए कई महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में भाग लिया। उनका सफर सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो सीमाओं को तोड़ना चाहती हैं, महासागरों को गहराइयों से ऊंचाइयों तक नापना चाहती हैं। तो इस महासागर दिवस हम सिर्फ समंदर को नहीं बल्कि उन महिलाओं को भी सलाम करते हैं जिन्होंने लहरों से दोस्ती की और हमें सिखाया कि अगर हौसले मजबूत हों तो कोई समंदर बड़ा नहीं होता। ये तो थी बात समंदर की बेटियों की। अब हम चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट और करते हैं आज की वार्ता शुरू। बहनों, जैसे कि हम बात कर रहे हैं समंदर की यानी जल की, जल ही जीवन है। ये केवल एक कहावत नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व की सच्चाई भी है। और इस जीवनदायिनी जल को बचाने की जिम्मेदारी में महिलाओं का योगदान हमेशा ही महत्वपूर्ण रहा है। घर परिवार से लेकर समाज तक महिलाएं जल संरक्षण की असली धुरी रही हैं। आइए करते हैं इसी पर वार्ता, जल संरक्षण में महिलाओं का योगदान। वार्ताकार हैं चित्रांशी।
1: मेरा आज का विषय है जल संरक्षण में महिलाओं का योगदान। पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पानी और जीवन आज की तारीख तक मौजूद है। पृथ्वी लगभग 71% जल से घिरी हुई है, हालांकि पीने के लायक पानी बहुत कम है। जल की भूमिका हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है यह सभी को मालूम है। हमारे दैनिक जीवन से लेकर सामाजिक जीवन तथा आर्थिक जीवन में भी जल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसका प्रवाह धरती पर जीवन निर्धारित करता है। धरती पर जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जल का संरक्षण और बचाव बहुत जरूरी है। जीव को जीवित रखने के लिए जल एक मुख्य संसाधन है। एवं जल का स्वच्छ

0: होना भी जरूरी है, अर्थात जल ही जीवन है। जल मात्र मनुष्यों, जानवरों या अन्य जीवों के लिए उपयोगी नहीं है, बल्कि जल एक संसाधन है जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव है। अगर आप सामाजिक ऐप या न्यूज से जुड़े होंगे तो आप पाएंगे कि आधुनिक मनुष्य दूसरे ग्रह पर सैटेलाइट से जल की खोज कर रहे हैं ताकि जीवन संभव हो सके। अब आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि जीवन को चलाने हेतु जल का क्या महत्व है। अतः जल है तो कल है। गांव के किसान जल का उपयोग अपनी खेती के लिए करते हैं। मनुष्य के साथ साथ पेड़ पौधों के जीवन में भी पानी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जब पेड़ पौधों को पर्याप्त जल मिलता है तब वह अच्छी तरह बढ़ पाते हैं और हमें फल फूल शुद्ध हवा इत्यादि प्रदान करते हैं। पानी का उपयोग बहुत से उद्योगों में भी किया जाता है। माल के उत्पादन के विभिन्न चरणों में इसकी आवश्यकता होती है। हमारे उद्योगों और कारखानों को विभिन्न औद्योगिक पानी की जरूरत है। पानी हमारे धार्मिक समारोह जैसे शादियों और हवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पानी को बचाना और संरक्षित करना आज की आवश्यकता है। कई गांव पीने के पानी की बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। हम सभी को पानी की समस्या की गहराई को समझना चाहिए और जल संरक्षण का प्रयास करना चाहिए। सुना है कि जल ही जीवन है और जीवन देने की शक्ति ईश्वर ने महिलाओं को प्रदान की है। महिलाएं जल का मुख्य उपयोग करती हैं। वे खाना पकाने, धोने, परिवार की स्वच्छता सफाई के लिए जल का प्रयोग करती हैं। आज से 7-8 दशक पहले की महिलाएं, जिनके बारे में हम अपनी दादी नानी से सुनते थे, उस समय की महिला के दिन की शुरुआत ही पर्यावरण एवं जल संरक्षण से होती थी। उनके धर्म कर्म में पर्यावरण एवं जल संरक्षण के कार्य प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से समाहित थे। जल को देवतुल्य समझकर अमृत की तरह काम में लिया जाता था। घर गृहस्थी की सार संभाल के साथ साथ महिलाओं द्वारा अपनाए गए विभिन्न आयाम थे, जिससे मरुस्थल के क्षेत्र में जल की कमी के बावजूद जल प्रबंधन 100% था। महिलाओं द्वारा सभी शुभ अशुभ अवसरों पर किए जाने वाले अनुष्ठान में जल की आवश्यकता और महत्ता को ध्यान में रखते हुए इसके संरक्षण हेतु प्रयत्न किए जाते थे। आज के वर्तमान समय में विश्व, राष्ट्र, राज्य व गांव स्तर पर महिलाएं जल संरक्षण में भूमिका निभा रही हैं। राष्ट्रीय स्तर पर हमें गंगा नदी को लेकर उमा भारती का कार्य, नर्मदा नदी को लेकर मेघा पाटकर का नाम उल्लेखनीय है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में उल्का महाजन का कार्य उल्लेखनीय है। बुंदेलखंड की महिलाओं ने जल सहेलियां बनकर अपने श्रम से पुराने जल स्रोतों को पुनर्जीवित कर दिया है और बर्बाद होते पानी को उपयोगी बना दिया। इसी तरह कई महिलाओं ने गोहनी गांव में, कुरोती गांव में, क्लोथरा गांव में जल के संरक्षण के लिए योगदान दिया है। इसी कारण महिलाओं को जागरूक होने की आवश्यकता है। महिलाओं को कम पानी के उपयोग में अधिक काम करना चाहिए। उन्हें पानी की कीमत समझनी होगी और यदि जल संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में शुद्ध पेयजल मिलना मुश्किल हो जाएगा। महिलाओं को बर्तन साफ करने, कपड़े धोने, घर की धुलाई जैसे कार्यों को करने के दौरान पानी की बचत करनी चाहिए। कई जिलों में तालाब एवं अन्य जल संग्रहण संरचनाओं के माध्यम से भूजल भरण, वेस्ट वाटर का प्रयोग, जल छाजन विकास, पौधा रोपण आदि से जल संरक्षण के प्रति जागरूक होने की अपील की जा रही है। इस दौरान महिलाओं ने सोखता गड्ढे का निर्माण किया। जल संरक्षण हमारे जीवन का आधार है। हर व्यक्ति को जल संरक्षण की शुरुआत अपने घरों से करने की आवश्यकता है। जल संपदा को हम हमेशा सुरक्षित रखें। यदि हमें जल भूस्थल बढ़ाना है तो पारंपरिक जल संरक्षण के तरीकों को पुनर्जीवित करना होगा और आधुनिक जल संरक्षण को अपनाना होगा, जिसमें महिलाओं की विशेष भागीदारी आवश्यक है, क्योंकि पानी के अभाव में सबसे ज्यादा संघर्ष पूर्ण जीवन महिलाओं का ही होता है। यदि जल आपूर्ति सभी क्षेत्र श्रेणों में समान और भरपूर मात्रा में हो तो महिलाएं अपनी संपूर्ण ऊर्जा परिवार, समाज और देश के विकास में लगा सकती हैं। पानी बचाना हमारा कर्तव्य है और हर व्यक्ति को इसे निभाना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने व्यवहार में परिवर्तन आने की जरूरत है ताकि जल संरक्षण की पहल सही मायने में सार्थक हो सके।
1: असल में बहनों, महिलाओं की सोच में ही सहेजने और संभालने की जो प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है,

वही उन्हें जल संरक्षण का सबसे मजबूत स्तंभ भी बनाती है। अगर हर महिला अपने घर और समाज में जल बचाने का संकल्प ले ले तो आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी की कमी का संकट काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो ये तो थी अभी वार्ता जल संरक्षण में महिलाओं का योगदान। फिलहाल सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

बहनों, अब चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट कुछ तुम कहो कुछ हम की तरफ। बहनों, हम सभी के जीवन में जब कभी तो ऐसा लगता ही है कि कोई सच्चा साथी हो जो बस हमें सुन ले, या कोई ऐसा हो जिससे हम बिना संकोच सब कह सकें।

0: सके। मेरी माँ कहती थी कि जीवन में ऐसा साथी सिर्फ आप और आपकी डायरी हो सकती है, क्योंकि वो आपको कभी जज नहीं करती। तो चलिए करते हैं आज हमारी मेहमान से इसी विषय पर बात, डायरी हमारी सहेली पर।
1: सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में आकांक्षा जी।
2: धन्यवाद।
1: आपने डायरी लिखना कब और क्यों शुरू किया?
2: देखिए, मैंने डायरी लिखने की शुरुआत तब की थी जब मैं अपने जिंदगी के रोज की भागदौड़ से खुद से बातें करने का भी समय नहीं निकाल पाती थी
1: जी।
2: तब लगा कि अगर मन की बातें कहीं लिख दूं या किसी से कह दूं तो शायद मेरा मन हल्का हो जाएगा।
1: बिल्कुल।
2: और सच मानिए, तब से डायरी मेरी सबसे प्यारी दोस्त बन चुकी है।
1: बहुत ही सुंदर बात आपने कही। और आप मानती हैं कि डायरी लिखने से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ता है?
2: हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जब मैं अपने मन के डर, अपनी थकान या अपनी खुशियाँ या अपने दुख कागज पर उतारती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे दिल का बोझ उतर गया है। मेरी बातें मैंने अपने सामने खोल कर रख दी हैं।
1: जी।
2: कई बार तो अपने पुराने पन्ने पढ़ते पढ़ते हौसला मिल जाता है कि हाँ, मुश्किल वक्त बीत चुका है और आगे का रास्ता आसान हो जाएगा।
1: बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और मैं भी मानती हूँ कि डायरी सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि हमारे दिल का आईना होती है। अच्छा, ये तो थी बात आपकी, पर क्या आपको लगता है कि हर लड़की को, चाहे वो शादीशुदा हो या अविवाहित, उसे डायरी लिखनी चाहिए?
2: बिल्कुल, क्योंकि डायरी हमें खुद से जोड़ती है
1: जी।
2: हमें दिखाती है हम क्या हैं, हमारे सपने, हर छोटे मोटे राज हम सब लिख सकते हैं उसमें। जब हमें कोई नहीं समझ पाता है या तो हमको कौन सुनता है, डायरी हमको सुनती है।
1: जी।
2: और सच कहूँ तो कई बार डायरी ही वो आईना बनती है जो हमको हमारी असली पहचान दिखाती है। जब भी अकेलापन लगता है या मन में बहुत सारी बातें होती हैं तो डायरी में लिखा करो, क्योंकि मैं खुद डायरी में लिखती हूँ। डायरी में लिखने से मन हल्का होता है और सोच साफ होती है। कई बार तो अपनी लिखी बातें पढ़कर ही हिम्मत मिलती है।
1: बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, और बहुत ही खूबसूरत कहा आपने। सचमुच बहनों, डायरी लिखना सिर्फ कागज पर शब्द नहीं बल्कि दिल की देखभाल का तरीका भी है। तो क्यों ना हम सब भी आज से थोड़ा समय खुद को दें और अपनी डायरी को अपना सच्चा हमराज बना लें। याद रखिए, डायरी लिखना एक आदत है जो हमें हमारी ही जिंदगी का सबसे अच्छा साथी बनाती है।
0: तो बहनों, अभी हमने की अपनी सहेली की बात, हमारी सच्ची सहेली की बात। चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ। महिलाओं का कार्यक्रम हो और साज श्रृंगार की बात ना हो तो ज्यादती ही होगी ना। तो करते हैं बात फैशन ब्यूटी में आज एक ऐसे ट्रेंड की जो ना सिर्फ आसान है बल्कि आज की महिलाओं की पहली पसंद भी है, और वो है मिनिमल मेकअप, यानी कम मेकअप में ज़्यादा खूबसूरती। क्योंकि बहनों, अब हैवी मेकअप से ज़्यादा नेचुरल लुक को पसंद किया जा रहा है। ऐसा मेकअप जिसमें आपकी असली स्किन टोन के साथ नेचुरल ग्लो भी नजर आए। मिनिमल मेकअप मतलब कि सही चीज़ सही मात्रा में, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। जैसे कि एक अच्छा मॉइस्चराइजर, हल्का बीबी या सीसी क्रीम, थोड़ा कंसीलर जहाँ ज़रूरत हो, हल्का कॉम्पैक्ट और थोड़ा ब्लश, और हाँ, साथ में नेचुरल न्यूड लिपस्टिक या लिप बाम। बस इतना ही काफ़ी है आपके लुक को फ्रेश और ग्रेसफुल बनाने के लिए। आपको ऑफिस जाना हो या किसी पार्टी में, आप झटपट तैयार हैं और कंफर्टेबल भी महसूस कर रही हैं। ये पूरा दिन आप इसके साथ रह सकती हैं और बहुत ही आरामदायक महसूस कर सकती हैं। बहनों, मिनिमल मेकअप आपको छुपाता नहीं भारी मेकअप की लेयर्स में, बल्कि आपकी खूबसूरती को उभारता है। तो श्रोता बहनों, अब मेकअप का नया दौर चल रहा है जिसमें दिखावे से ज़्यादा सिंप्लिसिटी और चार्म है, तो आप भी आज ही मिनिमल मेकअप को ट्राई कर लें, इस नए ट्रेंड का हिस्सा बने और ग्लो करें। ये थी बातें फैशन ब्यूटी की, फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: बहनों, गर्मियां आती ना, हमारी जीभ ठंडा खाने को मांगती है, और जब बात ठंडे की हो तो उसमें अव्वल नंबर पर आती है आइसक्रीम कुल्फी। तो आज की स्पेशल रेसिपी है ठंडी ठंडी स्वादिष्ट हेल्दी मावा मखाना कुल्फी। 4 से 5 लोगों के लिए इसे बनाने के लिए आपको चाहिए 1 लीटर दूध, 1 कप मखाना जिसे आप हल्का भूनकर

ठंडा होने लगते हैं। 4 से 5 पिसी इलायची, थोड़े से कटे ड्राई फ्रूट्स जैसे कि बादाम, पिस्ता। इसे बनाने के लिए हल्के भुने मखानों को दरदरा पीस लें। अब दूध को धीमी आंच पर गाढ़ा होने तक उबालें। जब दूध गाढ़ा हो जाए और थोड़ा सा क्रीमी हो जाए, तब इसमें मावा डालें और अच्छे से मिलाएं। अब इसमें पिसे हुए मखाने, चीनी स्वाद अनुसार, इलायची पाउडर और बाकी चीज़ें डालकर 5 से 7 मिनट तक थोड़ा और पकाएं। अब गैस बंद करके मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें और ड्राई फ्रूट्स में से कुछ ड्राई फ्रूट्स पर बचा लें, जिसको आप ऊपर से डालकर फिर से चलाएं। इस मिश्रण को कुल्फी मोल्ड में या छोटे कप में डालकर 6 से 8 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दें। बस फिर तैयार है आपकी घर पर बनी हेल्दी कुल्फी। बहनों, मैं तो इसे रात में जमा कर रख देती हूँ और अपने परिवार के साथ अगले दिन इसे खूब मजे से खाती हूँ। तो मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप भी इसे एक बार तो ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी बन जाती है और ये बहुत ही हेल्दी है। तो इस गर्मी इस कुल्फी की ठंडक को अपने परिवार के साथ प्यार से बांटें और इस स्वाद को दुगना करें। ये थी रेसिपी टाइम। ये सुनते हैं ये गीत।

प्यार, त्याग और समझदारी का नाम है जिसे एक महिला हर दिन अपने छोटे छोटे प्रयासों में सींचती है। कभी वो माँ बनकर सबकी चिंता करती है, कभी बेटी बनकर रिश्ते जोड़ती है, तो कभी पत्नी बनकर हर मुश्किल में साथ निभाती है। लेकिन इस सब के बीच एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है, आप सिर्फ किसी का रिश्ता नहीं है, आप खुद में एक पूरी पहचान है। आपका सपना, आपकी खुशी और आपका सुकून भी उतना ही मायने रखता है जितना इस घर का हर रिश्ता। घर को संभालते संभालते खुद को मत भूलिए, क्योंकि जब आप खुश होंगी तभी घर में असली खुशहाली आएगी। छोटी छोटी खुशियां चुनिए, खुद के लिए थोड़ा समय निकालिए और अपने मन की बात भी सुनिए। फिलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। आपकी रेडियो सहेली शिवांगी दुबे का आपको प्यार भरा नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर संसार। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 1:45 हुए हैं और ये समय रहता है कार्यक्रम सुगम संगीत का। इस कार्यक्रम में आज सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और गुलाम अली की गाई हुई गजल। लीजिए सुनिए ये गजल जिसके बोल हैं, दया रे दिल की रात में चराग सा जला गया, मिला नहीं तो क्या हुआ, वो शक्ल तो दिखा गया।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गीत और गजल। इसी के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 2 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: Red alert for heavy rainfall over coastal Karnataka till Wednesday. IMD said conditions are favorable for the further advance of the southwest monsoon into parts of central Arabian Sea, Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh and Tamil Nadu over the next 3 to 4 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says welfare of the poor inspired by Antyodaya driving government policies for the last 12 years. West Bengal set to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana today, marking full coverage of the scheme in the country. Delhi High Court issues notices to the Centre and CBSE on alleged discrepancies in board's on-screen marking system. Israel and Iran trade fresh missiles attacks on each other, escalating West Asia conflict. Akashwani celebrates completion of 90 years of trust and public service. And in cricket, India enforced follow-on after bunting out Afghanistan for 152 in their first innings in the one-off test at New Chandigarh. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीबीएसई बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और क्रिकेट में भारत ने न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान को पहली पारी में 152 रन पर आउट करने के बाद फॉलो ऑन कराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमेशा से सरकार के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और यही कोशिश रही कि विकास का लाभ दशकों से पीछे छूट गए लोगों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। निर्धनों का जीवन स्तर बेहतर बनाने में प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
3: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे,
4: ये हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही।
3: आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
1: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गरीब कल्याण के 12 वर्ष की अवधि पूरे देश में करोड़ों वंचित परिवारों के जीवन में गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता लाने का नया अध्याय साबित हुई है। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जैसी पहल ने कठिन परिस्थितियों में करोड़ों परिवारों को ताकत दी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक देश में 4 करोड़ से अधिक आवास बनाए जा चुके हैं। इनमें नल से

0: पानी, रसोई गैस और शौचालय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य सेवा विस्तार में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने जा रहा है। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा तथा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होना है। एक रिपोर्ट।
1: आयुष्मान भारत योजना देश के सभी नागरिकों को समान और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को हर वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल इस योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। योजना के तहत देशभर में 36,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है और अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इस योजना की शुरुआत के बाद से यह भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़े बदलाव का आधार बनी है। इससे लोगों के इलाज पर होने वाला निजी खर्च कम हुआ है और उन्हें सरकारी तथा निजी अस्पतालों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो रही हैं। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ये योजना लागू नहीं की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज चंडीगढ़ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 3 दिन के इंडिया जोन 2 सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सम्मेलन हरियाणा विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
2: सम्मेलन का उद्घाटन हरियाणा विधानसभा में 3 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। उद्घाटन सत्र से पहले सेरेमोनियल गेट पर लोकसभा अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। उद्घाटन सत्र के बाद टैगोर थिएटर में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में राष्ट्र निर्माण में विधानमंडलों की भूमिका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लोकतांत्रिक संस्थाओं को और मजबूत बनाने जैसे विषयों पर मंथन किया जाएगा। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा और मधु जैन की खंडपीठ ने राष्ट्रीय भारतीय विद्यार्थी संघ की याचिका पर केंद्र और सीबीएसई से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को होगी। जनहित याचिका में सीबीएसई द्वारा अपनाई गई डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए हैं। झारखंड में विशेष सत्र न्यायालय ने रांची में 8 एकड़ से अधिक जमीन से जुड़े धनशोधन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की डिस्चार्ज याचिका खारिज कर दी है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पर्याप्त आधार और दस्तावेज मौजूद हैं और इस स्तर पर आरोपी को बरी नहीं किया जा सकता। प्रवर्तन निदेशालय ने मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क से जुड़े धनशोधन मामले में मिजोरम म्यांमार सीमा, त्रिपुरा बांग्लादेश सीमा और पश्चिम बंगाल में 4 स्थानों पर छापे मारे हैं। ये मामला मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो की अगरतला इकाई द्वारा भारी मात्रा में जब्त नशीले पदार्थ से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के दबंग नेता जहांगीर खान को आज सुबह नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया। वो कथित रूप से नेपाल सीमा से भागने के प्रयास में था। आगे की पूछताछ के लिए उसे कोलकाता लाया जा रहा है। पिछले महीने की 21 तारीख को फलता विधानसभा सीट पर हुए पुनर्मतदान के सिलसिले में ये गिरफ्तारी हुई है। भारत ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठकों की मेजबानी करेगा। ये बैठक मध्य प्रदेश के इंदौर में कल से 13 जून तक होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ये बैठक इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान हो रही है। श्री चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
3: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े आपस में।

0: निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
1: पंचायती राज मंत्रालय कल गुजरात के गांधीनगर में आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम पर हाइब्रिड मोड में संपर्क कार्यशाला आयोजित करेगा। पंचायती राज मंत्रालय में सचिव विवेक भारद्वाज कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात की ग्राम पंचायतें और ब्लॉक पंचायतें कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगी। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
2: आजादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश की 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।
4: आदा, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
5: Good evening, this is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9.
2: अमन यादव के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसदीय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने वीडियो संदेश में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे होने पर आकाशवाणी परिवार को बधाई दी है।
6: बहुत खुशी के साथ पूरे आकाशवाणी परिवार को बधाई देता हूं। 90 साल आपने पूरा किया है। 90 साल पूरा होने पर मेरे शुभकामनाएं हैं। पूरा देश आकाशवाणी के साथ जुड़ा हुआ है। आकाशवाणी के माध्यम से हमारा भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत रहे, मेरा यह शुभकामना।
1: सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL से कथित रूप से जारी उस अधिसूचना का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण ने ग्राहकों की KYC निलंबित कर दी है और सिम कार्ड 24 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय ने इस दावे को फर्जी बताया और कहा कि BSNL ने सिम KYC से संबंधित कोई सूचना जारी नहीं की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर जवाबी हमले किए हैं। इससे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है और संघर्ष विराम बाधित है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इसराइल के प्रमुख सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट।
7: ईरान और इसराइल के बीच हालिया सैन्य गतिविधियों ने अप्रैल से लागू संघर्ष विराम को चुनौती दी है। हाल के मिसाइल और सैन्य हमलों से क्षेत्रीय शांति भंग हुई है। ईरान ने कहा कि उसकी कार्रवाई लेबनान में इसराइली सैन्य अभियानों के जवाब में की गई एक सीमित और संतुलित प्रतिक्रिया थी। वहीं इसराइल का दावा है कि उसकी सैन्य कार्रवाइयों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करना और भविष्य के संभावित हमलों को रोकना है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत की प्रक्रिया में लौटने की अपील की है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ बातचीत की है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चाहत सिंह।
1: भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान दूसरी पारी में चायकाल तक 5 विकेट पर 98 रन बनाकर खेल रहा है। भारत द्वारा फॉलो ऑन कराए जाने के बाद अफगानिस्तान 314 रन से पीछे है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30

0: 9 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास के साथ खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू होगी। इसके साथ ही ये योजना पूरे देश में कार्यान्वित हो जाएगी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने CBSE बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्र और बोर्ड को नोटिस जारी किया। इसराइल और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। दोपहर के 2:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं शिप्रा बोस का गाया राग मिश्र खमाज़।

अभी आप सुन रहे थे शिप्रा बोस का गाया राग मिश्र खमाज। इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए आप सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म बहारों के सपने से। आवाज लता मंगेशकर की है, बोल मजरूह सुल्तानपुरी के, और संगीत आर डी बर्मन का है।

बहारों के सपने। जी हाँ, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। बोल थे मजरू सुल्तानपुरी के और धुन बनाई थी आरडी बर्मन ने। आइए आप सुनते हैं ओपी नैयर की धुन पर कमर जलाल आबादी के बोल। आवाज आशा भोसले की है, फिल्म का नाम है हावड़ा ब्रिज।

ये आवाज़ थी आशा भोसले की। कमर जलालाबादी के बोल थे और संगीत ओपी नैयर का था। फिल्म का नाम था हावड़ा ब्रिज। आकाशवाणी के आगरा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आइए अब सुनते हैं आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी की रचना। संगीत SD बर्मन का है। फिल्म का नाम है चलती का नाम गाड़ी।

इस गीत को हमें लिया था फिल्म चलती का नाम गाड़ी से। आवाजें थी आशा भोसले और किशोर कुमार की, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे और धुन बनाई थी एसडी बर्मन ने। इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न हुआ। मीडियम वेव पर आपने ट्यून किया है अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन आकाशवाणी आगरा। दोपहर के 3 बजे हैं, आइए आप सुनते हैं लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और मुकेश के गाए इस गीत के साथ, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन में पिरोया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है अमर अकबर एंथनी।

ये आवाजें थीं किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और लता मंगेशकर की। बोल आनंद बख्शी के थे और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फिल्म का नाम था अमर अकबर एंथनी। गीत गुंजन कार्यक्रम का अगला गीत है मिस्टर नटवरलाल फिल्म से। आवाजें हैं किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों की। बोल आनंद बख्शी के हैं और गीत को धुन में पिरोया है राजेश रोशन ने।

मिस्टर नटवरलाल, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार, लता मंगेशकर और साथियों के स्वरों में। आनंद बख्शी के बोल थे और धुन राजेश रोशन ने बनाई थी। आइए आप सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में जबरदस्त फिल्म का ये गीत। गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत में पिरोया है आर डी बर्मन ने।

जबरदस्त। इस फिल्म के गीत के बाद लीजिए अब सुनिए धर्मवीर फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफी ने, लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

मोहम्मद रफ़ी के गाए इस गीत को संगीत में बांधा था लक्ष्मीकांत प्यारीलाल ने, बोल आनंद बख्शी के थे और फिल्म का नाम था धर्मवीर। आकाशवाणी के आगरा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन। आइए आप सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में आनंद बख्शी की रचना। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का है, फिल्म का नाम है दोस्ताना।

बोल थे आनंद बख्शी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। इसी गीत के साथ लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन अब यहीं संपन्न हुआ। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 3:30 हुए हैं। हमारे इस सभा के कार्यक्रमों का प्रसारण अब यहीं संपन्न होता है। अपने सांध्यकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ संध्या 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: वाणी है। अब हम आपको राष्ट्रपति भवन लिए चलते हैं, जहां से आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह का सजीव प्रसारण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं SY खान हिंदी में और ज्योति अहलावत अंग्रेजी में। आइए राष्ट्रपति भवन चले।
1: नमस्कार। दिल्ली स्थित भव्य और ऐतिहासिक राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप से मैं शहसियार खान अपनी साथी कमेंटेटर ज्योति अहलावत के साथ आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह 2026 का आयोजन किया गया है। ये गौरवपूर्ण अवसर भारतीय सशस्त्र सेनाओं के उन वीर सैनिकों, अधिकारियों और जवानों को समर्पित है जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा, साहस, पराक्रम और अदम्य वीरता का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है। आज के इस गरिमामय समारोह में भारत की राष्ट्रपति और तीनों सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर माननीय श्रीमति द्रौपदी मुर्मू वीरता और विशिष्ट सेवा पदक प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति भवन का भव्य प्रांगण पूरी शान और गरिमा के साथ सुसज्जित है। सैन्य वेशभूषा में उपस्थित अधिकारी, वीरता पदक प्राप्त करने वाले सैनिक, उनके परिजन और देश के अनेक विशिष्ट अतिथि इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने के लिए यहाँ उपस्थित है। कुछ ही क्षणों में समारोह का औपचारिक शुभारंभ होगा। राष्ट्रगान की स्वर लहरियों के बीच राष्ट्रपति महोदया का आगमन होगा और उसके बाद अलंकरण समारोह की प्रक्रिया प्रारंभ होगी।
2: थैंक यू खान साहब। Namaskar and a very good evening to all our dear listeners tuned in to Akashvani for a live commentary of the prestigious and most honored Defence Ambassadors Ceremony 2026.
1: और अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन इस वक्त गणतंत्र मंडप में हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री अपना स्थान ग्रहण करते हुए
2: एंड द गणतंत्र मंडप Rashtrapati Bhavan packed to its capacity. We've just welcomed our Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. The audience is rising and now taking their seats. And as we were mentioning, that we extend a very warm and joyous welcome to all our dear listeners tuned into national broadcaster Akashvani for the very prestigious Defence Ambassador Ceremony 2026 Phase 1. And a little while ago, the Ganatantra Mandap was buzzing with excitement and effervescence to honor our brave soldiers of our motherland who have sacrificed their all, given their supreme sacrifice. And there are those who have defied death and given a befitting reply to the enemies of the land.
1: Raksha Alankaran Samaroh 2026 ka ayojan Bharat ke Ganatantra Mandap mein kya ja raha hai? उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन का आगमन इस वक्त राष्ट्रपति भवन में हो रहा है। सभी लोगों ने खड़े होकर माननीय उपराष्ट्रपति का स्वागत किया और इस वक्त माननीय उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन अपना स्थान ग्रहण करते हुए माननीय प्रधानमंत्री से नमस्कार करते हुए और अपनी जगह बैठते हुए
2: As we had mentioned, back to its capacity, consisting of the family members, the near and dear ones of the medal awardees, as well as a very poignant and solemn moment for the next of kin of our brave martyrs. It is with a heavy heart that they come here, but yes, it's a moment of pride and honor for them that their beloved has left them with. The Ganatantra Mandap, which is, as I'd mentioned, full and brimming with its capacity, and of course glittering to perfection from the main entrance, a red carpet leading right up to the beautiful ornate chair, the majestic chair where our Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, shall sit and preside over the proceedings of this grand Defence Investiture Ceremony 2026. And right behind the chair is an imposing 5th century statue of Lord Buddha. Statue is a beauty. Poetry in the stone, carved hundreds of years ago, but still holding on to its grandeur. And right above that is a burgundy canopy overlooking the entire packed circular hall.

मीडियम वेव 196.1 मीटर 31,530 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आरंभ होती है हमारी आज की तीसरी सभा। तो सभा के आरंभ में आइए एक नजर डालते हैं हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर।

श्रोताओं, अभी से कुछ देर बाद यानी कि 5:10 पर आप सुनिएगा भक्ति परक फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या, और इसके बाद 5:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम युवाणी। युवाणी कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे वार्ताकार गुंजन सिंह से, पृथ्वी के जीवन तंत्र का हृदय है हमारा महासागर विषय पर वार्ता।

श्रोताओं, शाम 6 बजे कार्यक्रम ग्राम्य लोक में आज सुनिएगा भेंट वार्ता के अंतर्गत धान की तैयारी विषय पर श्री कृष्ण की सौरभ उपाध्याय से बातचीत।

श्रोताओं, जैसे कि रात 7:10 पर कार्यक्रम होता है विविधा, तो आज इसमें सुनिएगा डॉक्टर बीना अग्रवाल से वार्ता। विषय होगा अस्पृश्यता क्यों और कैसे।

ये कार्यक्रम होगा रात्रि 8:30 से रात्रि 8:45 तक। श्रोताओं, ये थी एक झलकी हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुर संध्या।

बेला शिंदे की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे जोधा अकबर फिल्म का ये गीत। इसे लिखा था जावेद अख्तर ने और संगीत था A.R. रहमान का। लता मंगेशकर की आवाज़ में सुनिए मजरूह सुल्तानपुरी और जावेद अख्तर का लिखा गीत। संगीत एक बार फिर से A.R. रहमान का है और फिल्म का नाम है पुकार।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

लगान फिल्म में अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में जावेद अख्तर का लिखा गीत संगीत था या रहमान का। इसी के साथ सुर संध्या कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं युवाओं का दैनिक कार्यक्रम शो वाणी।

हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग युवा साथियों। मैं हूँ आपकी रेडियो साथी स्वस्ति आर्य। स्वागत करती हूँ आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम युववाणी में। साथियों, आज हम आपके लेके आए हैं कुछ इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट्स और आपके मनपसंद गीत। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने कार्यक्रम को। अच्छा दोस्तों, हम सभी को घूमने फिरने का शौक होता है। कभी कोई बस से यात्रा करता है, कोई रेल से, तो कोई एयरप्लेन से। एयरप्लेन से हम कुछ ही घंटों में विदेशों की यात्रा कर सकते हैं। साथियों, बात हो ही रही है विदेशी यात्रा।

की, तो इसी से रिलेटेड आप सभी के लिए एक छोटा सा प्रश्न। प्रश्न है कि पहली बार भारत ने इंटरनेशनल फ्लाइट कब शुरू की थी? तो साथियों सोचिए, गेस कीजिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, और इसका उत्तर जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम युववाणी में। अच्छा साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में होने वाले बड़े बड़े बदलावों की शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत किसी बड़े मंच या आंदोलन से नहीं, बल्कि एक व्यक्ति की अच्छी सोच और उसके छोटे छोटे प्रयासों से होती है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और इतिहास गवाह है कि हर बड़े बदलाव की शुरुआत किसी एक व्यक्ति के छोटे से संकल्प से हुई है। जब हम खुद को बेहतर बनाने का संकल्प लेते हैं तो हमारे आसपास का माहौल भी बदलने लगता है। यही संदेश देता है हमारा आज का प्रेरणादायक विषय, हम बदलेंगे युग बदलेगा। दोस्तों इसका मतलब ये है कि सबसे पहला कदम स्वयं को बदलना है। जब व्यक्ति अपने विचारों, आदतों और व्यवहार में पॉजिटिव चेंज लाता है, तब उसके जीवन में सफलता और संतुलन आता है। ईमानदारी, अनुशासन, परिश्रम और जिम्मेदारी जैसे गुण व्यक्ति को बेहतर नागरिक बनाते हैं। एक अच्छा व्यक्ति अपने परिवार और समाज पर भी पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। जब हम आपसी प्रेम, सम्मान, सहयोग और सहिष्णुता की भावना को बढ़ावा देते हैं, तब समाज में हार्मनी और यूनिटी स्थापित होती है। सामाजिक बुराइयों, भेदभाव और कुरीतियों को दूर करने में भी व्यक्तिगत परिवर्तन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों अब बात करते हैं शिक्षा की, जो व्यक्ति को सही और गलत में अंतर करना सिखाती है। जागरूक नागरिक समाज और राष्ट्र के विकास में सक्रिय योगदान देते हैं, इसलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और निरंतर सीखने की आदत को अपनाना चाहिए। साथियों अगर एनवायरमेंट की बात करें तो आज पर्यावरण संरक्षण एक वैश्विक आवश्यकता बन चुका है। यदि हर व्यक्ति वाटर कंजर्वेशन, ट्री प्लांटेशन, स्वच्छता और नेचुरल रिसोर्सेज का सही यूज करे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित किया जा सकता है। साथियों अब बात करते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी की, तो इनसे हमारा जीवन काफी सरल और सुविधाजनक बन गया है। टेक्निक का पॉजिटिव और जिम्मेदार यूज समाज को प्रगति की ओर ले जाता है। इनोवेशन और नई सोच के माध्यम से अनेक सामाजिक और आर्थिक समस्याओं का समाधान संभव है। युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति मानी जाती है। उनकी ऊर्जा, उत्साह और रचनात्मक सोच समाज को नई दिशा की ओर ले जाती है। यदि दोस्तों युवा सकारात्मक सोच, नैतिक मूल्यों और राष्ट्रहित को अपनाएं, तो वो देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। अच्छा साथियों, परिवर्तन के मार्ग में कई बाधाएं आती हैं, जैसे कि कंजर्वेटिव या ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट, अज्ञानता, स्वार्थ और परिवर्तन का भय। इन चैलेंजेस का सामना शिक्षा, जागरूकता, आत्मविश्वास और सामूहिक प्रयासों के साथ संभव है। निरंतर यानी कंसिस्टेंट प्रयास करते रहें। हम बदलेंगे युग बदलेगा एक ऐसा संदेश है जो आत्म सुधार से समाज और राष्ट्र के विकास का मार्ग उत्तम करता है। इसलिए आइए दोस्तों खुद को बदलने का संकल्प लें, क्योंकि बदलाव ही मैं से होता है और उसका परिणाम हम तक पहुंचता है। जब प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों और ईमानदारी से पालन करता है और उसका पॉजिटिव चेंज को अपनाता है, तब एक बेहतर समाज और उज्जवल भविष्य का निर्माण होता है। तो साथियों अब समय है आपके मनोरंजन का, तो आप सभी को ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: साथियों, आपका युववाणी कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। अच्छा दोस्तों, जल हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। पीने, खेती, उद्योग, बिजली उत्पादन और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जल की आवश्यकता होती है। जल और समुद्री संसाधनों के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर वर्ष 8 जून को यानी आज ही के दिन विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। ये दिवस हमें वाटर रिसोर्सेज के संरक्षण और उनके सही यूज का संदेश देता है। इसी प्रकार विभिन्न देशों के बीच साझा जल संसाधनों के उचित उपयोग के लिए कई समझौते किए जाते हैं। साथियों जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच हुई सिंधु जल संधि एक ऐसा ही महत्वपूर्ण समझौता है। सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी भारत और पाकिस्तान के बीच नदी जल के बंटवारे से संबंधित एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिस पर 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने वर्ल्ड बैंक की आर्बिट्रेशन में हस्ताक्षर किए थे। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सिंधु नदी प्रणाली के जल के उपयोग को लेकर उत्पन्न विवादों का स्थायी समाधान करना था। इस संधि के तहत सिंधु नदी प्रणाली की

0: छह प्रमुख नदियों में से तीन पूर्वी नदियां रावी, ब्यास और सतलुज भारत को अलॉट की गई और तीन पश्चिमी नदियां इंडस, झेलम और चेनाब मेनली पाकिस्तान को अलॉट की गई हैं। ये ट्रीटी दोनों देशों के बीच जल संधि आंकड़ों और सूचनाओं के नियमित आदान प्रदान का भी प्रोविजन करती हैं, जिससे रिवर फ्लो, फ्लड कंट्रोल और वाटर रिसोर्सेज की निगरानी में सहायता मिलती है। साथियों, वर्तमान में जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या और वाटर रिसोर्सेज पर बढ़ते दबाव का कारण यही है कि इसका रेलिवेंस बढ़ता जा रहा है। सिंधु जल संधि की सबसे उल्लेखनीय विशेषता जानते हैं दोस्तों क्या है? ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुए प्रमुख संघर्षों के बावजूद कायम रही। वर्तमान समय में सिंधु जल संधि के सामने नई चुनौतियां उभर रही हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालयन ग्लेशियर्स के पिघलने की दर बदल रही है, रेनफॉल पैटर्न अनिश्चित होता जा रहा है, बाढ़ और सूखे की घटनाएं भी सामने आ रही है और दोनों देशों की जनसंख्या और जल मांग लगातार बढ़ती जा रही है। दोस्तों, 1960 में जिन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर संधि बनाई गई थी वो आज काफी बदल चुकी है। इसलिए अनेक विशेषज्ञ संधि के मॉडर्नाइजेशन, डेटा ट्रांसमिशन में सुधार, ज्वाइंट वाटर मैनेजमेंट और जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रावधानों को मजबूत करने की आवश्यकता बल रही है। साथियों, सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच जल के सही उपयोग और आपसी सहयोग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। ये संधि दिखाती है कि कठिन परिस्थितियों और मतभेदों के बावजूद भी हमें समझदारी रखनी चाहिए। आज जलवायु परिवर्तन और बढ़ती जल आवश्यकता के दौर में इस संधि का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए वाटर रिसोर्सेज का संरक्षण, उनका उचित उपयोग और दोनों देशों के बीच सहयोग भविष्य की भी आवश्यकता है। ये संधि हमें सिखाती है कि जल केवल जीवन का आधार नहीं बल्कि शांति और सहयोग का भी माध्यम है। साथियों, वैसे सच है कि महासागर पृथ्वी की जलवायु को संतुलित रखते हैं, ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और असंख्य जीवों का आश्रय भी है। इसलिए रिवर्स से लेकर ओशंस तक हर वाटर रिसोर्स को कंजर्व करना हम सबकी जिम्मेदारी है। साथियों, आइए आपको सुनवाते हैं ऐसी महत्वपूर्ण विषय पर वार्ता। पृथ्वी के जीवन तंत्र का हृदय है हमारे महासागर। वार्ताकार हैं गुंजन सिंह।
1: आज हम बात करेंगे उस दुनिया की जो हमारी नजरों से ओझल है लेकिन हमारे भविष्य की कुंजी है, अथाह गहरा समुद्र और उसमें छिपा सतत विकास का रास्ता। साथियों, जब हम सतत विकास की बात करते हैं तो अक्सर हमारी दृष्टि जंगलों, सौर ऊर्जा और कृषि पर ही टिक जाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी का 70% हिस्सा घेरने वाला विशाल नीला समुद्र हमारे भविष्य की सबसे बड़ी चाबी समेटे हुए है। समुद्र केवल लहरों और मछलियों का घर नहीं है बल्कि यह वह अनंत भंडार है जो मानवता को बढ़ती जरूरतों और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक सेतु बन सकता है। इसे हम ब्लू इकोनॉमी कहते हैं। समुद्र की गहराइयों में विकास का एक ऐसा मार्ग छिपा है जो न केवल हमारी अर्थव्यवस्था को गति दे सकता है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इस ग्रह को सुरक्षित भी रख सकता है। समुद्र की गहराइयों में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स का भंडार है। इनमें कोबाल्ट, निकेल और कॉपर जैसे खनिज मिलते हैं जो आज की रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरियों के लिए अनिवार्य है। यानी धरती को प्रदूषण से बचाने का ईंधन हमें समुद्र की कोख से मिल सकता है। बढ़ती जनसंख्या के साथ विश्व के सामने खाद्य सुरक्षा एक गंभीर चुनौती है। समुद्र इस चुनौती का समाधान एक्वाकल्चर या समुद्री खेती के रूप में प्रदान करता है। सीवीड की खेती इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। सीवीड न केवल पोषक तत्वों से भरपूर होता है बल्कि ये कार्बन को सोखने में भी माहिर है। अक्सर लोग सोचते हैं कि इंटरनेट सैटेलाइट से चलता है लेकिन सच कुछ और है। दुनिया का 95% से अधिक डाटा समुद्र के तल पर बिछी सबमरीन केबल्स के जरिए सफर करता है। आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था

0: व्यवस्था, बैंकिंग और संचार इन केबल्स पर टिकी है। समुद्र न केवल भोजन देता है बल्कि हमें पूरी दुनिया से डिजिटल रूप से जोड़ता भी है। तटीय समुदायों के लिए ये सतत विकास का मार्ग रोजगार के नए द्वार खोलता है। पारंपरिक मछली पकड़ने के तरीकों को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाकर हम मछुआरों की आय बढ़ा सकते हैं, लेकिन सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ गहरे समुद्र में खनन से आर्थिक समृद्धि और ऊर्जा सुरक्षा का लाभ मिलता है, वहीं इसके कुछ बड़े जोखिम भी हैं। समुद्र की गहराइयों में एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसके बारे में हम अब भी बहुत कम जानते हैं। वहां की जैव विविधता बहुत संवेदनशील है। खनन की वजह से निकलने वाला मलबा और शोर समुद्री जीवों जैसे वेल और अन्य दुर्लभ प्रजातियों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। प्लास्टिक कचरा और तेल का रिसाव समुद्र के स्वास्थ्य को बिगाड़ रहा है। यह मार्ग केवल तभी सतत होगा जब हम तकनीक के साथ साथ समुद्री संरक्षण के कड़े नियमों का पालन करें। आज के इस दौर में जहां सरहदें बारूद से सुलग रही हैं, उसका धुआं समुद्र की गहराइयों तक पहुंच रहा है। युद्ध सिर्फ जमीन नहीं छीनते, वे उन अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को भी तोड़ देते हैं जो हमारे महासागरों की रक्षा के लिए बने थे। युद्ध के कारण समुद्री व्यापारिक मार्ग असुरक्षित हो गए हैं। भू राजनीतिक तनाव के कारण समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबल्स की सुरक्षा पर खतरा बढ़ गया है। अगर ये केबल्स कटती हैं तो पूरी दुनिया का डिजिटल ढांचा ढह सकता है। जब मिसाइलें अशांति पैदा करती हैं तो ब्लू इकोनॉमी का सपना धुंधलाने लगता है। युद्ध की वजह से हम संरक्षण पर कम और कब्जे पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। साथियों, समुद्र हमें सिखलाता है कि गहरा होने का मतलब सिर्फ शांत होना नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलना है। सतत विकास का मार्ग युद्ध से नहीं बल्कि सहयोग से निकलेगा। हमें उस गहराई से सोना नहीं बल्कि सबक निकालना है कि कैसे हम प्रकृति के साथ बिना उसे चोट पहुंचाए आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, अगर समुद्र बीमार हुआ तो जमीन पर सांस लेना नामुमकिन हो जाएगा। मुस्कुराते रहिए और अपनों के साथ साथ इस नीले समुद्र का भी ख्याल रखिए।
1: वेलकम बैक साथियों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता जिसका विषय था पृथ्वी के जीवन तंत्र का हृदय है हमारे महासागर। वार्ताकार थी गुंजन सिंह। साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं पर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: साथियों, भारत के तीव्र विकास और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को नई गति देने के लिए भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने पैमाना पोर्टल की शुरुआत की। पैमाना का मतलब प्रोजेक्ट असेसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स फॉर नेशन बिल्डिंग, एक मॉडर्न डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य 150 करोड़ या उससे भी अधिक लागत वाली केंद्रीय क्षेत्र की बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की निगरानी, एवेल्युएशन या एनालिसिस करना है। ये पोर्टल प्रोजेक्ट की प्रगति की रियल टाइम जानकारी उपलब्ध कराता है जिससे किसी भी प्रकार की देरी, कॉस्ट इंक्रीज या इम्प्लीमेंटेशन बैरियर्स की समय पर पहचान हो जाती है। दोस्तों, पैमाना पोर्टल की सबसे खास बात जानते हैं क्या है? ये केवल प्रोजेक्ट का रिकॉर्ड ही नहीं रखता बल्कि एक स्मार्ट निगरानी प्रणाली का भी कार्य करता है। यदि किसी सड़क,

बिजली या बड़े दूसरे प्रोजेक्ट्स के काम में देरी हो रही है, लागत बढ़ रही है या कोई दूसरी समस्या आ रही है, तो इसकी जानकारी समय पर उपलब्ध हो जाती है। इससे समस्याओं का समाधान जल्दी किया जा सकता है और प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने में मदद मिलती है। इतना ही नहीं दोस्तों, इंटरैक्टिव डैशबोर्ड, एडवांस डेटा एनालिटिक्स, ऑटोमेटिक रिपोर्टिंग और भूमिका आधारित पहुंच जैसी सुविधाओं से युक्त ये पोर्टल प्रशासनिक दक्षता, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को मजबूत बनाता है। पैमाना पोर्टल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है वन डेटा वन एंट्री, जिसके अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा दर्ज किया गया डेटा आपस में साझा किया जाता है, जिससे एरर्स कम होते हैं। ये पोर्टल न केवल प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने में मदद करता है, बल्कि रिसोर्सेज के बेहतर उपयोग, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग और गुड गवर्नेंस को भी बढ़ावा देता है। वास्तव में दोस्तों, पैमाना पोर्टल भारत की डिजिटल गवर्नेंस, डेटा आधारित प्रशासन और विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो राष्ट्र निर्माण की गति को और भी ज्यादा सशक्त कर रहा है। दोस्तों, पैमाना पोर्टल सरकार और जनता के बीच विश्वास को मजबूत बनाने का कार्य करता है। अब आज भारत तेजी से मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट शहरों, बेटर ट्रांसपोर्टेशन और एनर्जी फैसिलिटीज की ओर बढ़ रहा है। ऐसे समय में पैमाना पोर्टल विकास कार्यों की गति और गुणवत्ता दोनों को ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये केवल प्रोजेक्ट्स की निगरानी करने वाला पोर्टल ही नहीं है साथियों, बल्कि समय पर विकास, बेहतर प्रबंधन और मजबूत राष्ट्र निर्माण का एक इफेक्टिव डिजिटल माध्यम है। दोस्तों, किसी भी देश की प्रगति केवल नई योजनाएं बनाने से नहीं, बल्कि उन्हें समय पर सफलतापूर्वक पूरा करने से है। पैमाना पोर्टल इसी सोच को साकार करता है। ये विकास कार्यों की गति को बनाए रखते हुए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को मजबूत बनाता है। कहा जा सकता है कि पैमाना केवल प्रोजेक्ट्स का पैमाना नहीं, बल्कि भारत सरकार के विकास के बढ़ते कदमों का ट्रस्टेड सोर्स है, जो विकसित भारत के नए सपनों को नई उड़ान दे रहा है। तो साथियों, ये थी जानकारी पैमाना पोर्टल की। अब माहौल को थोड़ा म्यूजिकल बनाते हैं और आपको सुनवाते हैं ये इंस्पिरेशनल सॉन्ग।

अच्छा दोस्तों, आपको याद होगा कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न था कि पहली बार भारत ने इंटरनेशनल फ्लाइट कब शुरू की थी। तो साथियों, आपने सोचा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? चलिए हम आपको बताते हैं। पहली बार भारत ने इंटरनेशनल फ्लाइट 8 जून 1948 आज ही के दिन शुरू की थी। पहली उड़ान बॉम्बे से लंदन की ओर चली थी। अच्छा साथियों, अब वैसे तो समय है आप सभी से विदा लेने का, पर विदा लेने से पहले चलते चलते हमारे युवा साथियों के लिए एक छोटी सी जानकारी। जैसा कि हम जानते हैं कि गर्मी का मौसम चल रहा है और इस मौसम में शरीर को ठंडा और तरोताजा रखने के लिए नमकीन सत्तू एक बेहतरीन पेय है। भुने हुए चने से तैयार सत्तू प्रोटीन, फाइबर और कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ये हमें लू और डिहाइड्रेशन के खतरे से बचाता है। तो साथियों, सत्तू का सेवन जरूर करें, अपना और अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी के साथ कार्यक्रम युववाणी समाप्त करने की अपनी रेडियो होस्ट और दोस्त स्वस्थ आर्य को दीजिए आज्ञा। फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवाओं का दैनिक कार्यक्रम युवाणी। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं एक और कार्यक्रम जिसका नाम है ग्राम्य लोक।

किसान भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ग्रामीणलोक कार्यक्रम में। और देखिए ना, कल की तरह आज फिर से आप सबसे रूबरू होने का मौका मिला है आपके साथी आपके दोस्त देवेंद्र को। तो स्वीकार कीजिए हमारा राम राम, हमारा प्रणाम। साथियों, आज हम अपनी चौपाल में बिल्कुल एक अनोखी जानकारी लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आप सभी के चेहरे खिल उठेंगे या यूं कहें कि दिल बाग बाग हो जाएगा। अच्छा, देखिए, हम सब जानते हैं कि हम खेती किसानी के कामकाजों में जब लगते हैं तो दिन रात नहीं देखते, समय और मांग के हिसाब से उन कामों को करते रहते हैं। मतलब कि हम मेहनत से नहीं डरते, पर जानते हैं हर चीज़ का एक समय होता है। हमारे शरीर में जो ताकत है जो है वो दिन रात हम उसके ज़रिए एक कर देते हैं, लेकिन जब हमारा शरीर उम्र की ढलान पर आएगा, शरीर में काम करने लायक ताकत नहीं बचेगी,

0: तब क्या होगा? तब हम अपनी गुजर बसर कैसे करेंगे? यही असली चिंता का विषय होता है, क्योंकि पैसे की जरूरत हमेशा रहती है। तो भैया, इसी पैसे की चिंता को जड़ से मिटाने के लिए हमारी सरकार ने एक बेहद ही शानदार योजना चलाई है, जो इस योजना इस समय सबसे बड़ी लोकप्रिय भी हो रही है। और इस लोकप्रिय योजना का नाम है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। और इस योजना के जरिए हम किसान भाइयों का जो बुढ़ापा है वो सब बड़े आसानी से कट सकता है, या कहें कि ये हमारे बुढ़ापे की सबसे मजबूत लाठी बन सकती है। अब इस योजना का लाभ हमें कैसे लेना है, आइए उसके बारे में आपको बताते हैं। तो इसके लिए हमारी उम्र 18 वर्ष के यानी 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, हमारे पास 2 हेक्टेयर या उससे कम ज़मीन होनी चाहिए, और इसमें अपनी उम्र के हिसाब से हमें हर महीने महज 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक की किस्त जमा करनी पड़ेगी, जब तक हमारी उम्र 60 वर्ष नहीं हो जाती तब तक। और एक और अच्छी बात सुनिए, जितना पैसा हम जमा करेंगे ठीक उतना ही पैसा हमारी सरकार भी हमारे खाते में जमा करती है। और इस प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की पूरी देखरेख भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC कर रहा है, तो 100% सुरक्षित भी है ये योजना। और आइए अब और सुनिए इस योजना के बारे में। तो वो ये है कि जैसे ही हमारी उम्र 60 साल पूरी होगी, वैसे ही हमारी सरकार हर महीने हमारे खाते में पूरे 3,000 रुपये पेंशन के तौर पर भेजना शुरू कर देगी, यानी एक साल में पूरे 36,000 रुपये हमारे हाथों में होंगे। और यही नहीं, यदि किसी मोड़ पर अगर ये जीवन साथ छोड़ दे तो हमारे बाद हमारे जीवन साथी को भी आधी धनराशि यानी 1,500 रुपये हर महीने मिलते रहेंगे, ताकि परिवार का स्वाभिमान बना रहे, उसका भरण पोषण होता रहे। तो फिर भी भैया, अब आपसे यही कहेंगे कि देर किस बात की। अरे भैया, आज ही अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र यानी CSC केंद्र पर जाइए, अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक और ज़मीन के खसरा खतौनी के कागजों को साथ ले जाइए और अपना तुरंत पंजीकरण करवाइए, क्योंकि आज का बोया हुआ ये बीज, छोटा सा समझदारी वाला बीज, हमारे आने वाले कल को पूरी तरह से खुशहाल और आत्मनिर्भर बना देगा। वैसे साथियों, आपको बता दें कि अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ तो उठाइए ही उठाइए, लेकिन इसके साथ साथ अपनी खेती किसानी के तौर तरीकों में भी बदलाव कीजिए। फिर देखना कैसे हम दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि हमारे आपके बीच के ही एक किसान भाई कह रहे हैं, आप खुद सुन लीजिए उन्हीं की जुबानी। किसान साथियों नमस्कार, हमारे बीच है एक ऐसे प्रगतिशील किसान जिन्होंने लीक से हटकर पारंपरिक खेती को छोड़कर सब्जियों की खेती, फलों की खेती करना शुरू किया है, वेजिटेबल खेती करना शुरू किया है। तो आइए उनसे जानते हैं कि पहले की अपेक्षा अब उन्हें कितना लाभ हो रहा है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं।
1: जगदीश सिंह।
0: अच्छा जगदीश जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, आपने पारंपरिक या कहें कि पुराने तौर तरीकों से जैसे घरदे पे चल रहे थे, गेहूं धान या बाजरा खेती करते थे किसान, लेकिन अब आप सब्जियों की खेती करना शुरू किया है, फलों की खेती करना शुरू किया है, तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
1: सही पूछिए, आज सब्जी की खेती तो हमने बहुत बाद में की, पहले मोटी खेती करते थे। तो 2002 की बात है, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र में हमको हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान विभाग ने भेजा, वहाँ मैंने एक हफ्ते तक प्रशिक्षण लिया। उसके बाद धीमे धीमे फिर हमने 1 बीघा शिमला मिर्च ट्रायल के तौर पर लगाई, फिर भी अनारी थे, मान लो 20,000 की हो गई। दूसरे साल मैंने 1.25 बीघा लगाई, इंट्रक्टर यानी लहसुन साथ में लगा दिया,
0: मतलब एक फसल के साथ मिर्च के साथ लहसुन भी लगा दिया।
1: जी,
0: बहुफसली खेती करना शुरू किया
1: जी। अब उसमें 68,000 की मिर्च भी निकली आई, 4 क्विंटल लहसुन 10,000 का बिक गया, तो उसमें लगभग 78,000 करीब हो गए,
0: मतलब 1.25 बीघा से आपने 78,000 रुपए कमा लिए।
1: तीसरे साल हमने 1 एकड़ की लहसुन और मिर्च 2,80,000 की हो गई, फिर धीरे धीरे बढ़ाते अब लगभग 15 एकड़ करी। इस साल भी थी, इस साल कुछ सस्ती हो गई, लेकिन शुरू में कुछ महंगाई मिल गई। तो हम मानते हैं हमारी सारी खेती की लागत करीब 30 लाख रुपए थी।
0: मतलब 15 एकड़ की लागत?
1: नहीं नहीं, खीरा था 13 एकड़।
0: 13 एकड़ खीरा, 15 एकड़ शिमला मिर्च, तो इसकी लागत 30 लाख रुपए आई।
1: 30 लाख रुपए लागत आई। इसमें खर्चा काट कूट के जो है, जितने लड़के नौकरी में इतने कमाए थे, इतने फिर भी बच गए, मददा होते हुए
0: इतना बच गया। मतलब 30 लाख लागत आने के बाद आपको कम से कम,
1: मान के चलो जितने खत्म यानी खर्चा हुआ उससे ज्यादा ही कुछ बच गए,
0: मतलब 40-50 के

0: समथिंग आपको बचत हो गई है, मतलब 15 और 13 यानी कि 28 एकड़ से आपको इतनी बचत। तो 28 एकड़ खेती आपके पास है कि आप वो किराए पे लेके करते हैं? कहते हैं
1: हमारे पास पहले 1 एकड़ थी,
0: 5 बीघा खेती है,
1: 8 एकड़ हमारी खुद की हो गई। इसके अलावा हम लीज पे ले लेते हैं, लेकिन हर साल हम लगभग 100-125 ट्रॉली 2 लाख से ऊपर ही घूरा खरीद के उसमें डाल।
0: अच्छा, गोबर की खाद
1: जी। इसके बाद फिर जैविक में आप जैसे माइको राजा है, इसे आप घर पर बना सकते हैं।
0: अच्छा, माइको राजा क्या है?
1: माइको राजा एक ऐसा तत्व, इस पर हमने सही पूछो पर कविता भी बनाई है।
0: तो कविता सुनाइए पहले तो आप।
1: कि माइको राजा दोनों भैया, और इनको देखो जब कमाल, और शोधन पौध जब करें बीज पे, ये जड़ पे बैठता तत्काल। भूखो प्यासो पौधा देखे ताको बहुत रखे जी ख्याल, बिन पानी के पौधा सूखे ये जड़ से भज जा पाताल। इसमें 2 भाई होते हैं।
0: अच्छा अच्छा।
1: मैंने जल पताल से आपने जड़ पे छोड़ दी तत्काल, और दूजो भैया जड़ से लेके फल पाती पहुँचावे डाल, और नस नस खोल दे पौधे की इनकी अजम निराली चाल।
0: अरे वाह।
1: भूखो पौधा जब ये देखे तब तो चले निराली चाल, जो पत्थर खाद भाई खेतन में और ताको घोल दे तत्काल।
0: मतलब जो DAP हम लोग डालते हैं,
1: DAP अकेली नहीं है, आपकी जिनका हुआ ऐसा फसल सर पर,
0: मतलब सब तरह की खाद
1: सबको घोल देता है, तो इसको घोल दे तत्काल। अब क्या हुआ, अब पौधा मुफ्त में खा रहा
0: जी जी,
1: भोनों खाने लगा। अब तो पौधा खाए मुफ्त में, और खाए खाए के होत बहाल। अब खेती तुम्हारी राजा देखे, तुम तो घूमो जाए ससुराल।
0: अरे वाह।
1: और जाए सनीनो करो दिवारी, होरी को ले जाओ रंग गुलाल, और पूरी कचौरी गुजिया खावो, और साली के करो गलौआ लाल।
0: अरे वाह।
1: प्राकृतिक विश्व खेती कीजिए, कबो नहीं होगा कंगाल।
0: अरे वाह वाह। अरे रुकिए रुकिए, ये माइको राजा बनाया कैसे जाएगा ये बता।
1: बहुत अच्छी बात आपने पूछी, अगर बाजार से लोगे तो 17 से IPM का बनेगा, और महंगा भी पड़ेगा, 4-5 किलो मुश्किल में मिलेगा आपको 500-600 रुपए का। यदि आप चावल ले लें, 2 किलो चावल, उसमें 200 ग्राम गुड़ डाल के जैसे खाने के लिए चावल बना दे भात
0: जी जी,
1: इसी तरह के बना के एक किसी सीपेज घड़े में रिसा हो जिसमें हल्का, और उसमें
0: मिट्टी के घड़े,
1: मिट्टी के घड़े में उसमें अगर कोरा है तो उसे पानी 1 दिन के लिए डाल दीजिए
0: जी जी,
1: इसी में उसको चावल को डाल के ऊपर से उसको ढक्कन लगा के, और
0: पके हुए चावल को उसमें डाल दें मटके में।
1: हाँ, उसमें गुड़ मिला होगा।
0: अच्छा, गुड़ मिला होगा।
1: और फलदार वृक्ष के नीचे गले तक उसे ढक दे, और ऊपर ढक्कन के ऊपर कपड़ा भी बांध दे।
0: फलदार वृक्ष होना चाहिए,
1: फलदार वृक्ष में जो है मीठे फल होते ना, और मीठे फल को बैक्टीरिया खाता है, उसमें ग्लूकोज होता है, तो बैक्टीरिया ज्यादा आएंगे।
0: तो फलदार वृक्ष के नीचे उसे गाड़ना है, मिट्टी में गाड़ना है कि रखना है?
1: मिट्टी में गाड़ के उसे बंद कर दे गरीब तक।
0: अच्छा, गला उसका खुला रखना
1: है। अब उसमें ढक्कन में उस थोड़ा सा या मिट्टी या आटा से उसे बंद करके कपड़ा ढक के, अब जो है 8 दिन से लेके 15-20 दिन के अंदर उसे निकाल ले, और निकाल के अब 200 लीटर के ड्रम में उसको डाल दीजिए।
0: ठीक है।
1: 2 किलो गुड़ डाल दीजिए,
0: उसके बाद दोबारा से 2 किलो
1: दोबारा से
0: जी
1: हिलाते रहिए
0: जी।
1: 1 हफ्ते बाद आपका 5000 IPM का इंडो माइको राजा और दूसरा दोनों माइको राजा बन के तैयार,
0: भाई बन के तैयार हो,
1: दोनों भाई तैयार। और खेत में इतनी लंबी जड़ जाएगी जी, कल्पना भी नहीं करोगे। हमने जब फूल गोभी लगवाया, एक तरफ मैंने 4 जुलाई को फूल गोभी की बुवाई की, उसमें माइको राजा नहीं पड़ा था, उसमें 4 अंगूर की जड़ें रही, 1 7 जुलाई को लगाई, उसमें 1-1 फीट की जड़, 1 ही फीट का पौधा।
0: अरे
1: इतनी जल्दी बढ़ता है माइको राजा का, कमाल ही है, कोई खाद भी नहीं इतनी जल्दी काम करेगी।
0: तो खाद का भी मतलब सदुपयोग पूरी तरह से
1: भाई, जब तक जड़ें ज्यादा जगह में बिक रहेंगी वहाँ से ज्यादा खुराक लाएंगे, इधर वहाँ की घुलनशील अवस्था में पड़ी उसे घुलनशील कर दिया,
0: घुलनशील
1: सूख रहा है पौधा तो नीचे
0: पानी कर दिया
1: है, इसलिए ये बहुत अच्छी चीज आज के जमाने में, बिना माइको राजा खेती ही बेकार है।
0: अच्छा जी, अच्छा इसको डालने का तरीका कैसा है, 1 एकड़ में किस हिसाब से पड़ता है इसका छिड़काव?
1: 1 एकड़ में आप इसे मशीन में लेके छिड़काव करके,
0: मतलब कितनी मात्रा में छिड़काव? 1 बीघा,
1: 1 बीघा में तो आपको मान के चलो करीब 40 लीटर ले लो उसमें से,
0: मतलब 2 टंकी
1: 20 लीटर ही, 2.5।
0: ये सिंचाई के समय करना है हमें इसका छिड़काव?
1: सिंचाई के साथ भी हो सकती है, जुताई के 1-2 घंटे पहले शाम के टाइम जमीन में मिला देना, और इसको पौध शोधन में बहुत अच्छा काम, बीज शोधन में ही
0: बीज,
1: जैसे गेहूं के बीज बो रहे तो इसमें जो है उसमें से थोड़ा निकाल के
0: पानी उसका जो,
1: हाँ बीज शोधन भी कर सकते हैं, पौध शोधन भी कर सकते हैं।
0: अच्छा, इसका केवल सब्जियों में प्रयोग कर सकते हैं कि और भी?
1: ऑलराउंडर है, हर फसल में,
0: हर फसल में।
1: धान में तो ये हालत है 1.5-1.5 फीट तक जड़ें हो जाती हैं, जिस धान में 20-25 कल्ला आए वो मुश्किल है केमिकल से, और इससे 100-100 कल्ला हो जाती है।
0: अच्छा, खाद में भी कुछ हम कमी कर सकते हैं? खाद में
1: थोड़ी बहुत नहीं, बहुत बड़ी कमी हो जाएगी।
0: अच्छा जी,
1: हम मान के चलो 50% माइको राजा खत्म कर दिया खाद।
0: अरे?
1: इसके अलावा अगर और आप आ जाओ घर पर बना लें, जैसे आपका बेल है 30 किलो बेल लीजिए, 10 किलो गुड़ डालिए उसमें।
0: बेल मतलब बेल?
1: बेल हुआ।
0: अच्छा, बेल पत्र वाला?
1: हाँ,
0: बेल ही लेना है, पत्र नहीं लेना, बेल
1: पका हुआ।
0: हाँ,
1: 30 किलो फल बेल के, 10 किलो गुड़, उसमें आप 10-250 एक कुंतल 100 लीटर जल, 90 दिन बाद उसमें से निकालिए, 5 किलो बीघा डाल दीजिए खेत में, फास्फोरस को कम, पोटास को, जिंक, मैग्नीशियम।

0: नहीं नहीं तत्व उसमें इधर आपको थोड़ा सा खट्टा रसायन मिलाओ तो नींबू अलग बना लीजिए। तरीका वही है, 30 किलो नींबू में 10 किलो गुड़ 1 क्विंटल पानी, और ये भी आपको 2 किलो बीघी डाल दीजिए, बहुत है, यानी 10 किलो एकड़। उसे आप 40-50 लीटर तक डाल सकते बेल को, और इतनी जबरदस्त फसल होती है। नंबर एक तो न डीएपी मिला, यूरिया मिला, कोई दिक्कत की बात नहीं। और जैसे एक पीली पट्टी है आज गेहूं होती है, इसे लगा डाल दे, इससे
1: लीपने में हम लोग गोबर लीप,
0: इससे आपको पोटास को कम खत्म हो जाए, खड़िया मिला ले कैल्शियम कम खत्म हो जाए, या चूना ही मिला ले इससे भी बन जाए।
1: तो आप तो अपने खेती में यही प्रयोग करते हैं?
0: हमारे पास 10-12 तो ड्रम रखे।
1: अच्छा जी।
0: हाँ, और आज हम एक जैविक में ही लिया DNC 90।
1: अच्छा, इसको आपने प्रयोग किया, उत्पादन पे कोई फर्क पड़ा है? उत्पादन पे और गुणवत्ता पे क्या असर?
0: देखो, ऐसा गुणवत्ता तो इससे अच्छी होती है, इसमें अगर आप जमीन के अंदर

0: जैसे लगा डाल दे उससे
1: लीपने में हम लोग गोबर लीपते
0: हैं, आपको पोटास को कम खत्म हो जाए, खड़िया मिला ले कैल्शियम कम खत्म हो जाए, या चूना ही मिला ले इससे भी बन जाए।
1: तो आप तो अपने खेती में यही प्रयोग करते हैं?
0: हमारे पास 10-12 ड्रम रखे।
1: अच्छा जी।
0: हाँ, और आज हम एक जैविक में ही लिया DNC 90।
1: अच्छा, इसको आपने प्रयोग किया, उत्पादन पे कोई फर्क पड़ा है? उत्पादन पे और गुणवत्ता पे क्या असर है?
0: देखो, ऐसा गुणवत्ता तो इससे अच्छी होती है, इसमें अगर आप जमीन के अंदर कार्बन अगर आप 1-1.5% बढ़ा लें किसी तरह, तो अंदाज ये है जो फसल आप केमिकल से होती है उससे ठीक डोड़ी फसल होती है,
1: मतलब डेढ़ गुना
0: ज्यादा
1: केमिकल से भी ज्यादा है।
0: हाँ, बहुत ज्यादा है केमिकल में।
1: हमारी लागत भी बढ़ जाती है सर, बहुत बहुत लागत हो जाती है।
0: कीड़ा भी कम लगते हैं।
1: कीट? अच्छा।
0: हाँ, कीड़ा भी बहुत कम लगते हैं, कीड़ा के लिए भी है।
1: हाँ, कीटों
0: अगर ऊपर जमीन में ऊपर से 2 फीट जगह की मिट्टी हटा दीजिए, उसके नीचे 3 फीट निकाल लीजिए, उसमें 25-30 किलो मिट्टी ड्रम में डाल दीजिए, 1-2 किलो गुड़ डाल दीजिए।
1: उसी खेत की मिट्टी निकाल रहे हैं हम?
0: किसी भी खेत की निकाले हो सर ना हो।
1: अच्छा, उपजाऊ खेत की मिट्टी निकाले हम 2 फुट
0: 2 फुट हटाए दो ऊपर से,
1: ऊपर से 2 फुट
0: उसके नीचे की निकाल,
1: 3 फीट की नीचे से ले लें। कितनी मिट्टी लेनी?
0: बहुत 20-25 किलो ले लें।
1: अच्छा, 25
0: और ड्रम में डाल दीजिए और उसे घोल दीजिए और इसमें 2 किलो गुड़ डाल दे, अगले 48 घंटा बाद छिड़क दे, आपके कीड़ा ऑटोमेटिक मर जाए, कोई दवा की जरूरत ही नहीं। जिसे कहते हैं सोयल ट्रीटमेंट। इसके अलावा आप ब्रह्मास्त्र है, नीम अस्त्र है, दसपर्णी अर्क है, इनसे भी बना सकते, कई विधान है।
1: लेकिन आपने
0: और इसके अलावा और भी जैविक में है, जैसे आपको मेटाराजियम है, बोवेरिया बेसियाना, इन्हें डाल दे हर प्रकार के कीट। वैसे दीमक जैसे खेत में लग जाए,
1: दीमक
0: तो क्या होता है, आप दवा डाल रहे तो दीमक क्या करती है, इसकी मादा नीचे 2-3 मीटर नीचे है अंदर,
1: 6 फीट।
0: अब आपने दवा डाली तो दीमक ऊपर मरी गई, अंदर नहीं मरी। बोवेरिया बेसियाना और मेटाराजियम ये ऐसे हैं, ये इनके शरीर की में फंगस वो चिपट जाएगा, जहाँ जहाँ से वो निकलेगी वो इनके शरीर को ही खाती है वो फंगस। अब जो धीरे धीरे भाई माता तक पहुँचे, कोई सबके काम बटे हुए हैं, कोई मिट्टी बाहर निकाल रहे, कोई यहाँ से पानी ले जा रहे, कोई कछु चीटियों की तरह मधुमक्खियों की तरह इनका काम है। अब वे वहाँ अपनी कॉलोनी में जे तो उनकी माता दादा दादी से लेकर नाती तक
1: पूरी वंशावली
0: खत्म। उसे कहते हैं बोवेरिया बेसियाना मेटाराजियम। इसी
1: तरह जैविक होती है?
0: हाँ, जैविक है, जीव जीव हर। इधर आपको ट्राइकोडर्मा सूटोमोनास बैक्टीरियम लेकानी है, बैक्टीरियम लेकानी आप डाल दीजिए तो खेत में आपके माइट है, जैसेड है, थिप्स है, ये सारे के सारे।
1: आपको इतनी बड़ी जानकारी है, आपने कहाँ से इतनी अच्छी अच्छी जानकारी?
0: देखो, अब इतनी जानकारी न पूछो, हम भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र में 1 हफ्ता रहे, उसके बाद फिर हम चले गए बरेली बिलवा फार्म में रहे, बनारस विश्वविद्यालय में रहे, कानपुर विश्वविद्यालय में रहे, ताके बाद हम जबलपुर में रहे, इसके बाद हम चले गए बंगलौर में, वहाँ रहे 5-6 दिन, मैसूर में रहे 5-6 दिन, इंदौर में अभी 2020 में गए 5-7 दिन, वहाँ भी रहे सब जैविक प्रशिक्षण,
1: पूरे देश का भ्रमण।
0: इधर आपके नासिक में गए, जलगांव में, और आपके औरंगाबाद में, और अहमदनगर, पूना में, हिसार में गए, चंडीगढ़ में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र में दोबारा फिर आए, गए करनाल में, गए कई एक विश्वविद्यालय घूम घूम गए, सारी टेक्नोलॉजी लेके
1: पूरा ज्ञान अर्जित
0: फिर बताया सबको।
1: तो आपने मतलब निचोड़ इसका क्या निकला पूरा?
0: देखो, निचोड़ यही है रसायन मुक्त। हम तो ये कहते हैं सरकार इतना कर दे, किसी तरह DAP यूरिया बंद कर, इतने विकल्प है इसके अलावा, कोई जरूरत नहीं केमिकल, कुदरत में सब भंडार।
1: अच्छा, आप आसपास के क्षेत्रवासियों जागरूक
0: और दूर आप क्षेत्र की बात कर रहे हैं, लखनऊ में एक किसान थे बारामंकी साइड में, तो गेहूं की फसल करते थे, हमने भैया कितनी जमीन है, बोले 4 एकड़, हमने 2 एकड़ हमें सौंप दे, 2 एकड़ में 10 लाख रुपया सीधे करे, उन्होंने फिर 4 एकड़ पर साल 22 लाख हो गए, और भी दोबारा फसल हो सकती थी, दोबारा कन्हैया दे के फरवरी में उन्होंने खत्म कर दी, बोले हमारा काम हो गया। हाथरस के पास कई एक गाँव है, वहाँ हमारा चल रहा हूँ कार्यक्रम, इधर आप भोगांव के पास है, इधर चल रहा हूँ, इधर कन्नौज के पास है, इन साल हमारे पास से पौधे ले गए थे, जालौन के किसान थे, करीब 3.25 लाख की पौधे ले गए यहाँ, वो वहाँ भी कर रहे हैं। एक किसान गए थे अभी सुल्तानपुर के, वो भी 10 बीघा पौधे ले गए थे।
1: किस चीज की?
0: शिमला मिर्च।
1: शिमला मिर्च।
0: और इसके अलावा और प्रांतन क्यों है, जैसे खंडवा है।
1: आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आप अंत में हमारे जो किसान भाई हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे?
0: किसान भाई सबसे बड़ी ध्यान दें, केवल अपने हम जागरूक हो जाएं, इतने जागरूक हो जाएं कि कोई हमारे वैज्ञानिक या किसान कोई बात बताए रहे तो उसे गहराई से खुद परखें, जब समझ में आ जाए वास्तव में ये चीज अच्छी है उस पे
1: अमल
0: काम करें और केमिकल छोड़ के जैविक पे।
1: चलिए, आपसे दोबारा फिर मिलेंगे, लेकिन आज आपने इतनी अच्छी हमारे किसान भाइयों को जानकारियां दी, उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो

0: समझे आपकी हर जरूरत दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: साथियों, धान की रुपाई का समय नजदीक आता जा रहा है, तो ऐसे में हमारे कुछ किसान भाइयों के मन में कुछ शंकाएं होंगी, कुछ भ्रम होंगे कि कैसे नर्सरी तैयार करें, बीज को शोधित करें, मतलब कि खेत की तैयारी कैसे की जाए। सीधे सीधे कहें तो धान की तैयारी इस समय हम लोग करने जा रहे हैं, तो उसकी कैसे शुरुआत करें, इन सब बातों को जानने के लिए आज हमारी चौपाल में हम इसको थोड़ा विस्तारपूर्वक जानेंगे सौरभ सिंह से की गई श्री कृष्ण जी की इस बातचीत के माध्यम से।
2: किसान भाइयों, आजकल हम सभी अगली फसल यानी खरीफ की फसल की तैयारी में लग गए होंगे, और ऐसे में धान की नर्सरी लगाना या धान की तैयारी करना और उनमें क्या क्या सावधानी बरतनी है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, और पिछले साल जो आपने धान लगाया होगा उससे बहुत कुछ सीखा भी होगा, इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे साथ प्रगतिशील किसान सौरभ उपाध्याय हैं। सौरभ जी, आपका स्वागत है, आपका नमस्कार।
3: नमस्कार
2: सौरभ जी। हमारे किसान भाई धान की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि उनका बेड एरिया कितना हो, या जो उन्होंने नर्सरी लगाने की तैयारी की है उसमें क्या क्या सावधानी बरतने की जरूरत है, और जैसे नील हरित शैवाल है या इत्यादि जो भी बातें आप बताएं।
3: जी, सबसे पहले मैं कवर करना चाहूंगा, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि किसान सबसे पहले जो खेत की तैयारी है, बीज का खरीदारी है, इन पे बहुत ज्यादा ही ना समझी करता है।
2: जी,
3: सबसे पहले एक उन्नत बीज का चयन करना चाहिए। आप कभी भी सस्ते या ऐसे बीज का चयन ना करें जिसमें आपको शिकायत का मौका मिले आगे चल के, क्योंकि खेती का आधार ही बीज है।
2: जी,
3: तो बीज में बिल्कुल भी कौतुकी नहीं बरतनी चाहिए।
2: उसमें कई फायदे होते हैं, एक तो उसमें बीमारियां कम लगती हैं।
3: जी,
2: और उपज अच्छी आती, दाना अच्छा आता है, और वो कुछ दिन यानी जल्दी पक जाता है।
3: कहते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा पाओगे।
2: जी,
3: तो आप अच्छा बोओगे तो अच्छा पाओगे। तो सबसे पहले किसान से मेरा यही अनुरोध भी रहेगा, आग्रह भी रहेगा कि कुछ भी करें, चाहे आपको आगरा, दिल्ली, जहाँ बेहतर से बेहतरीन आपको बीज मिले आप वहाँ जाइए, वहाँ से आप अच्छा बीज लेके आइए। सबसे पहले बीज में कोई लापरवाही नहीं बरतनी। उसके बाद तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि बहुत सारे किसानों के पास जहाँ वो अपने जो बीज का जो भंडारण है उसको चूहे की पहुँच से दूर रखें, चूहों की पहुँच से दूर रखें। दूसरा, धूप में बिल्कुल भी उसको भंडारण ना करें। इसके बाद जब आपने अपना बीज तैयार कर लिया, फिर उसको 24 घंटे के लिए आप उसको भिगो के रखें, पानी के अंदर डिप करके रखें।
2: जी,
3: और डिप करने के साथ साथ आप एक बाजार से उत्पाद आता है, टेक्निकली उसको थाइपनोड मिथाइल बोला जाता है, और स्ट्रेप्टोमाइसिन के पाउच, इन दोनों का एक अनुपात 15 किलो धान के लिए आप थाइपनोड मिथाइल करीब करीब 30 ग्राम और एक स्ट्रेप्टो पाउच, इसको जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप देख पाइएगा कि आपके खेत में बकानी, सुर्रा, देसी भाषा में उसको आप बर्रू बोलते हैं, बहुत सारे एक ही रोग है, इसके विभिन्न विभिन्न नाम है, आपको ये देखने की शिकायत कम मिलती है,
2: यानी उससे जो बीमारियों से बचत हो जाएगी।
3: हाँ, बीमारियों से, एक बीमारी होती है सुर्रू, जिसमें धान सीधे सीधे चला जाता है, जिसमें पैदावार नहीं आती, और वो आपके जो भी पैदावार आती है वो मुख्य धान को बिक्री के समय खराब
2: करता है। इसकी प्रयोग करने की विधि क्या, वो और बता दें आप।
3: विधि, जैसे आपने 15 किलो धान भिगोना है, भिगोने के लिए आप एक स्ट्रेप्टो का पाउच आएगा, साथ में आप थाइपनोड मिथाइल
2: जी
3: 30 ग्राम 25 से 30 ग्राम आप ले, उसको उस पानी में पहले घोलें, उसके बाद धान का बीज उसमें भिगोएं, करीब भिगोने के बाद उसमें 24 घंटे तक उसको ऐसे कैसे रखा रहने दें, एक भीनी धीमी धीमी सी गंध सी आपको महसूस होने लग जाएगी, तब आप उसको एक कट्टे पे पसार दें, छाया में सुखाना नहीं है आपको, टाट की बोरी लेनी है, टाट की बोरी के ऊपर उसको पसारना है, तब उसके बाद दूसरी टाट की बोरी उसको कवर करना है, अगले 24 घंटे के लिए उसमें नमी आपको संरक्षित रखनी है, मतलब अगर आपको थोड़ा सा भी सूखा हुआ लगता है तुरंत आपको पानी उस पे मार,
2: पानी भी छिड़क दें ऊपर से,
3: जिससे उसमें कुलावा बोलते हैं देसी भाषा में, कुलावा यानी कुल्ला या जर्मिनेशन आपका हो जाएगा। इतने बीच में आपको अपने खेत की तैयारी कर लेनी है, क्योंकि ये 48 घंटे में आपका खेत बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए, जिससे डायरेक्ट आपका खेत में बुवाई हो जाए। आमतौर पर किसान क्या करता है कि आज हमारा बीज भिगा दिया, आज ही हमारे खेत की तैयारी, जबकि ऐसा नहीं है। खेत की तैयारी के लिए जहां आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं उस जगह पर आपको सबसे पहले पलेवा करना है, आपको पानी भरना है, पानी भरने से जो अननेसेसरी पौधे जिनको हम लोग वीड बोलते हैं या खरपतवार बोलते हैं उनको उगा लेना है। उगाने के बाद जब नमी आपकी हल्की होने लग जाए तब आप उसको जुताई करके

0: पाटा लगा कर बना दें। किसान यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा याद रखने वाली चीज़ है कि किसान के बेड का कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं है। किसान अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने विवेक के हिसाब से करता है, जबकि उसको याद रखना चाहिए कि वो 3.5 या 4 फीट से चौड़ाई बेड की अधिक ना करें।
1: जी
0: किसान ज़्यादातर कोई साइज नहीं है, 20x20 का, 10x10 का, 8x20 का, कोई भी साइज नहीं है। तो किसान के लिए सुझाव है कि 4 फीट चौड़ाई और लंबाई 10 फीट अधिकतम,
1: जी
0: इससे ज्यादा नहीं। जिससे क्या होगा कि गर्मी के समय में आपके जो धान है, जब आप बड़ा बेड लेंगे तो पानी की क्षमता उसमें ज्यादा रहेगी रुकने की, छोटा बेड लेंगे छोटे में कम पानी लगेगा। ज्यादातर पिछले साल और गत वर्षों में हमने देखा था कि किसान ज्यादा पानी दे देता है, ज्यादा पानी से जहां पर गड्ढे की शिकायत है वहां पानी ठहरता है, और टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से वो वहीं की वहीं उसका धान को क्षति पहुंचाता है, तो धान हमारा पौधा वहीं की वहीं मर जाता है।
1: जी
0: तो आप 4 फीट चौड़ाई और 10 फीट लंबाई रखेंगे तो ये एक स्टैंडर्ड साइज है धान की नर्सरी को तैयार करने का, तो इस चीज़ का बहुत विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा आप जब तैयार कर रहे हो बेड, तैयार बेड कर लिया, उसके बाद उसमें करीब करीब 4 इंची पानी उसमें भर लें, उसके बाद ही उसमें बीज को छिटकावा विधि से उसमें डालें।
1: जी
0: इससे क्या होगा कि 4 इंची पानी से आपका पानी ज्यादा देर तक बना रहेगा और नमी पूर्व प्रॉपर होने की वजह से एकदम से पौधा बाहर निकल के आएगा। उसके बाद 4 फीट चौड़े का सुझाव इसलिए भी दिया जाता है कि मानव शरीर का हाथ, हमारे जो कार्य क्षमता है वो 2 फीट तक है,
1: जी हाँ
0: तो 2 फीट एक साइड से, 2 फीट एक साइड से, आप दोनों साइड से 2 2 फीट कवर कर सकते हैं, तो आपको वीडिंग यानी आपको खरपतवार निकालने में आसानी रहेगी।
1: जी
0: बजाय एक ऐसे बेड के जिसकी चौड़ाई 8 फीट हो, 10 फीट हो, आपको उसमें फिर दवा की इस्तेमाल करनी चाहिए। सुझाव यही है कि नर्सरी में आप कम से कम रसायनों का इस्तेमाल करें,
1: जी हाँ
0: जिससे आपको एक बेहतर से बेहतरीन पैदावार निकल के आएगी आने वाले समय में। और मान लीजिए आपको कुछ स्प्रे भी करना पड़ रहा है तो एक 4 फीट चौड़े बेड में स्प्रे भी बड़े आराम से उचित मात्रा में हो पाएगा,
1: क्योंकि अगर चौड़ाई ज्यादा होगी तो आपको अंदर घुसना पड़ेगा
0: घुसना पड़ेगा।
1: और जो बहुत सारे जो पौध है वो दब जाएगी, पैर से नुकसान होगा। तो ये बहुत अच्छा सुझाव है कि बेड 4 फुट से ज्यादा चौड़ा न करें, क्योंकि खरपतवार आसानी से निकाले जा सकते हैं और अगर कुछ स्प्रे करना तो स्प्रे भी आप आसानी से कर लेंगे। अच्छा, और किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है किसान भाइयों के लिए?
0: इसके बाद हम लोग जब बात करते हैं, जब हमारी पौध तैयार हो गई, पौध में पानी प्रॉपर रखें, पौध को बिल्कुल भी पानी से ढीला ना छोड़ें। सूखी हुई पौध में जब तुरंत पानी देंगे तो आपको नुकसान होगा। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सुबह दोपहर में पानी ना दें, आप उसको शाम को 6 बजे के आसपास, पाँच
1: जी
0: से 6 बजे के आसपास ही अपने पौध में पानी लगाएं। जिससे क्या होगा कि पानी का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होगा और पौधा हमारा भरपूर तरीके से फल फूलेगा वहां पे। उसके बाद जब आपकी नर्सरी तैयार हो गई, अब आती है बारी आपकी बाहर अपने खेत में ट्रांसप्लांट करने की, नर्सरी से दूसरी जगह
1: जी
0: खेत में
1: जब
0: ट्रांसप्लांट
1: रोपाई
0: करने,
1: करते हैं
0: रोपाई करने की। आमतौर पर देखा गया है किसान हमारे यहाँ पर, जो आगरा रीजन की बात करें, यहाँ पे हमारी स्किल्ड लेबर नहीं पाई जाती है, या अभाव कह लो या जानकारी का अभाव कह लो, तो ऐसे ही किसी भी को बुलाया और मजदूरी पे करवा लिया, लेकिन ये एक सही तरीका नहीं है। बाहर जैसे अगर पौधे से पौधे की दूरी का बहुत ज़्यादा विशेष ख्याल रखा जाए, अगर आप पौधे की पौधे से दूरी 6 से 7 इंची आप दूरी रखेंगे पौधे से पौधे की, और पंक्ति से पंक्ति की करीब करीब 8 से 9 इंची, उससे क्या होगा आपको निकाई करने के लिए जो खरपतवार की निकाई है उसमें बड़ी आसानी मिलेगी। दूसरा, बुआई के तुरंत बाद एक दवाई आती है प्रेटीला क्लोर, जिसका टेक्निकल होता है,
1: जी।
0: आप उसको लगाएंगे तो वो दवा क्या करती है कि वो खड़े पानी में एक परत बनाती है, काई होती है, वो परत बनाती है, जिससे क्या होता है कि नेचुरली हमारी सॉइल कवर हो जाती है। उसके बाद आपका जो खरपतवार है उसका जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। तो आप जैसे आज आपने ट्रांसप्लांट कराया, उसके तुरंत बाद विद इन 48 घंटे, मतलब 48 घंटे के
1: यानी 2 दिन के
0: भीतर
1: भीतर
0: में
1: वो दवा लगा
0: वो
1: दें।
0: दवा लगा लेनी, जिससे वो काई बना देगी। काई
1: जी
0: बनाने से वो मिट्टी को ऐसे कवर कर लेगी जिससे खरपतवार का अंकुरण ही नहीं हो पाता है।
1: जी
0: तो ये एक सुझाव है किसान के
1: अच्छा,
0: लिए।
1: जब रोपाई करेंगे तो खेत में पानी होना जरूरी है, और हो तो कितने इंच पानी सिंचाई कर दी जाए?
0: हाँ, ये देखिए क्या होता है कि जैसे कम क्षेत्रों में, जैसे यहाँ पे पानी की समस्या ज़्यादा रहती है और फिर भी लोग धान करने के विचार रखते हैं, तो ऐसे जगह पे आप पलेवा जरूर लगाएं। आपने खेत तैयार कर लिया, पानी भर लिया, तो हमारे यहाँ पे रूटरावेटर का प्रचलन आज जोर शोर पे है, तो आप रूटरावेटर चलाएंगे, जिससे क्या है कि आपकी नमी बहुत दिनों तक बनी हुई रहती है, तो जहाँ पर पानी की कम शिकायत है, जैसे पानी की कमी है,
1: जी
0: वहाँ पर आप जो है रूटरावेटर से चलवाएं, जिससे आपका एक तो वीडिंग हो जाती है खरपतवार।

0: जरूर खत्म हो जाता है, दूसरा नमी बनी रहती है। और लगभग जब आप रुपाई कर रहे हो, रुपाई के दौरान आपका 4 इंची पानी लगभग लगभग होना ही चाहिए,
1: जी, कि अगर ये पानी नहीं होगा तो फिर बढ़िया अंकुरण नहीं होगा और बढ़िया पौधा नहीं,
0: जमाव नहीं होगा
1: जमाव अच्छा
0: बढ़िया।
1: नहीं होगा।
0: जी
1: अच्छा, और कुछ सावधानियां जब हम धान की नर्सरी लगा रहे हैं या धान की रुपाई करेंगे?
0: आपने रुपाई कर दी, रुपाई करने के बाद आप पानी का विशेष ध्यान रखें, आप पानी का ख्याल विशेष रखें।
1: जी
0: दूसरा, यूरिया आज हमारे क्षेत्र में लोग अंधाधुंध वो बोलते हैं कि जब तक काला रंग नहीं आए धान पे तब तक यूरिया लगाओ, तो ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य किसान का कि अज्ञानतावश ऐसा कार्य कर
1: उन्हें
0: रहा है,
1: सही जानकारी नहीं है।
0: सही जानकारी नहीं है। आप जरूरतमंद होने पर ही आप अपने पौधे में एक, आजकल तो ऑनलाइन जमाना है, नेट पर मिल जाएगा आपको नाइट्रोजन का, जैसे यूरिया हमारा नाइट्रोजन सप्लाई करता है, तो
1: जी
0: नाइट्रोजन का एक चार्ट आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पौधे में अगर डेफिशिएंसी है तो हल्का सा पीलापन निकल के आएगा, ज्यादा काले रंग से ज्यादा पैदा नहीं आ जाएगी। पौधे को जितनी आवश्यकता है उतना ही यूरिया सप्लाई करें। ये एक बहुत बड़ा हमारे किसानों का मिथ है कि अननेसेसरी, अनावश्यक रूप पर कि बस काला रंग आना चाहिए धान पे,
1: ये समझदारी बहुत जरूरी
0: ये
1: है
0: समझदारी
1: कि
0: बहुत
1: जितनी
0: जरूरी है।
1: आवश्यकता है उतनी ही खाद का प्रयोग करें।
0: उसके अलावा बहुत सारे कल्चर हैं, बायो फर्टिलाइजर्स हैं, और बहुत सारे कीट पतंगे हैं, उनके लिए नीम ऑयल का इस्तेमाल करें, ब्यूवेरिया बेसियाना है
1: जी
0: और वर्टिसिलियम लेकाई है, ये बायो कल्चर हैं, इनका इस्तेमाल करें। राइजोबियम है, बायो फर्टिलाइजर्स हैं, एजोटोबैक्टर है जो स्पायरुलम है,
1: जी
0: इनका आप इस्तेमाल करें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद जब हमारा खेत तैयार हो जाए धान की, जब निकाई हो जाती, उसके बाद पराली का प्रबंधन विशेष है, आप उस पर बहुत
1: जी
0: ज्यादा गवर्नमेंट भी प्रकाश डाले क्योंकि वो सीधे हमारे पर्यावरण को प्रदूषित
1: ये तो
0: करता
1: तब की
0: है।
1: बात है जब हम इसकी कटाई करते हैं,
0: हाँ
1: और अभी तो फिलहाल किसान भाइयों को जो हमने बातें बताई कि बेड कितना बड़ा हो और कैसे रोपाई करें और कैसे हम उनकी नर्सरी लगाएं, तो सौरभ जी आपने बड़े विस्तार से बातें बताई, हमारे किसान भाई जरूर इसका फायदा उठाएंगे, अच्छी फसल पैदा करेंगे और अच्छा लाभ कमाएंगे।
2: धान की तैयारी, अभी इस विषय में सौरभ उपाध्याय से बड़ी ही उपयोगी बातचीत कर रहे थे श्री कृष्ण जी। तो उम्मीद है आने वाली धान की तैयारी को लेकर हमारे मन में जो भी शंकाएं या जो भी भ्रम थे वे ज़रूर दूर हो गए होंगे और हम उनकी बात बताई गई बातों पर अमल करेंगे और उनका लाभ उठाएंगे। चलिए साथियों, अब आपको बताते हैं मौसम का हाल। तो दोस्तों, मौसम के मिजाज का कुछ पता नहीं चलता, कब बूंदाबांदी होने लगे, कब तेज़ हवाएं चलने लगे। रही तापमान की बात, तो अधिकतम तापमान रहा 42 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया 32 डिग्री सेल्सियस, और कल भी तापमान यही रहेगा। और अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो अपने साथी देवेंद्र को आज्ञा दीजिए। राम राम।

कार्यक्रम मजदूर मंडल के सभी श्रमिक भाई बहनों को कल्पना सरकार का नमस्कार। और श्रमिक भाई बहनों, कैसे हैं आप सब? आसमान की ओर ताक रहे हैं ना कि कब आसमान में बादल छाए, गरज गरज के झमझम वो बारिश करे, है ना? लेकिन आजकल का जो मौसम है ना, उसे देखकर यही लग रहा है कि हाय ये गर्मी, उफ ये गर्मी। वैसे केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस साल बरसात औसत से कम होगी, अलनीनो के कारण अधिक गर्मी भी होगी। पता है साथियों, हम लोग बरसात का कितना बेसब्री से इंतज़ार करते हैं ना इस गर्मी के बाद, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बरसात कराने में, जलवायु को नियंत्रित करने में महासागरों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ये एक विशाल थर्मोस्टेट या एक एयर कंडीशनर की तरह काम करते हैं। जी हाँ, एयर कंडीशनर की तरह। असल में साथी, एयर कंडीशनर की तरह महासागर गर्मी को सोखते हैं।

ठंडी हवा नमी के जरिए ग्रह को यानी हमारी पृथ्वी में ठंडक फैलाते हैं। थर्मोस्टेट की तरह कैसे काम करते हैं ये भी आप जानना चाहते हैं ना। देखिए, एक थर्मोस्टेट कमरे के तापमान को निश्चित स्तर पर बनाए रखता है, वैसे ही महासागर पृथ्वी को अत्यधिक गर्म या ठंडा होने से बचाते हैं। अरे साथियों, आप क्या समझते हैं, क्या यही भूमिका है महासागर की? नहीं, हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, सांस ले रहे हैं, उसका लगभग 50% उत्पन्न जो होता है ना, ये महासागर ही करता है। जी हाँ, समुद्र शैवाल, सूक्ष्म पौधे समुद्र में जो मौजूद है, वही दुनिया की लगभग 50% ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, और इस ऑक्सीजन के कारण हम जीवित हैं, पृथ्वी के लिए एक फेफड़े की तरह काम करते हैं। और पता है साथियों, दुनिया भर के अरबों लोगों के लिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत भी है। विभिन्न तरह की मछलियाँ, झींगे, केकड़े, खाद्य शैवाल इन्हीं महासागरों में ही तो पाया जाता है। फिर नमक, जिनके बिना भोजन पूर्ण ही नहीं, स्वाद आएगा ही नहीं, महासागर से ही हम उत्पन्न करते हैं। हाँ, बनाने की प्रक्रिया अलग है। और ये जो समुद्री शैवाल होते हैं ना साथियों, समुद्री शैवाल और मछलियों के जो अवशेष होते हैं, उसका उपयोग कृषि में जैविक खाद और पशुहार के लिए भी किया जाता है। फिर ये कई लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत भी है, और 80% वैश्विक व्यापार इन्हीं महासागरों से तो होता है। आप क्या समझते हैं, बड़े बड़े सामानों को क्या हवाई जहाज में लाद कर यहाँ से वहाँ लाया जा सकता है, या रेल? रेल के लिए तो भूमि चाहिए ना। और क्या हर देश की सीमा भूमि से जुड़ी है? नहीं, पृथ्वी की सतह का लगभग 71% जो हिस्सा है ना, महासागर से ढका हुआ है। ऐसे में कार्गो समुद्री जहाज से ही व्यापार होगा, है ना। वर्तमान में जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को रोका गया है, इससे हम लोग कितने परेशान हो रहे हैं। ये समुद्र का महत्वपूर्ण जल मार्ग है साथियों, यहीं से जहाजों का आना जाना होता है, क्योंकि ये मुख्य जल मार्ग है। तो ये जो महासागर है ना साथियों, वैश्विक व्यापार के लिए एक जीवन रेखा की तरह काम करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को जोड़ने, भारी माल की ढुलाई और परिवहन लागत को कम करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। फिर रोजगार का भी जरिया, आप देखिए, जो समुद्री जहाज होते हैं कहाँ रुकेंगे, बंदरगाह में। बंदरगाह को रख रखाव के लिए लोगों की ज़रूरत होगी, जहाज को चलाने के लिए कैप्टन की ज़रूरत होगी, तो एक रोज़गार मुहैया करा रहे हैं ना। और एक और बात साथियों, आपके हाथ में जो मोबाइल है जिसका इस्तेमाल आप करते हैं, बहुत सारी जानकारी प्राप्त करते हैं, रील्स भी देखते हैं, तो डेटा जो है ना उसका इस्तेमाल करते हैं ना, डेटे के माध्यम से तो आप इसका उपयोग कर पाते हैं। कहीं पर भी कुछ हो रहा हो, उसको आपको जानकारी मिल जाती है उस विषय पर। लेकिन आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि 95% से 99% तक का इंटरनेट, जो इंटरनेशनल इंटरनेट डेटा है, सैटेलाइट से नहीं बल्कि समुद्र के नीचे बिछाई गई मोटी मोटी ऑप्टिकल फाइबर की केबल्स के जरिए ट्रांसफर होता है। इन्हें हम सब मैरीन कम्युनिकेशन केबल्स कहते हैं। इतना इम्पोर्टेंट है महासागर हमारे लिए। फिर कैंसर, गठिया जैसे गंभीर बीमारियां हैं ना, उसके इलाज में उपयोग होने वाली कई दवाइयां भी साथियों समुद्री जीव और वनस्पतियों से ही प्राप्त होता है। तेल, प्राकृतिक गैस, महत्वपूर्ण खनिज इन्हीं सागरों से ही तो मिलता है। अब आपको भी लगा है ना कि ये महासागर हमारे लिए, हमारी पृथ्वी के लिए वरदान है, ईश्वर का दिया अनुपम उपहार है। देखिए, जो महासागर है किसी अन्य ग्रह में नहीं है, और जब हम सैटेलाइट से अंतरिक्ष जब नीचे देखते हैं ना, तो नीला दिखाई देता है हमारा ग्रह पृथ्वी, क्योंकि महासागर का जो पानी है ना वो नीला है। सच में साथियों, महासागर हमारे लिए एक जीवन है, ईश्वर का दिया अनुपम उपहार है। लेकिन आज ये महासागर प्रदूषित हो रहा है। ठहरिए ठहरिए, हमें पता है आप सोच रहे होंगे कि हम तो महासागर के आसपास फटके ही नहीं, वहाँ गए ही नहीं, तो हम कैसे प्रदूषित कर सकते हैं इन महासागरों को। अरे साथियों,

इस धरा में जो हम प्रदूषण फैला रहे हैं ना, थैलियाँ पॉलीथिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कारखानों का कचरा, सीवेज का कचरा, कीटनाशक दवाइयाँ, ये सब पानी के माध्यम से बहकर नदियों में जाता है ना, वहाँ समुद्र में, फिर सागर से होते हुए महासागर में पहुँचता है। फिर तेल के रिसाव के कारण भी महासागर प्रदूषित हो रहे हैं, जिसके कारण न केवल समुद्री जीव बल्कि संपूर्ण पृथ्वी के पर्यावरण, मानव जीवन को भी भारी नुकसान पहुँच रहा है। तभी तो ज़रूरत है कि हम सब मिलकर प्रयास करें प्रदूषण को रोकने का, लोगों को जागरूक करें, क्योंकि ये महासागर पृथ्वी का सबसे बड़ा प्राकृतिक इकोसिस्टम है, पृथ्वी का लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। यदि ये बिगड़ा तो इसका असर हम पर ज़रूर दिखाई देगा, इसलिए हमें साफ सुथरा से रखना होगा। वैसे भी जब हम समुद्र के किनारे जाते हैं, सागर के किनारे जाते हैं, साफ सुथरा नीला पानी देखते हैं ना, वहाँ बैठते हैं, आसमान को निहारते हैं, उनकी लहरों को देखते हैं, तो दिल को कितना सुकून मिलता है, दिल गाना भी गाता है।

तो साथियों, हम बात कर रहे थे सागर की, महासागरों की, क्योंकि आज हम विश्व महासागर दिवस जो मना रहे हैं, उद्देश्य यही है कि लोगों को बताना कि महासागरों का क्या महत्व है हमारे जीवन में, हमारी पृथ्वी के लिए इनका संरक्षण करना हमारे हित में ही है। इसे प्रदूषण मुक्त बनाना ही होगा, क्योंकि हमारे हित की बात जो है। पता है साथियों, प्रदूषण के कारण समुद्री जीव जो होते हैं, मछलियाँ जो होती हैं, उनके शरीर में एक परत जम जाती है, और जब इंसान इन्हें खाता है तो उसकी सेहत पर विपरीत असर पड़ता है। खाते क्यों हैं हम इसको? समुद्री जीवों को प्रोटीन के लिए, ना, प्रोटीन का ये बहुत अच्छा सोर्स है ये। लेकिन जब इसका विपरीत असर पड़ेगा तो सेहत पर क्या असर पड़ेगा, आप सोच ही सकते हैं। चलिए, आज जब सेहतनामा में साथी प्रोटीन के महत्व के बारे में आपको बताते हैं, क्यों ज़रूरी है सेहत के लिए। क्योंकि देखिए, ये उत्तकों का मुख्य निर्माण खंड यानी बिल्डिंग ब्लॉक है। ये कोशिकाओं के निर्माण करता है, मरम्मत करता है, विकास करता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है। अब देखते भी होंगे, जब आपको चोट लग जाती है, कुछ लोगों को तुरंत ठीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोटीन उनके शरीर में सही मात्रा में है। वर्कआउट करते भी आप करते वक्त चोटीले हो जाते हैं, तो ऐसे में मरम्मत यही प्रोटीन करता है, मांसपेशियों की मजबूत बनाता है। एथलीटों को प्रोटीन लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये विकास करता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है, जैसे कि कह रहे हैं हम। और क्योंकि ये प्रोटीन बेहद महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑस्टियोपोरोसिस जो, जैसे बीमारियां होती हैं ना, हड्डियों की बीमारियां जो होती हैं, उसे रोकता है, उन्हें ऊर्जा देता है। जब हमें ऊर्जा मिलती है, हम थके थके महसूस नहीं करेंगे, मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा हो जाता है साथियों, और वज़न को भी नियंत्रित करता है। यदि आप सोच रहे हैं कि भाई आपका वज़न बढ़ रहा है, तो प्रोटीन लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब हम प्रोटीन खाते हैं ना, पेट भरा भरा सा रहता है, और खाने की इच्छा कम हो जाएगी। जब खाना ही नहीं खाएंगे तो क्या होगा, स्लिम ट्रिम तो होंगे ही। और यहाँ तक कि जब पौधे आधारित प्रोटीन जो होते हैं ना, उसको लेने से ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहता है। और यदि आपके नाखून टूट रहे हैं, बाल टूट रहे हैं, तो आप सोचिए, आपके शरीर में प्रोटीन की मात्रा कम है, और त्वचा चमकदार नहीं है, बेजान सी लग रही है, तब भी आप ये सोचिए, तो प्रोटीन आपको लेना ही होगा। वैसे देखा जाता है हम भारतीयों में कि हम कार्ब्स को काफ़ी लेते हैं, प्रोटीन नहीं लेते हैं। भाई रोटी ले लिया, सब्जी ले लिया, लेकिन दाल एक छोटी सी कटोरी में, पतली वाली दाल। तो ऐसा मत कीजिए भाई, काम करना है हमारे श्रमिक भाई बहनों को, तो प्रोटीन लीजिए। और कहाँ से मिलेगा ये प्रोटीन? हाँ देखिए, घर में आसानी से मिल जाता है, दाल जैसे बताया, लेकिन पतली दाल नहीं, बड़ी सी कटोरी में दाल लीजिए, सोयाबीन, पनीर, दूध, बादाम, काजू, कद्दू के बीज, जिसे आप फेंक देते हैं, उन्हें फेंकिए नहीं, सुखाइए, उसको छील के रख लीजिए और फिर खाइए। अलसी जो होता है, वो भी काफ़ी अच्छा सोर्स है ये प्रोटीन का। फिर अंडा, मुर्गी, मछली में भी बहुत मात्रा में ये प्रोटीन पाया जाता है। टूना मछली मछली सेलमन फिश में भी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, रोहू में भी। साथियों, पता है साथियों, टूना मछली जो, सेलमन मछली जो होती है, कहाँ मिलती है? समुद्र में, महासागर में। महासागर की तो बात कर रहे थे, चलिए ऐसा करते हैं, आज महासागर पर ही हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं, तो क्यों ना इससे संबंधित प्रश्न पूछ ले। तो बताइए, पृथ्वी में कितने महासागर हैं? सोचिए सोचिए, और सोचते सोचते इस गीत के साथ थोड़ा नाचिए, गाइए, गुनगुनाइए।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: तो हाँ साथियों, आपको याद आ रहा है कि हम किस पर बात कर रहे थे? महासागरों की प्रोटीन पर हमने बात की, और एक प्रश्न भी पूछा था कि कितने महासागर हैं इस हमारी धरा में। तो इसका उत्तर

पांच। साथियों पता है उसमें से जो प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर, एक जगह मिलते भी हैं, और जब मिलते हैं ना उनका पानी एक दूसरे से मिक्स नहीं होता, मिलते नहीं है पानी, नहीं मिलता पानी, दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं। जी हाँ, एक सफेद नीला स्वच्छ पानी दिखाई देता है, वही दूसरा मटमैला सा, और उनके पीछे एक झाग सी दीवार होती है, अद्भुत नजारा होता है। साथियों पता है साथियों इसका कारण क्या है? वैज्ञानिक कहते हैं कि एक का पानी खारा है, दूसरा मीठा पानी है, पर कुछ भी हो कारण, पर देखने में अद्भुत नजारा होता है। साथियों महासागर पर जितनी भी बातें करें ना उतना ही कम है, क्योंकि हमारा देश भी महासागर के किनारे है जी। एक तरफ अरब सागर तो हिंद महासागर, तो हम आज ना घूमने जाएंगे महासागर के किनारे। भारत के किनारे में कौन सा ऐसा द्वीप है? लक्षद्वीप चले? भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में स्थित है, जो बेहद खूबसूरत द्वीप है, द्वीपों का समूह है साथियों। और इसे लक्षद्वीप क्यों कहा जाता है? लक्ष का मतलब होता है 1 लाख, 1 लाख द्वीपों के समूह के कारण इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया है। ये हमारे देश का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, और कोरल रीफ जो होता है ना, इस द्वीप को बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं। सफेद रेत, समुद्र तट, शांत समुद्र तट और साफ पानी सबको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैव विविधता के लिए भी ये द्वीप प्रसिद्ध है। फिर साथियों इसमें जो कोरल रीफ और लेगून है ना, इसको और सुंदर बनाते हैं। लेकिन तुम स्विमिंग पूल का एहसास कराते हैं, फिर इसका क्रिस्टल नीला पानी, मूक चट्टाने, वाटर के जो स्पोर्ट्स होते हैं उसके लिए काफी उपयुक्त तो ये द्वीप है। यहाँ की संस्कृति अद्भुत है, क्योंकि मलयाली इस्लामी परंपराओं का एक अनूठा मिश्रण यही मिलता है। और यहाँ के लोगों का व्यवसाय मुख्य रूप से मछली पकड़ना, विशेषकर टूना मछली, जिसके बारे में कहा था कि इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है 30% तक, और नारियल की खेती भी करते हैं, नारियल से बने उत्पाद भी बनाते हैं। ताड़ के पेड़ भी यहाँ बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। डॉल्फिन, व्हेल, समुद्री कछुए, सैकड़ों प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं। बेहद सुंदर खूबसूरत द्वीप है ये। यहाँ यहाँ जाने के लिए विशेष परमिट लेनी पड़ती है। परमिट साथियों, परमिशन तो आजकल माता पिताओं को भी लेनी पड़ रही है अपने बच्चों से मिलने के लिए। जी हाँ, ट्रेन में सफर कर रहे थे कि एक माता पिता सामने बैठे हुए थे, आंखें में एक निराशा थी लेकिन शांत था चेहरा। तो हमने बातें की, बातों बातों में पता चला कि वो अकेले रहते हैं, और कहने लगे भी इन बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं है, मैं कब से बच्चों को कह रहा हूँ कि हमें ले जाए, अपने साथ रखे, एक तरह से मैं आज्ञा ले रहा हूँ लेकिन वो हमें हमारी सुन ही नहीं रहे हैं। लेकिन अब हम उनके पास जा रहे हैं। तो मैंने कहा, अंकल जी अब तो आप जा रहे हैं तो अच्छी बात है ना, उनसे मिलने जा रहे हैं, खुशी की बात। उन्होंने बुलाया, बोला नहीं, उनको काम आन पड़ा है, उनकी उनके घर में एक बच्ची आई है, मेरी पोती आई है, उनकी देखभाल जो करनी है। मैंने तो मना कर दिया था अपनी पत्नी को, लेकिन पत्नी की ममता मान ही नहीं रही है। उसके सामने मैं झुक गया, जाने को तैयार हो गया। काश आज हम अपने बच्चों के बारे में इतना ना सोचकर कुछ बुढ़ापे के बारे में सोचते, कुछ पैसा जमा कर लेते। कुछ दिन पहले मैं अवतार फिल्म का गाना सुना, मैंने फिल्म को देख रहा था तभी मैंने सुना वो गाना है ना, मरने से पहले जीना ना छोड़ो, दिल को छू गया। अंकल आंटी जी आप कहीं पर भी हैं हो, आपके लिए एक गाना प्रस्तुत है।

तो साथियों, जीने की तमन्ना ना छोड़ें। हालात कैसे भी हों, जीवन है तो जीना है, तो क्यों ना खुश होकर जिए। तो फिर मिलेंगे, लेकिन अभी कल्पना सरकार को कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मजदूर मंडल। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

वाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। लेफ्टिनेंट कमांडर सूरज पराशर, लेफ्टिनेंट कर्नल नीतीश भारती शुक्ला, मेजर आदित्य प्रताप सिंह, इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और रामेश्वर दुर्गा देशमुख को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में

0: मोदी ने कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना है तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा।
1: पिछले 11 साल में देश में 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है, गरीबी को परास्त किया है और गरीबी से बाहर निकल करके 25 करोड़ का एक बहुत बड़ा समूह नियो मिडिल क्लास के रूप में आज देश के अंदर बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। इस नियो मिडिल क्लास की अपनी एस्पिरेशंस हैं, अपने सपने हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देशभर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव को कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खन्नूजा ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा ने कहा है कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर आज केंद्र और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को नोटिस जारी किया। न्यायालय की खंडपीठ ने याचिका पर केंद्र और सीबीएसई से जवाब मांगा है। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 719 अंक गिरकर 73,524 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 244 अंक की गिरावट के साथ 23,123 पर आ गया। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। President Draupadi Murmu today conferred gallantry awards to the personnel of the Armed Forces, Central Armed Police Forces and State and Union Territory Police. The awards were conferred during the Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Lieutenant Commander Suraj Parashar, Lieutenant Colonel Nitish Bharti Shukla, Major Aditya Pratap Singh, Inspector Lakshman Kewat and Rameshar Durga Deshmukh were awarded Shaurya Chakra. Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Defence Minister Rajnath Singh, along with other union ministers and senior officials of armed forces were also present on the occasion. West Bengal has become the 36th state and union territory in the country to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. The scheme provides health cover of up to 5 lakh rupees per family per year for secondary and tertiary care hospitalization to eligible

छुआछूत को जन्म देते हैं। छुआछूत वह सामाजिक व्यवहारिक प्रक्रिया है जिसमें मानव समाज जन्म से निर्धारित जातीय पहचान के आधार पर समाज में भेदभाव करते हैं। भारतवर्ष में सदियों से तथाकथित समाज ने शासन किया और वर्ण व्यवस्था में शूद्रों को सबसे नीचा स्थान देकर उनको अछूत माना। उनके द्वारा प्रयोग में लाए गए पानी को भी छूना प्रतिबंधित किया गया। कुछ कट्टरवादी समुदायों में तो उसकी परछाई पड़ना भी पाप के समान माना गया। वे समाज में सामान्य जीवन शैली से वंचित रखे गए। शहर से बाहर मलिन बस्तियों में अमानवीय हालातों में उनको

में अमानवीय हालातों में उनको रहने के लिए मजबूर किया गया। यह छुआछूत की प्रथा इतनी प्रबल और पुरानी है कि दलित समाज न सिर्फ सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है बल्कि मानसिक रूप से भी वह गुलामी और अपराध बोध की भावना से ग्रसित है। आज 21वीं शताब्दी में विज्ञान और तकनीकी के युग में छुआछूत जैसी प्रथा पूर्णतः अतार्किक और अन्यायपूर्ण है। छुआछूत के निवारण के लिए व्यक्ति, परिवार, समाज, कानून तथा प्रशासनिक व्यवस्था को संघर्षरत रहकर सतत प्रयास करना होगा। इस कुप्रथा के निवारण के लिए सर्वप्रथम सामाजिक चेतना का व्यापक प्रचार व प्रसार अत्यंत आवश्यक है। सामाजिक चेतना के साथ साथ दलित समाज को आत्म चेतना और आत्म ज्ञान के लिए प्रोत्साहित करना नितांत आवश्यक है। समाज में जातिवादी राजनीति ने इन अछूतों को गरीबी और अज्ञानता के अंधेरे में जीने के लिए बाध्य किया है। इस कुप्रथा का निवारण तब तक संभव नहीं है जब तक समाज के अछूत वर्गों में मानवीय अधिकारों व आत्म चेतना के प्रति जागरूकता न हो। आत्म चेतना शिक्षा के बिना संभव नहीं है। शिक्षा से ज्ञान का विकास तो होता ही है, साथ ही साथ शिक्षा हमारे विचारों को नई दिशा देने में सकारात्मक भूमिका निभाती है। धार्मिक अंधविश्वास निरक्षरता का ही परिणाम है। यह आवश्यक है कि हमारे देश के नीति निर्धारक एक सशक्त व व्यापक शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था करें जो समाज में बिखरी हुई छुआछूत जैसी कुप्रथा से मुक्ति दिलाने में सहयोग करे। गत वर्षों में सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम, विशेषकर वह कार्यक्रम जो अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिए तैयार किए गए हैं, वह छुआछूत से उत्पन्न सामाजिक वैमनस्य को समाप्त करने में अत्यंत उपयोगी साबित हुए हैं। वर्तमान युग प्रचार प्रसार माध्यमों का युग है। विभिन्न प्रकार के प्रचार माध्यम सामाजिक चेतना में विचारों को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूरदर्शन, अखबार, लघु चलचित्र तथा विभिन्न प्रकार के विज्ञापन छुआछूत निवारण में सक्रिय सहयोग प्रदान करते हैं। गत वर्षों में देखा गया है कि प्रचार माध्यमों से सामाजिक समरूपता की भावना का विकास हुआ है तथा छुआछूत जैसी भावनाओं से छुटकारा मिला है। यदि अधिक से अधिक प्रचार माध्यमों को इस उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाए तो निश्चित रूप से समाज भेदभावों से मुक्त हो सकेगा। छुआछूत निवारण में अछूतों की भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। जब तक अछूत समाज अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होता तब तक वह समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो सकता। ये अछूतों का दायित्व है कि वे परंपरागत जीवन शैली को छोड़कर नई जीवन शैली को अपनाने की दिशा में प्रयासरत हों। उनको एक स्वस्थ एवं सुदृढ़ जीवन शैली अपनाने की दिशा में प्रयासरत होना चाहिए। ये आवश्यक है वे अपनी कार्य कुशलता बढ़ाकर नए व्यवसायों को अपनाएं। नए व्यवसायों से आर्थिक स्थिति तो सुधरेगी ही, साथ ही अछूत समाज को उच्च वर्ग के लोगों के साथ समान रूप से उठने बैठने का मौका भी मिलेगा। इस प्रकार से व्यापक व उदार सामाजिक समीकरण से छुआछूत तथा अलगाव समाज में कम होगा। छुआछूत का अभिशाप मुख्यतः समाज की भेदभावपूर्ण मानसिकता का प्रतीक है। सामाजिक चेतना के साथ साथ कानूनी प्रावधान व सरकार की उदार नीतियां भी छुआछूत निराकरण की दिशा में उपयोगी साबित हो रही हैं। कानूनी रूप से छुआछूत को अपराध घोषित किया जाना चाहिए तथा दोषित व्यक्तियों के प्रति उचित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। कानूनी सुरक्षा के अतिरिक्त सरकार कुछ ऐसी योजनाएं तैयार कर सकती है जिससे अछूतों को मुख्य धारा में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा सके। गत वर्षों में सरकार द्वारा चलाई गई आरक्षण नीतियां अत्यधिक कारगर साबित हुई हैं। आज अधिक से अधिक अनुसूचित और दलित जाति के बच्चे शिक्षण संस्थाओं में
समान रूप से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा के इस नए आयाम से

0: अछूत व अनुसूचित वर्ग के छात्रों को नई दिशा मिली है। मेरा विश्वास है कि सरकार और समाज के संगठित प्रयासों से छुआछूत के श्राप से मुक्ति पाने में समाज सफल होगा और मानवीय मूल्यों पर आधारित एक स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सके।
1: अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर बीना अग्रवाल की वार्ता, अस्पृश्यता क्यों और कैसे। इसी के साथ कार्यक्रम विविधा अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही क्षणों में, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण रहा पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, विकसित भारत की संकल्पना को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाएगा ये केंद्र। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा सकुशल संपन्न। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे ने चलाई 4 स्पेशल ट्रेनें। और लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूर्ण। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को दिया गया था ऑल इंडिया रेडियो नाम। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों के हित में सरकार की 12 वर्ष की विकास यात्रा को रेखांकित किया है। श्री मोदी ने आज कहा कि इस दौरान देश कई बदलावों का साक्षी बना तथा गरीब कल्याण और वंचित वर्ग इन बदलावों के केंद्र बिंदु में रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन धन खाता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, स्वच्छ भारत अभियान, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी हर पहल का उद्देश्य लोगों के लिए गरिमा और अवसर सुनिश्चित करना रहा है। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण यात्रा व्यक्ति के सशक्तिकरण और विकसित भारत का स्वप्न साकार करने का सामूहिक अभियान बन गया है।
2: गरीब और वंचित के उत्थान का संकल्प, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, गरीब कल्याण, गरीब की सेवा, उसके जीवन में बेहतरी, देश का विकास, देश के संसाधन आखिरी व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव पहुंचे, ये हमारी सरकार की सब

0: सबसे बड़ी प्राथमिकता रही।
1: आज हर जरूरतमंद प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण खाने की चिंता से मुक्त है।
2: देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्षों से प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज हम पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया। इसे लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र को परिवर्तित कर स्थापित किया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ये केंद्र उत्तर प्रदेश के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि मौसम विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में स्थापित होने से प्रदेश को काफी लाभ मिलेगा।
4: मौसम विभाग की जानकारी समय पे हमें मिलने का परिणाम क्या है? हम अन्नदाता किसान को होने वाली क्षति को और उसके कारण अर्थव्यवस्था को पहुंचने वाली क्षति और खाद्यान्न के संकट को काफी हद तक बचाने में सफल हो सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारे लिए और आसान हो जाएगा। यहाँ पे अब रीजनल सेंटर मेट्रोलॉजी का प्रारंभ होगा तो उसका एक बड़ा लाभ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में होगा।
2: इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 12 सालों में मौसम विभाग ने इतने राडार और उपकरणों की स्थापना की है जितने पिछले 65 सालों में स्थापित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले सिर्फ 14 राडार थे, लेकिन अब इनकी संख्या 150 से अधिक हो गई है।
5: जितनी प्रगति गत 12 वर्षों में हुई है मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, इतनी उससे पहले के शायद 65 वर्षों में ना हो पाई। सन 2014 तक देश भर में केवल और केवल 17 वेदर रडार्स थे और कई एक ऐसे प्रदेश थे, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तराखंड, जहां एक भी रडार नहीं था। आज वो 17 रडार बढ़कर के 50 हो गए हैं और मिशन मौसम के तहत 50 और जुड़ने वाले हैं, यानी अगले 2 साल में हम 100 रडार तक पहुंचेंगे।
2: उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा आज सकुशल संपन्न हो गई। ये परीक्षा राज्य के सभी 75 जिलों में आज से 10 जून तक आयोजित की जा रही है। पेश एक रिपोर्ट।
6: यूपी पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 परीक्षा दो पालियों में आज राज्य के 1183 परीक्षा केंद्र पर आयोजित की गई। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संपन्न कराने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहे। केंद्रों पर परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए स्थायी मजिस्ट्रेट, पर्यवेक्षक और पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार उम्मीदवारों को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में यात्रा करते समय किराए में 50% की छूट प्रदान की जा रही है। वहीं पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से 10 जून तक गोरखपुर से लखनऊ के बीच 4 परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 21 जून को आयोजित होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए परीक्षा शहरों की सूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पंजीकृत

0: उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने परीक्षा शहर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
1: एनटीए द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार पुनः परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। एनटीए ने स्पष्ट किया है, परीक्षा शहर सूचना पर्ची प्रवेश पत्र नहीं है। इसे केवल अभ्यर्थियों को यह जानकारी देने के लिए जारी किया गया है कि उनका परीक्षा केंद्र किस शहर में होगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों से परीक्षा और प्रवेश पत्र से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइटों पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की अपील की है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज मिर्जापुर के पहाड़ी ब्लॉक के दुबेपुर बसारी ग्राम पंचायत में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत बने मिनी खेल स्टेडियम का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को भी शहरों जैसी खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि गांवों की प्रतिभाएं निरख कर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकें। लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के भरोसे और जनसेवा के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। ये दिवस देश के सांस्कृतिक, सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ।
2: आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। आज आकाशवाणी के 591 केंद्र कार्यरत हैं, जिनसे 23 भाषाओं और 146 बोलियों में कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। इनकी पहुंच देश की 98% आबादी तक है। आकाशवाणी का विदेश सेवा विभाग भारतवंशियों को एकजुट करते हुए विश्व के 100 से अधिक देशों में भारत की आवाज पहुंचा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श पर आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग रेडियो प्रसारण के सर्वोच्च मानकों का अनुपालन करते हुए 24 घंटे सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचारों और समाचार कार्यक्रमों का प्रसारण करता है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम।
4: आदा, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन।
5: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9.
2: Aman Yadav ke saath Saklain Akhtar, Akashvani Samachar, Delhi.
0: प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में आज तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में मौसम शुष्क रहने, जबकि 10 जून से 14 जून तक प्रदेश के अधिकांश जनपदों में कहीं कहीं बारिश का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अंत्योदय की भावना से प्रेरित गरीबों का कल्याण रहा पिछले 12 वर्षों से सरकार की नीतियों का आधार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लखनऊ में क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, विकसित भारत की संकल्पना को वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ाएगा ये केंद्र। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती 2025 की पहले दिन की लिखित परीक्षा सकुशल संपन्न। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रेलवे ने चलाई 4 स्पेशल ट्रेनें। और लोक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्ष पूरे। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को दिया गया था ऑल इंडिया रेडियो नाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
6: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
7: बेटा,
8: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
7: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
9: तो अब बैंक जाके या वीडियो KYC से KYC अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव, एकदम फ्री।
7: चलो,
6: कहाँ
7: एडमिशन कराने?
9: खाता हुआ एक्टिव,
10: RBI कहता है।
11: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
12: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। शाम के 7:32 हुए और प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता। कार्यक्रम में पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वार्ता, जिसका विषय है दवाओं को लेने का सही तरीका।

0: का वार्ताकार है डॉक्टर ओपी पटेल।
1: नमस्कार, आज हम दवाओं
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपकी रेडियो हम सफर मुकुल तिवारी। श्रोताओ, कभी आपने गौर किया है कि हम अपने मोबाइल की बैटरी 20% होते ही चार्जर ढूंढने लगते हैं, लेकिन जब हमारी खुद की ऊर्जा 20% पर आ जाती है तो हम कहते हैं कोई ना, चलो थोड़ा और काम कर लेते हैं, बाद में आराम कर लेंगे। सुबह उठते ही फोन को चेक करना, दिन भर की भाग दौड़, इतनी सारी जिम्मेदारियां, काम का दबाव, रिश्तों की उलझने, महंगाई की चिंता, भविष्य का फिक्र, और इन सब के बीच हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि इस पूरी जिंदगी की गाड़ी चलाने वाला इंजन आखिर है क्या, हमारा तन और हमारा मन। अब सोचे ना, अगर शरीर स्वस्थ है पर मन अशांत है तो खुशियां अधूरी सी लगती हैं, और अगर मन मजबूत है लेकिन शरीर साथ ना दे तो सपनों की उड़ान रुकने लगती है। तो आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हर कोई कुछ ना कुछ पाने की दौड़ में है। कोई अच्छी नौकरी पाना चाहता है तो कोई बेहतर नंबर चाहता है, कोई शांति तो कोई सपनों का घर, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और जिसे हम सबसे लास्ट में रखते हैं वो है हमारी सेहत। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताओ श्रोताओं, सेहत का मतलब सिर्फ बीमारी का होना नहीं है। असली सेहत है जब सुबह उठकर आपका मन कहे वाह आज का दिन कितना प्यारा है ना, पूरा दिन अच्छा होगा, और मन कहे हाँ जी हम तैयार हैं, और साथ ही साथ ये भी गुनगुनाए

हाँ जी श्रोताओं, मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में आज इसी विषय पर बात करते हैं, उस तन की और उस मन की, उस खूबसूरत साझेदारी की जो हमारी जिंदगी को आसान, खुशहाल और तंदुरुस्त बनाती है। बात करेंगे उन छोटी छोटी आदतों की जिन्हें अपनाकर हम अपने शरीर को भी मजबूत बना सकते हैं और मन को भी सुकून से भर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सफर। श्रोताओ, यहाँ पर एक सवाल, अगर आपको एक बहुत ही महंगी कार दे दी जाए और ये कहा जाए कि इसे पूरी जिंदगी चलाना है, तो क्या आप उसकी देखभाल समय पर कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे भाई, आपके सपनों की कार है। अब जरा ये सोचिए, हमारा शरीर उस कार से भी ज्यादा कीमती है और उसका कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं है, फिर भी इसके प्रति हम इतने लापरवाह होते हैं। देर रात तक जागना, बात बात पर खाना छोड़ देना, घंटों तक बैठे रहना और फिर कहना समय ही नहीं मिलता, पर जैसे कार की देखभाल के लिए हमने समय निकाला, अपने तन मन के लिए हमें समय निकालना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। श्रोता, मौसम पर हमारा वश नहीं चलता, ये तो आप ही मानते हैं, कहीं तेज गर्मी, कहीं उमस वाली गर्मी, तो कहीं बारिश, ऐसे मौसम में शरीर बहुत जल्दी थक जाता है, पानी की कमी हो जाती है, संक्रमण का भी खतरा बढ़ जाता है।

आजकल तो अक्सर महसूस होता है कि कुछ किया भी नहीं और थकान भी हो गई, मन आलस से भर गया, चिड़चिड़ापन बेचैनी भी होने लगती है। ऐसे में जरूरी है मन को स्वस्थ रखने की, इस तरफ ज्यादा ध्यान देने की। पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, फल खाएं, कहना आसान है पर जरूरी भी है कि तेल मसाले से दूर रहें। बाहर में मिलने वाले खाने पीने की चीजों पर कम ध्यान दें। ध्यान से याद आया कि वक्त तो एक गीत सुनने का भी है, तो आइए तन मन को खुश करें और ये प्यारा सा गीत सुने जो कहता है कि मोह मोह से बचें। मोह करना है तो अच्छी चीजों का करें जो आपके तन मन को शांत रखें, खुश रखें।

कलकम बैक श्रोताओं, श्रोताओं अगर बच्चों और टीनएजर्स यानी कि युवाओं के स्वास्थ्य की बात करें तो स्मार्ट तो हो गए हैं आजकल के युवा, लेकिन पहले की तुलना में क्या वो खुश भी हैं? स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, ऑनलाइन क्लासेस और सोशल मीडिया और हर जगह होती हुई तुलना, उसके इतने नंबर आए, उसका एडमिशन यहाँ हो गया, पता है सोशल प्लेटफॉर्म पे उसके कितने फॉलोअर्स हैं, और यही से कंपटीशन का मानसिक दबाव बनना शुरू होता है। श्रोताओं, यहाँ बहुत ज़रूरत है ये समझने की कि जिंदगी कोई प्रतियोगिता नहीं है। हर व्यक्ति की क्षमता अलग होती है, गति अलग होती है, मंजिल भी अलग हो सकती है। इंसान हैं हम, मशीन नहीं जो एक कमांड पर एक जैसा काम करें। प्रतिस्पर्धा के इस दौड़ में पीछे रहना नाकामी नहीं है, बल्कि रास्ता बदलने की तरफ एक नई सोच है। और तनाव से क्या कुछ बदल पाया है, तो टेंशन लेकर या डिप्रेस होकर क्या करना है? मन बीमार होगा, फिर लापरवाही से तन बीमार होगा। श्रोताओं, उम्र किसी का बढ़ने से रुका नहीं है, पर यह धारणा कि बुढ़ापा आना है तो बीमार तो होंगे ही, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसे तो बात करेंगे, लेकिन इस गीत के बाद। श्रोता, इस गीत में भी यही लिखा है कि चलना और भागना कभी मत छोड़ें, अपने सपनों के पीछे भागें, अपनी पॉजिटिव एनर्जी के पीछे भागें।

श्रोताओं, हम में से कई लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, पर वे थके नहीं, ना तन से ना मन से, क्योंकि उन्होंने दिनचर्या को सुधारा, अनुशासित हुए, ये मानकर कि मन स्वस्थ है तो तन भी स्वस्थ रहेगा। प्राणायाम, व्यायाम, योग, टहलना, संयमित और संतुलित खान पान, ये अचूक रामबाण होते हैं स्वस्थ रहने के। स्क्रीन टाइम कम करें, नींद भरपूर लें, सोशल बने, सकारात्मक बने, अपने हॉबीज को पूरा करें, उम्र कोई भी हो, खेलें कूदें, डांस करें, चित्र बनाएं, गुनगुनाएं। श्रोताओ, सीखने और सिखाने की कोई उम्र नहीं होती, जरूरी है तो बस खुद के लिए वक्त निकालने की। कुछ लिखना शुरू करें, शुरुआत अभी से क्यों नहीं करते हैं? कैसे, मैं बताती हूँ। आकाशवाणी आगरा के कार्यक्रम आपको कैसे लगते हैं और उसमें आपको क्या क्या सुधार चाहिए? आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, इसी को लेकर हमें भेजिए। श्रोताओं, खुद के लिए और अपनों के लिए जीना है तो स्वस्थ रहना जरूरी है। स्वस्थ तन और स्वस्थ मन, एक ही तो जिंदगी है। अब चॉइस है आपकी कि आप दुखी होकर जीना चाहते हैं या हंसते हुए, गुनगुनाते हुए। अच्छा, आप लोग तो स्मार्ट हैं, मुझे पता है कि आप क्या चूज करेंगे। तो फिर मैं भी चलती हूँ, वक्त हो गया है। और हाँ, हमेशा खुश रहिए और मटर गस्ती कीजिए जैसे ये जनाब कर रहे हैं।

पिजन वेव 196.1 मीटर 30,530 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम शामी गजल, जिसमें हम आपको हमेशा सुनवाते हैं फिल्मों से लिए गए कुछ गजलें। तो शुरुआत करते हैं इस गजल के साथ।

दो बदन, इस फिल्म में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में रवि का लिखा, शकील बदायूनी का लिखा गीत, संगीत था रवि का। मेरे हुजूर, इस फिल्म में सुनिए एक बार फिर से रफी की आवाज में हसरत जयपुरी की रचना, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

फलक पे जितने सितारे हैं वो भी शर्माए, ओ देने वाले मुझे

मेरे महबूब, इस फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में शकील बदायूनी की। रचना संगीत था नौशाद का। शामे गज़ल कार्यक्रम की आखिरी पेशकश फिल्म बाजार से, आवाज़ लता मंगेशकर की है। मीर तकी मीर की रचना को सुरों में पिरोया है खयाम ने।

श्रोताओं, इसी के साथ शामी गजल कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है, जिसमें आपने सुने कुछ चुनिंदा गजलें। लेकिन फिल्मी गीतों का सफर अब शुरू होगा, जिसमें हम आपको सुनवाएंगे कुछ खूबसूरत से नगमे।

अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म गाइड का वो गीत जिसे लिखा था शैलेंद्र ने और संगीत था एसडी बर्मन का। बहारें फिर भी आएंगी इस फिल्म में सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में। अनजान का लिखा गीत, संगीत है ओपी नैयर का।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई।
1: आरती फिल्में सुनिए मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत, संगीत है रोशन का।

श्रोताओ, इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के अगला आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही क्षणों में होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। भारत ने इसराइल और ईरान के बीच ताजा हमलों के बाद तनाव को तत्काल कम करने को कहा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। एक रिपोर्ट।
1: इस समारोह में राष्ट्रपति ने 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र प्रदान किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान उनके असाधारण साहस के लिए शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में विद्रोहियों के एक बड़े हमले को नाकाम करने में असाधारण बहादुरी दिखाने के लिए मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नायक मीनाक्षी सुंदरम ए को उनके अदम्य साहस के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया था। भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए चुने गए 4 गगन यात्रियों में से एक

0: ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना अब पूरे देश में लागू हो गई है। योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
2: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से पश्चिम बंगाल के लोगों को लाभ होगा, भले ही वे राज्य के बाहर रहते हों।
3: हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया। 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतारना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
1: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के हृतिव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि हृतिव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आज एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हुए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना में जान माल की हानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से काशी तीर्थ यात्रा के लिए जा रही एक निजी बस बिहार में एक लॉरी से टकरा गई। इस दुर्घटना में 3 तीर्थयात्रियों की मृत्यु हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मृतक तीर्थयात्रियों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने गंभीर रूप से घायलों को 2-2 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: एसआई स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े। कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। यूरोपीय संघ के संशोधित नियामक ढांचे के अंतर्गत भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद शहद, अंडे और जल जनित खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए यूरोपीय संघ के बाजार उपलब्ध रहेगा। कीटनाशकों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से बनाए गए नए नियमों के बाद यूरोपीय संघ ने भारत को इन उत्पादों के निर्यात के लिए पात्र अधिकृत देशों की सूची में शामिल कर लिया है। इससे भारतीय निर्यातकों को यूरोपीय बाजार में निर्बाध पहुंच सुनिश्चित होगी और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। भारत ने पश्चिम एशिया में हुए नए हमलों पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से तत्काल तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। मंत्रालय ने क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए चल रही राजनयिक वार्ता को पूरा करने की भी अपील की है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद देश में कच्चे तेल, एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अपर सचिव प्रवीण खनुजा ने बताया कि देशभर में

0: पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा, देश में उर्वरकों का भंडार भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर में जहाज एमटी मैरीवैक्स में आग की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज पर मौजूद सभी 24 भारतीय कर्मचारी सुरक्षित हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए पोर्टल भव्य का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि ये पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा।
1: टू डेवलप द इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम,
2: औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने और पूरे भारत में बड़े पैमाने पर निवेश के माध्यम से बड़े स्तर पर रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हमने भव्य योजना शुरू की है। भव्य योजना के अंतर्गत विभिन्न आकारों के 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। इस बार हम संभवतः स्टार्टअप्स, डीप टेक या तकनीक उन्मुख व्यवसायों, अनुसंधान और विकास तथा नवाचार उन्मुख व्यवसायों के लिए अधिक क्षेत्र निर्धारित करने पर भी विचार कर रहे हैं।
1: R&D and innovation oriented businesses.
0: इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके के पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के प्रति विश्वसनीयता कम हो गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। आज बात पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हुए प्रयासों की।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों की सफाई और पर्यावरण में सुधार के लिए 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत अब तक कुल 524 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें से 355 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने कहा कि इस योजना के कारण गंगा की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है।
5: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए हैं, जिसमें अवशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
4: देश में वनों के संरक्षण और उसे बढ़ाने के लिए 2015 में ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत की गई। वर्तमान में भारत का वन क्षेत्र 8 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक हो गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। वहीं कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत दुनिया में 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की, जो दुनिया के सबसे बड़े जन भागीदारी वाले पर्यावरण अभियानों में से एक बन गया है। इस अभियान के तहत दिसंबर 2024 तक 262 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस अभियान के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाए।
6: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं ताकि पौधा है वो जीवित रहे।
4: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 2022 में शुरू की गई मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा मिला है। भारत ने वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में कार्बन उत्सर्जन को 33 से 35 प्रतिशत तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित समय से 11 वर्ष पहले ही हासिल कर लिया। इसके अलावा 2015 में शुरू की गई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से निपटने के

0: क्षेत्र में भारत को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, वहीं भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर लगातार आगे बढ़ रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुथार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आकाशवाणी के आज गौरवशाली 90 वर्ष पूरे हो गए हैं। वर्ष 1936 में आज ही के दिन इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो नाम दिया गया था। यह दिवस देश के सांस्कृतिक सूचना और प्रसारण इतिहास में विशिष्ट अवसर के रूप में अंकित है, जिससे पीढ़ियों तक राष्ट्र की चेतना से जुड़ने वाली वाणी का अभ्युदय हुआ। इस अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली में स्पेक्ट्रम नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रसार भारती के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि 9 दशकों की निरंतर सेवा एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।
2: आज से 90 साल पहले ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना होने के बाद से हर दिन हर पल आकाशवाणी श्रोताओं की और देश की धड़कन बन के रहा है। टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ती रही, पहले मीडियम वेव, उसके आगे शॉर्ट वेव, फिर FM, अब डिजिटल स्ट्रीमिंग। हर माध्यम से देश के कोने कोने में बसे हुए लोगों को उनकी आवाज में समाचार, सूचनाएं और मनोरंजन आकाशवाणी देती रही।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान, रासायनिक उर्वरकों का अंधाधुंध उपयोग रोक पर टिकाऊ खेती की ओर एक महत्वपूर्ण पहल परिचर्चा प्रसारित करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों और पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। पश्चिम बंगाल के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल होने के साथ ही ये योजना पूरे देश में लागू। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में भीषण अग्निकांड में 8 लोगों की मौत। भारत को इस वर्ष सितंबर के बाद भी यूरोपीय संघ को मत्स्य उत्पाद, शहद और अंडे निर्यात करने के लिए बाजार उपलब्ध रहेगा। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Pakistan by an innings and 300 runs on the third day of the one-off test in New Chandigarh today. The win surpassed India's previous record test victory by an innings and 272 runs. It also displayed India's dominant bowling performance that saw them take 15 Afghanistan wickets on the third day. India ended their campaign at the inaugural World Yogasan Championships with 114 medals, including 102 gold today. Japan came second with 11 medals, including 3 golds, while Argentina took third, led by Nabila Barraza's 2 golds and 3 silvers. Benchmark domestic equity indices ended around 1% lower today amid weak global cues. Sensex shed 719 points to close at 73,524. NSE Nifty slipped 244 points to settle at 23,123. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu presents gallantry awards to armed forces and police personnel at defense investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan. Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana achieves nationwide coverage with West Bengal joining the scheme. A major fire at Vishakhapatnam steel plant in Andhra Pradesh claims 8 lives. India secures continued market access to export aquaculture products, honey and eggs to EU beyond September this year. New Delhi calls for immediate de-escalation of tensions as Israel and Iran exchange fresh strikes. And India records biggest ever victory at Test cricket, defeating Afghanistan by an innings and 300 runs in New Chandigarh. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on Air app. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। सदर जम्हूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दिफाई एजाजात अता किए जाने की तकरीब के दौरान मुसल्ला अफवाज और पुलिस एहलकारों को बहादुरी के अवार्ड्स अता किए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अब पूरे मुल्क में नाफिज हो गई है। मगरबी बंगाल में भी इस स्कीम का निफाज हो गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट में आग लगने के एक बड़े वाकये में 8 अफराद हलाक हो गए हैं। भारत यूरोपीय यूनियन को इस साल सितंबर के बाद तक आबी जराये से हासिल होने वाली मसनूआत शहद और अंडों की बरामद जारी रखेगा। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए हैं। भारत ने कशीदगी को फौरी तौर पर कम करने को कहा है। और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एक इनिंग्स और 300 रन से हराकर तारीख रकम की है। अब खबरें तफसील से। सदर जम्हूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मुसल्ला अफवाज, मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेज और रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के पुलिस एहलकारों को बहादुरी के एजाजात से आज नवाजा। राष्ट्रपति भवन में आज शाम दिफाई अवार्ड्स अता किए जाने की तकरीब में ये एजाजात दिए गए। नायब सदर सी पी राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और मरकजी वजरा और मुसल्ला अफवाज के सीनियर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर जम्हूरिया ने तकरीब के दौरान दिफाई फोर्सेज, मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेज और रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की पुलिस के एहलकारों को 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 29 शौर्य चक्र अता किए। छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर लक्ष्मण केवट और इंस्पेक्टर रामेश्वर प्रसाद देशमुख को रियासत में नक्सलिज्म के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान उनकी गैर मामूली बहादुरी के लिए शौर्य चक्र से नवाजा गया। अरुणाचल प्रदेश में शोरिश पसंदों के एक बड़े हमले को नाकाम बनाने में गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करने पर मेजर आदित्य प्रताप सिंह को शौर्य चक्र दिया गया। लांस नाइक मीनाक्षी सुंदरम ए को कीर्ति चक्र से नवाजा गया। उन्होंने शदीद तौर पर जख्मी होने के बावजूद जम्मू कश्मीर में एक सख्तगीर दहशतगर्द को हलाक किया था। मगरबी बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना नाफिज करने वाली मरकज के जेर इंतजाम इलाकों समेत 36वीं रियासत बन गई है। ये योजना पूरे मुल्क में सभी शहरियों के लिए हिफ्जान सेहत तक मसावी रसाई के हुसूल में अहम संग मील है। आयुष्मान भारत स्कीम अहल मुस्तफदीन को फी कुंभा 5 लाख रुपये तक की सानवी और आला दर्जे की इलाज की सहूलत फराहम करती है। स्कीम को नाफिज करने के लिए कौमी सेहत अथॉरिटी और मगरबी बंगाल की सरकार ने आज नई दिल्ली में एक मफाहमत नामे पर दस्तखत किए। मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा और मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में इस मफाहमत नामे पर दस्तखत किए गए। अपने खिताब में जनाब नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत पूरी दुनिया

0: में सेहत के शोबे की सबसे बड़ी स्कीम है।
1: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
0: जनाब नड्डा ने टीएमसी की पिछली हुकूमत पर यह स्कीम नाफिज न करने पर नुक्ताचीनी की। वहीं जनाब शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि आयुष्मान भारत स्कीम मगरबी बंगाल के आवाम को फायदा पहुंचाएगी, अगरचे वो रियासत के बाहर ही रहते हों।
2: हमारी इस साल आयुष्मान भारत का एग्रीमेंट आज हो गया, 1,43,00,000 फैमिली बेनिफिटेड होगा। जमीन में काम को किस तरीके से उतरना चाहिए, मोदी जी का नेतृत्व में भारत सरकार एक सब काम कर रहा है।
0: मगरबी बंगाल में आयुष्मान भारत स्कीम के निफाज से रियासत के लाखों अहल मुस्तफदीन को फायदा पहुंचेगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट में आज लगी जबरदस्त आग में 8 मजदूरों की मौत हो गई और दीगर 6 जख्मी हो गए। जख्मी मजदूरों को इलाज के लिए करीबी अस्पतालों में दाखिल कराया गया है, जबकि जाए हादसे पर बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और आंध्र प्रदेश के वजीर आला एम चंद्रबाबू नायडू ने हादसे में हुए जानी नुकसान पर गहरे रंज व गम का इजहार किया है। वजीर आजम मोदी ने महलुकीन के लवायकीन को फीकस 2,00,000 रुपए और जख्मियों को 50-50,000 रुपए की फौरी मदद का ऐलान किया है। वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की वजह का पता लगाने के लिए तफसीली जांच का हुक्म जारी किया है। नायब सदर सीपी राधा कृष्णन ने भी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। आकाशवाणी आज अपने कयाम के 90 साल पूरा होने का जश्न मना रहा है। साल 1936 में आज ही के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को ऑल इंडिया रेडियो का नाम दिया गया था। ये तारीखी दिन मुल्क की सकाफत, इत्तेलात और नशरियाती तारीख में एक खसूसी लम्हा था, जिसकी आवाज़ नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ती गई। आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो खिदमात को तेज़ी के साथ वसत दी गई और साल 1956 में उसे आकाशवाणी का नाम दिया गया। नई दिल्ली में आकाशवाणी के रंग भवन में इस मौके पर स्पेक्ट्रम नाम से एक सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में पंजाबी लोक गीतों और राजस्थानी लोक रक्स कलबेलिया पेश किया गया। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए प्रसार भारती के चेयरमैन प्रसून जोशी ने कहा कि आकाशवाणी ने नस्ल दर नस्ल समाज की रीढ़ की हड्डी का काम किया है। उन्होंने मजीद कहा कि आकाशवाणी ने इत्तेलात, सकाफत और तकलीक के जरिए अवाम को जोड़ने में अहम रोल अदा किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क्यादत में गुज़िश्ता 12 साल के दौरान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर भारत में एक नुमाया तब्दीली आई है। इस मुद्दत के दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों, किसानों, खवातीन और नौजवानों की बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए। आकाशवाणी का खबरों का शोबा आम शोबों में गुज़िश्ता 12 साल के दौरान हुकूमत की कोशिशों पर खुसूसी फीचर लेकर आया है। आज माहौलियाती तहफ्फुज के लिए हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम पर तवज्जो मरकूज की जा रही है। पेश है एक रिपोर्ट। गुज़िश्ता 12 साल के दौरान भारत ने ठोस पॉलिसी इकदाम और मुस्तकिल निफाज के जरिए पायदार माहौलियाती तब्दीली का मुशाहदा किया है। मुल्क में जंगलात और दरख्तों की तादाद में इजाफा हुआ है। दलदली ज़मीनों, मैंग्रोव्स और साहली माहौलियाती निज़ाम को बहाल किया गया है। नीज नमामि गंगे प्रोग्राम के जरिए दरियाओं की बहाली का अमल भी आगे बढ़ा है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए सौरभ गुप्ता ने बताया कि इस प्रोग्राम की वजह से दरियाए गंगा की सफाई में नुमाया बेहतरी आई है।
3: नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा नदी को स्वच्छ और इसका पुनरुद्धार करने के समग्र उपाय किए गए, जिसमें अपशिष्ट जल प्रबंधन, नदी तट उपचार, वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी शामिल है।
2: 2015 में शुरू किया गया ग्रीन इंडिया मिशन एक अहम इकदाम है, जो जंगलात और माहौलियाती निजाम की बहाली के लिए वक्फ है। 2024 में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम मुहिम का आगाज किया था, जो दुनिया की सबसे बड़ी अवामी माहौलियाती तहरीक बनकर उभरी। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए हरियाणा के अशोक भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस मुहिम के तहत भिवानी जिले में पौधे लगाने की मुहिम में हिस्सा लिया।
4: हमने जो पौधा लगाया है उसका संरक्षण भी जरूरी है, तो हम जो इस प्रकार की मॉनिटरिंग करते रहते हैं, जो पौधे लगाए हैं उनका संरक्षण भी करते हैं, उनमें खाद पानी है जो समय समय पर देते रहते हैं, ताकि पौधा है।

0: वो जीवित रहे।
1: आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं माजिद अली। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इम्तिहानात की कौमी एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 का फिर से इम्तिहान कराने के लिए इम्तिहान के शहरों की पर्ची जारी की है। ये इम्तिहान इस महीने की 21 तारीख को होना है। हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि तलबा सरकारी वेबसाइट पर अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालने के बाद अलॉट किए गए शहरों के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: एजेंसी के जरिए जारी किए गए एक नोटिस के मुताबिक फिर से होने वाला यह इम्तिहान भारत के 551 शहरों और गैर ममालिक के 14 शहरों में 2 बजे से शाम 5:15 तक पेन और कागज के जरिए लिया जाएगा। एनटीए ने वाजह किया है कि इम्तिहान के शहरों से मुतालिक जारी की गई पर्ची एडमिट कार्ड नहीं है, बल्कि यह सिर्फ उम्मीदवारों को इम्तिहान के मरकज के बारे में जानकारी देने के लिए जारी की गई है। एजेंसी ने मजीद कहा है कि उम्मीदवार इम्तिहान और एडमिट कार्ड जारी करने से मुतालिक ताजा ऐलानात के लिए उसके सरकारी वेबसाइट से जानकारी लेते रहें। मेडिकल कॉलेजों में दाखिलों के लिए नीट यूजी का इम्तिहान इस साल 3 मई को हुआ था, लेकिन इसको पेपर लीक के इल्जाम के तनाजुर में एनटीए ने 12 मई को मनसूख कर दिया था। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
1: भारत ने तरमीमशुदा यूरोपीय यूनियन इंजबाती फ्रेमवर्क के तहत इस साल सितंबर के बाद भी यूरोपीय यूनियन के बाजारों में शहद और अंडों समेत आबी ज़िरात से मुतालिक अशिया की बरामदात जारी रखने में कामयाबी हासिल की है। यूरोपीय यूनियन ने नए जाब्तों के बाद भारत को इन मसनूआत को बरामद करने के अहल ममालिक की अपनी फहरिस्त में शामिल किया है। इन जाब्तों का मकसद एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से मुतालिक खदशात से निमटना है। कॉमर्स और सनअतों की वजारत ने बताया कि यूरोपीय यूनियन को दरामद करने वाले अहल ममालिक की फहरिस्त में भारत की शमूलियत यूरोपीय बाजार में भारतीय बरामदकारों की बिला रुकावट रसाई को यकीनी बनाएगी। ये पेशरफ्त माही परवरी के शोबे के लिए खास तौर पर अहमियत की हामिल है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन को बरामद की जाने वाली भारत की मछली और आबी मसनूआत का हजम फिलवक्त तकरीबन 1.59 अरब डॉलर है। INDIA इंतखाबी इत्तेहाद की आज दोपहर नई दिल्ली में मीटिंग हुई। इस मीटिंग में अपोजिशन पार्टियों के मुख्तलिफ रहनुमाओं ने शिरकत की, जिनमें कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सीनियर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी सरबरा अखिलेश यादव और दीगर शामिल थे। वहीं कुछ अपोजिशन जमातों जैसे आम आदमी पार्टी और डीएमके ने खुद को इस मीटिंग से अलग रखा। बाद में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 अपोजिशन जमातों ने INDIA इत्तेहाद की मीटिंग में शिरकत की। जनाब खड़गे ने मजीद कहा कि INDIA इत्तेहाद की सभी जमातें इस बात पर मुत्तफिक हो गई हैं कि हर 2 महीने बाद इस तरह की मीटिंग होगी और अगली मीटिंग अगस्त के महीने में तेलंगाना के हैदराबाद में होगी।
3: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
1: दूसरी जानिब नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी तर्जमान संबित पात्रा ने कहा कि आवाम पहले ही अपोजिशन इत्तेहाद को गैर मौसर करार दे चुके हैं और इस तरह की मीटिंगों के जरिए अब वो दोबारा अपनी अफादियत साबित करना चाहता है।
4: पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी वंदन अधिनियम के लिए, तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई, ये सब नदारद थे। जब पार्लियामेंट में सत्र के दौरान बैठक बुलाई जाती है ये कोई नहीं आते हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।
1: भारत ने मगरबी एशिया में ताजा हमलों पर गहरे अफसोस का इजहार किया है। वजारत दाखिला ने एक बयान में कहा कि यह ताजा पेशरफ्त पूरी बैन अवी बिरादरी के लिए बहुत ज्यादा तश्वीश की बात है। भारत ने परिकैन से कशीदगी कम करने को कहा है और कहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि आम शहरियों को कोई नुकसान न पहुंचे। वजारत ने सब सिफारती हल के लिए जारी बातचीत मुकम्मल करने की भी अपील की ताकि खत्े में अमनो इस्तेकाम फिर से कायम हो सके। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर मिजाइल हमले किए हैं जिससे मगरबी एशिया में जंगबंदी को नुकसान पहुंचा है। ईरान में भारतीय सिफारतखाने ने भी ताजा हमलों के तनाजुर में भारतीय बाशिंदों को ईरान का सफर न करने की सलाह दी है। भारतीय सिफारतखाने ने यह सलाह भी दी है कि जो भारतीय बाशिंदे ईरान में हैं वो सफर के दस्तियाब वसायल से ईरान से चले जाएं। कॉमर्स और सनअतों के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज मुल्क भर के 100 सनअती पार्कों की तरक्की में तेजी लाने के मकसद से भव्य पोर्टल का

0: आगाज किया। नई दिल्ली में इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि भव्य पोर्टल का मकसद मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के साथ मरबूत सनअती इको निज़ाम, काबिल एतबार यूटिलिटी निज़ाम, डिजिटल हुक्मरानी मैकेनिज़म, कारकुन इमदादी बुनियादी ढांचा और पायदार तरक्की खसूसियात तश्कील देना है। जनाब गोयल ने कहा कि यह पहल सरमायाकारी के लिए तैयार सनअती बुनियादी ढांचे की तश्कील के जरिए भारत के मैन्युफैक्चरिंग इको निज़ाम को मुस्तहकम करने के लिए बड़े पैमाने पर बदलाव लाने वाले कदम की अक्कासी करती है। भारत ने आज उस वक्त टेस्ट क्रिकेट में तारीख रकम की जब उसने न्यू चंडीगढ़ में टेस्ट मैच के तीसरे दिन अफगानिस्तान को एक इनिंग्स और 300 रन से शिकस्त दे दी। ये टेस्ट क्रिकेट में भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। इस जीत ने भारत की एक इनिंग्स और 272 रन की पिछली फतह को भी पीछे छोड़ दिया। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दिफाई एजाजात दिए जाने की एक तकरीब में मुसल्ला अफवाज और पुलिस एहलकारों को बहादुर के अवार्ड अदा किए। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अब पूरे मुल्क में नाफिज हो गई है। मगरबी बंगाल में भी इस स्कीम का निफाज हो गया है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्टील प्लांट में आग लगने के एक बड़े वाकये में 8 अफराद हलाक हो गए हैं। भारत यूरोपीय यूनियन को इस साल सितंबर के बाद तक आबी जराये से हासिल होने वाली मसनूआत शहद और अंडों की बरामद जारी रखेगा। इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए हैं। भारत ने कशीदगी को फौरी तौर पर कम करने को कहा है। और टेस्ट क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान को एक इनिंग्स और 300 रन से हराकर तारीख रकम की है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मुझे महान अभिनेता और फिल्मकार मनोज कुमार की प्रसिद्ध फिल्म उपकार का ये गीत याद आ रहा है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। ये गीत केवल एक फिल्मी गीत नहीं बल्कि हमारे किसानों की मेहनत, उसकी लगन और हमारी उपजाऊ धरती की समृद्धि का जीवंत प्रतीक है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी खेती की असली ताकत हमारी मिट्टी है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते और असंतुलित उपयोग ने मिट्टी के स्वास्थ्य, उसकी उर्वरकता और पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव डाला है। इसी समस्या को समझते हुए सरकार ने अभी खेत बचाओ अभियान शुरू किया है, जिसमें 9,42,000 से अधिक किसान जुड़ चुके हैं। इसकी अहमियत को समझते हुए हमने भी आज पब्लिक स्पीक में इसी विषय को चुना है। खेत बचाओ अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा पोषक तत्वों को बढ़ावा। हमारे साथ चर्चा के लिए हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के जो प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर महेश चंद मीणा और इसी संस्थान के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, हमारी फोन लाइंस भी खुली हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देंगे हमारे विशेषज्ञ। आप कॉल कर सकते हैं 011 जो दिल्ली का कोड है, और उसके अलावा 2331-0481, 2371-7117 या 2371-7106 और 2331-4444। इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। इस पर भी आप हमारे जो अपने प्रश्न हैं वो भेज सकते हैं। तो कार्यक्रम का आगाज करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर दाबास, आपसे ही जानना चाहूंगी कि ये खेत बचाओ अभियान जो शुरू किया गया है, इसकी अवधारणा क्या है और आज के समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है?
1: प्रियंका जी, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना काल में भी केवल कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र था कि हमने प्रगति की थी, उसमें उस समय भी हमें काफी ग्रोथ मिली थी और हमारा देश उसमें काफी आगे था, केवल किसानों की मेहनत की वजह से और किसी अनाज की, धन के, उसकी सब्जी की, फल की या किसी किस्म के दूध और वगैरह की हमें कमी महसूस नहीं हुई और हमारा काल बहुत अच्छा निकला और कृषि ने हमेशा इस देश का साथ दिया है
0: जी।
1: तो अगर कृषि को हमें आगे जारी रखना है, चित्र रखना है, तो किसानों को नई से नई तकनीक समय पर पहुंचनी चाहिए, किसानों को उत्तम गुणवत्ता के इनपुट मिलने चाहिए और सबसे बड़ी बात जो है, किसानों को सही ज्ञान सही समय पर मिलना चाहिए।

0: के कृषि वैज्ञानिक दे सकते हैं। इसी के सिलसिले में भारत सरकार ने वैसे तो सभी जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र खोले हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम हर सीजन में एक प्रोग्राम चलाने चाहते हैं जिससे किसानों को नई नई तकनीक के बारे में पूरी जानकारी जाए और वैज्ञानिक किसानों को हर सही तरह के खेत पे उसको ट्रेनिंग दे और सहयोग करे, और जैसी सिचुएशन हो उसमें कैसे हमें टैकल करना है। जैसे मान लें कहीं बारिश ज्यादा होने की संभावना रहती है तो हमें कौन सी फसल लगानी है, कौन सी किस्म लगानी है, पानी का कैसे उपयोग करना है या पानी की निकासी कौन सी होनी चाहिए और हमें किस किस्म का प्रयोग करना है, वो सारी की सारी जानकारी हमारे कृषि वैज्ञानिक किसानों को उस टाइम पे उपलब्ध करवाते हैं। इसी तरह से अगर वर्षा की कमी हो जाती है तो हम कौन सी फसल लगाएं, कौन सी किस्म लगाएं जो पानी की कमी बर्दाश्त करते हुए अच्छी पैदावार देगी, और सबसे बड़ी बात जो है हमारी सॉयल हेल्थ, मिट्टी का स्वास्थ्य कैसे बना रहे, हमें इनपुट्स का कैसे यूज करना है, कौन कौन से इनपुट्स का यूज करना है। अक्सर किसान भाई किसी एक खास किस्म के खाद का ज्यादा प्रयोग करते हैं जो असंतुलित खाद की वजह से मिट्टी का उर्वरा शक्ति घटती जा रही है, तो हमें किसानों को समझाना है कि मिट्टी की जांच के आधार पर ही हम इनके पोषक तत्वों का सही से उपयोग करें और संतुलित मात्रा में करें, और खाली हमें रासायनिक खादों पर डिपेंड ना करके हमें इसको समेकित जो पोषक तत्व प्रबंधन करना चाहिए, यानी कि हमें सूक्ष्म जो हमारे नैनो फर्टिलाइजर के साथ साथ में दूसरी बताना चाहूंगा कि जो हमारे देसी खाद हैं, रासायनिक खाद हैं, इसके साथ में जो जीवाणु खाद हैं, इन सबको साथ में लेना चाहिए और किसानों को अपने जो नेचुरल रिसोर्स है उनको भी रिसाइकिल करना चाहिए, और हमें फसल चक्र इस प्रकार से अपनाना चाहिए कि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य भी बना रहे, किसान को अच्छा उत्पादन मिले, उसकी लागत भी कम हो और हमारे देश की जो आवश्यकता वो भी पूरी
1: हो। जी आगे भी इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे श्रोता जुड़ गए हैं दिल्ली के मंगोलपुरी से ब्रह्मदत्त जी। हेलो।
2: हेलो,
1: नमस्कार।
2: नमस्ते मैडम
1: जी,
2: सब्जियों के लिए प्रणाम
1: जी।
3: नमस्कार। नमस्कार जी।
2: सर जी, मेरा कुछ जिज्ञासाएं, उत्सुकताएं हैं, उत्कंठाएं हैं। मैं मंगोलपुरी दिल्ली ब्रह्मदत्त बोल रहा हूँ। ये जो हम बात करते हैं फसल चक्रों की, क्रॉप रोटेशन की, उनमें उर्वरक प्रबंधन किस प्रकार सहायक है? यदि हम धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, दलहन, तिलहन आदि जो फसलें होती हैं हमारी रबी, खरीफ और जायद कालीन, इनमें हम फसल चक्रों में उर्वरक प्रबंधनों को किस प्रकार से कर सकते हैं?
0: ब्रह्मज्योति, जो हमारे फसल चक्कर है उसमें हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि पहले एक फसल अगर ज्यादा खाद लेने वाली है तो दूसरी फसल ऐसी हो जो कम खाद लेती हो। कुछ फसलों की जड़ें गहराई से खाद लेती हैं, कुछ ऊपर से खाद लेती हैं, और साथ साथ में जैसे जितनी भी हमारी दलहनी फसलें हैं वो न केवल अपने पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं बल्कि जमीन में अगली फसल के लिए भी कुछ पोषक तत्व छोड़ जाती हैं। तो ये हमारी पहले से अवधारणा रही है कि जैसे पहले हम कोई धान्य फसल के साथ साथ में दूसरी अगर फसल लेते हैं तो एक दलहन फसल लेते हैं तो उसे दोनों फायदे हैं कि एक तो हमारे देश में दालों का काफी मात्रा में आयात होता है तो उसके आयात का सब्स्टिट्यूशन होता है तो विदेशी मुद्रा बचती है, दूसरी बात यह है कि हमारे खेत की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है, और तीसरी बात है जितनी भी दलहनी और तिलहनी फसलें हैं इनमें कम पानी की आवश्यकता होती है तो कम पानी में भी अच्छा हम पैदावार कर सकते हैं, और आजकल मोटे अनाजों की भी काफी जिज्ञासा बढ़ रही है और इनसे अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं किसानों को, और हम काफी मात्रा में एक्सपोर्ट करने की इसमें काफी संभावना है, और ये जितने भी मोटे अनाज हैं ये भी कम संसाधन में यानी कम उपजाऊ जमीन में भी अच्छी पैदावार दे सकते हैं और कम खर्चे पे भी पैदावार दे सकते हैं। तो हमें ये सब चीजों का ध्यान रखना है, जैसे पानी अगर कहीं ज्यादा तो वहां केले की खेती कर सकते हैं, गन्ने की खेती कर सकते हैं, और धान की खेती में भी हमारे पास कई किस्म की खेती है, यानी कि हम पानी के साथ भी कर सकते हैं, ट्रांसप्लांटिंग भी करते हैं कर सकते हैं, डायरेक्ट सीडिंग भी कर सकते हैं, और आजकल कुछ ऐसी किस्में भी आ गई हैं जिसमें कि खरपतवार उसमें अगर एक पर्टिकुलर दवाई का प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें किसी प्रकार के खरपतवार प्रबंधन बहुत आसान हो जाता है जिससे हमारी उत्पादन लागत भी बढ़ती है और साथ साथ में किसान का फायदा भी होता है। तो हमें इन सब चीजों को देखना है, जो भी हम फसल चक्र अपनाते हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखते हैं कि हमारी मिट्टी पे कोई बुरा प्रभाव ना पड़े और किसान को कम खर्चे में ज्यादा आमदनी मिल सके।
1: जी, आप मिट्टी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मीणा, तो जैसे आप बात कर रहे हैं जो सॉइल हेल्थ की बात करते हैं तो मिट्टी के पोषक तत्वों की बात करें तो इसका वास्तविक अभिप्राय क्या है और खेती की उत्पादकता को ये किस तरह प्रभावित करता है?
4: बिल्कुल मैडम, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे कि हमारी खेती हम लगातार करते आ रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है, ज्यादातर किसान भाई एक या दो या ज्यादातर बहुत अच्छे किसान हैं तो तीन उर्वरक का प्रयोग कर रहा है, लेकिन क्या है ना, पौधों को कुल मिला के 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आप मिट्टी में डालिए या नहीं डालिए लेकिन वो मिट्टी से लेगा, लेकिन मिट्टी का भी एक अपना एक कैपेसिटी है, वो जब तक देगा जब तक उसके पास रिजर्व में कितना है, और वो धीरे धीरे खत्म होता चला गया। अभी क्या है ना, हमारी ज्यादातर मिट्टियों में जहाँ पे किसान भाई जैसे ऑर्गेनिक

0: योर या ऑर्गेनिक बेस्ड कुछ भी उपयोग नहीं कर रहे, तो वहां पे क्या है ना, एट ए टाइम आप देखेंगे 5 से 6 पोषक तत्वों की कमी है,
1: कमी हो जाती
0: और
1: है
0: उसके कारण हमारी मिट्टी की जो कैपेसिटी है वो घटती जा रही है।
1: जी। डॉक्टर आप आपसे बात जारी रखेंगे। पहले हमारे श्रोता जुड़ गए हैं शिमला से, राकेश जी।
2: जी नमस्कार, मैं राकेश
1: जी
2: राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखाई शिमला हिमाचल प्रदेश। और सबसे पहले तो आपको पूरी आकाशवाणी टीम को आकाशवाणी की 90 स्थापना की हार्दिक शुभकामनाएं।
1: धन्यवाद
2: जी, तो मेरा डॉक्टर साहब से एक सवाल है कि हमारे एप्पल के पेड़ लगे हुए हैं, एप्पल के बाग, तो
1: जी।
2: मैं इसमें ये जानना चाहता हूँ कि जब हम खाद डालते हैं तो इसमें क्या क्या किस तरह से हम काबू किया जाए, कितनी हमें मात्रा में खाद डालनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम ज्यादा खाद का उपयोग कर लेते तो हमारे जो है एप्पल की जड़ें खराब हो जाती है, ये मेरा प्रश्न है।
1: डॉक्टर मीना
0: तो राकेश जी, जैसे आप बता रहे हैं कि देखो एप्पल का भी जितना हमारा जो एक्सपीरियंस है किसानों से जो चर्चा में आया, वो क्या है ना, ज़्यादातर आपकी मिट्टियाँ अम्लीयता हैं, और अम्लीयता लगातार, जैसे आप कहना कभी मिट्टी परीक्षण नहीं करवा रहे, कई बार क्या है ना मिट्टी की, जैसे कई कई जगह थोड़ी गहराई का भी एक इश्यू आता है, और आप मिट्टी का जब टेस्ट कराएंगे तो आपके यहाँ जैसे देखा गया है कि कैल्शियम वगैरह की भी बहुत कमी पाई जा रही है, और उसके कारण जो एप्पल का जो पौधा है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, क्योंकि एसिडिटी ज़्यादा हो गई, तो उस कारण से आपका जैसे और भी पोषक तत्व हैं जैसे बोरोन है, जिंक है, ये कई बार क्या होता है ना, कहीं कहीं जगह बहुत अधिक हो जाता है, कई बार डेफिशिएंट भी होता है, मतलब कई बार किसान भाई सोचते हैं कि हमारी तो अम्लीय मिट्टी है तो यहाँ पे सूक्ष्म पोषक तत्वों की पर्याप्तता है, ऐसा नहीं है। बोरोन है,
1: जी
0: बोरोन एक नंबर वन, जो मतलब कैल्शियम और बोरोन, ये दोनों जो एप्पल का जो हम अभी तक पाए हैं कि ये दोनों का बहुत ज़्यादा रोल है, और इसकी कमी कमी बहुत ज़्यादा है, किसान भाई कभी भी कैल्शियम और बोरोन कभी नहीं डाल रहा,
1: तो इसलिए
0: तो
1: सॉइल टेस्टिंग समय समय पर बहुत
0: बहुत
1: जरूरी है कि जो
0: जरूरी है।
1: किसान कराते रहें। छत्तीसगढ़ से एक हमारे श्रोता जुड़े हैं, योगेश झांगड़े जी।
3: जी नमस्ते। हाँ
1: नमस्ते
3: जी, हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
1: जी जी
3: हम ये जानना चाहते हैं विशेष रूप से, जो हम लोग फसल काटने के बाद जो हमारे अवशेष बचते हैं फसल के, तो उनके लिए हमारे पास वैकल्पिक व्यवस्थाएं क्या क्या हो सकता है उसको सही प्रबंधन करने के लिए।
1: डॉक्टर डबास,
4: योगेश जी, जो भी हमारे फसल जो हम अवशेष बचते हैं इनको हम खाद के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने एक पूसा संस्था ने एक अलग से एक वो बनाया है जिसको वेस्ट डिकम्पोजर कहते हैं, उसका स्प्रे करके और पानी लगा के उसको अगर इन अवशेषों को मिट्टी में मिला देते हैं तो ये खाद में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे मिट्टी का जो ऑर्गेनिक कार्बन उसको भी बढ़ाते हैं और साथ साथ में पोषक तत्व तो भी सप्लाई करते हैं, और ये मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाते हैं। एक्चुअली मिट्टी में 3 प्रकार के गुण होते हैं, एक रासायनिक, भौतिक और जैविक। जब तक तीनों में सुधार नहीं होगा हमारी खेती अच्छी नहीं हो सकती। अगर हम रासायनिक खाद प्रयोग करते हैं तो एक गुण में तो सुधार होता है, और वो भी 1 या 2 पोषक तत्वों के लिए, लेकिन बाकी गुणों का ह्रास होता है। तो हमें जो हमारे देसी खाद हैं इन पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, खासकर बायोगैस सलरी, वर्मी कंपोस्टिंग और उसके बाद अच्छी सड़ी गली खाद। अभी हमारे एक सेब वाले भाई का सवाल था कि उनकी जड़ों में कई बार दिक्कत आती है, तो जड़ों में कई बार अगर किसान भाई कच्चे खाद का प्रयोग करते हैं तो उसमें भी फंगस लगने की वजह से पेड़ को नुकसान हो सकता है। तो मैं उन किसानों को कहूंगा कि अपने खाद के अंदर या तो ट्राइकोडर्मा बिल्डी या सुडोमोनास, ये जैविक चीजें हैं, इनका अगर प्रयोग करते हैं तो उससे जो नुकसानदायक फंगस है, फफूंदी है, ये उसके नुकसान को कम कर देते हैं और उसको सही खाद में परिवर्तित करने के साथ साथ में उसकी उपयोगिता को और बढ़ा देते हैं। तो हमें उस बात का ध्यान रखना है, और जितनी भी फसल अवशेष है उनका अगर हम उपयोग करते हैं तो उससे मिट्टी को ज़्यादा लाभ होता है। तो मैं सभी किसानों को कहूंगा कि वो अपने फसल अवशेषों को मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दें, और इस तरह से मिलाएं कि वो अपनी अगली फसल के काम आ जाए।
1: डॉक्टर दबास, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसे पराली जलाने की जो समस्या हम देख रहे हैं, बल्कि अगर ये जो अवशेष बचते हैं उसको हम मिट्टी में ही मिलाएं, उसको वहीं प्रबंधित करें, तो पर्यावरण को भी कम नुकसान होगा। इंदौर से जुड़े हैं हमारे साथ अनिल जी। हेलो
5: हेलो
1: जी अनिल जी।
5: मैम, हमारा सवाल ये है कि जैसे कि हर वर्ष किसानों को कभी ठंड के मौसम में, कभी बारिश के मौसम में हमेशा नुकसान उठाना पड़ता है, और सरकार तो भरपूर कोशिश करती है उनके खेतों में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की, लेकिन जरूरी नहीं कि हजारों लाखों किसानों के पास सरकार बिल्कुल एक एक किसान के पास पहुंचे जो उनके नुकसान की भरपाई करे। तो जो राज्य स्तर के स्तर पर या नगर निगम के स्तर पर क्या क्या उपाय किया जा सकता है किसानों के खेत बचाने के लिए?

0: मैं अनिल जी को ये बताना चाहूंगा कि कृषि जो है एक राज्यों का विषय है, और राज्यों का विषय होने के नाते राज्य सरकारों का सबसे बड़ा रोल होता है, इवन आपकी जो क्रॉप इंश्योरेंस है उसको भी दिलवाने में। तो जगह हमारे राजेश का राज्य का कृषि विभाग मजबूत है तो एक तो आपको अच्छी किस्म के सभी इनपुट मिलेंगे, उनकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, साथ साथ में उनकी उपलब्धता भी समय पर बनी रहेगी, और इस किस्म की कोई विपदा आएगी तो उसमें भी वो ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। तो हमारे राज्य में जो कृषि विभाग है वो अगर एक्टिव है तो वो सेंटर की भी मदद उसमें आपके किसानों को ज़्यादा जल्दी मिलती है। तो हमारे राज्य स्तर पर ये होना बहुत जरूरी है। तो हमें अपने कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग और बागवानी विभाग या पशुपालन विभाग, इन सब के संपर्क में रहना चाहिए। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र की हो या राज्यों की हो, वो इन्हीं के माध्यम से लागू होती हैं। तो इन योजनाओं का सही लाभ उठाना है तो हमें इन विभागों से बहुत ही अच्छी तरह संपर्क रखना है और अच्छा कोऑर्डिनेशन करते हुए इन सब योजनाओं का लाभ उठाना है। सरकार काफी कुछ काम कर रही है केवल किसानों की मदद के लिए, लेकिन मदद तभी हो पाएगी जब किसान भी जागरूक हो और किसानों के जो संगठन बने आजकल किसान उत्पादन संगठन, ये उसमें और अच्छा योगदान कर सकते हैं। तो इनके माध्यम से भी हम इन विभागों के साथ कोऑर्डिनेट करके अपने किसानों को लाभ दिलवा सकते हैं।
1: उत्तर प्रदेश की मथुरा से जुड़े हैं चौधरी महेंद्र सिंह जी। नमस्कार महेंद्र जी, स्वागत है कार्यक्रम में।
2: जी नमस्कार। नमस्कार आदरणीय कृषि विशेषज्ञ महोदय को भी नमस्कार।
3: नमस्कार जी।
2: सर मैं ये जानना चाहता हूँ, हर किसान अच्छे उत्पादन हेतु ज्यादा से ज्यादा उर्वरक खेत में डालता है छोड़ता है, लेकिन उससे पहले और मिट्टी का परीक्षण कराना बहुत जरूरी है। तो खेत के चारों कोने से मिट्टी ली जाए और कितनी गहरी ली जाए।
1: जी डॉक्टर मीना।
3: हाँ महेंद्र जी, जो आप बोल रहे हैं ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जब भी हम सैंपल लेते हैं तो चारों कॉर्नर को टारगेट नहीं करना है हमारा, जो क्योंकि आप देखेंगे खेत के चारों तरफ यदि दो दो मीटर का एरिया देखेंगे वो सबसे अच्छा और फर्टाइल होता है। तो आपको बॉर्डर पहले 2 मीटर छोड़ना है और जितना ओपन है इवन पेड़ और बिल्डिंग कुएं जो भी आपकी स्ट्रक्चर है उसके पास से भी नहीं लेना, लेकिन जितना खुला जगह है वहां से आपसे 15 से 20 जगह से मिट्टी लेना है। और मिट्टी की गहराई, जैसे जो आपकी सीजनल फसल है जो एक सीजन में खत्म होती हैं, उनके लिए 0 से 15 सेंटीमीटर की गहराई का सैंपल चाहिए। यदि आपको बाग या मेडिसिनल प्लांट जो पेरिनियल जो कई वर्षों तक चलती हैं ऐसी फसल उगानी है तो आपको प्रोफाइल सैंपल लेना है, और वो सैंपल लेके आपको जैसे मतलब लैब के लिए आपको 300 से 500 ग्राम मिट्टी आपको भेजनी है। ऐसा नहीं कि आपने 15 से 20 जगह से 3 किलो 4 किलो मिट्टी ले लिया और सबको फिर कैरी करें, तो वो नहीं है। लेकिन आप ये जो आपने मैं बोला है ये बिल्कुल सही नहीं है, चारों कॉर्नर को कभी भी आपको सैंपल में मतलब ऐसा जो लेते हैं वो गलत सैंपल है। तो आपको यही है कि बॉर्डर इफेक्ट छोड़िए और जितना ओपन एरिया है वहां से 15 से 20 जगह से मिट्टी उठाइए और उसको अच्छे से मिक्स करके और उसमें से 300 से 500 ग्राम अपनी लैब को सैंपल चाहिए होता है।
1: जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। और समय समय पर श्रोताओं जो हमारे किसान भाई सुन रहे हैं, समय समय पर सॉइल टेस्टिंग कराते रहनी चाहिए, और सरकार ने इसके लिए योजना भी मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी शुरू की है तो उसका लाभ जरूर लें। व्हाट्सएप पे भी हमारे पास एक प्रश्न आया है मध्य प्रदेश के पन्ना से हर्षवर्धन पांडे जी का। उन्होंने पूछा है कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत किसानों को कौन सी खेती करनी चाहिए।
3: देखो सबसे बड़ी बात है कि खेत बचाओ जो अभियान है वो विशेषकर जो हमारी मिट्टियाँ हैं धीरे धीरे जो मतलब उनकी उपजाऊता घटती जा रही है, उत्पादकता घटती जा रही है तो और बैरन होती जा रही है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। जैसे कि ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं या कभी हम ऑर्गेनिक मेन्योर जैविक खादों का कभी उपयोग नहीं कर रहे, फसल चक्र नहीं अपना रहे, कभी भी हमने दलहनी फसलें नहीं उगाते, तो इनसे क्या है ना धीरे धीरे नकारात्मक प्रभाव पड़ता जा रहा है। तो हमारा जो इसमें जो फसल खेत बचाओ अभियान, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम कैसे मिट्टी की उत्पादकता और उसकी उर्वरकता हम कैसे बढ़ाएं। और इसमें सबसे बढ़िया है कि आप समय समय पे जैसे मान लो आप वर्मी कंपोस्ट और आप कंपोस्ट गोबर की खाद नहीं कर सकते तो हरी खाद आप जरूर कीजिए, वो नहीं कर सकते तो अभी जैसे हम अब एक श्रोता ने हमसे पूछा था कि क्रॉप रेसिड्यू का जो फसल अवशेष हैं उनको आप वहीं पे जैसे पूसा डिकम्पोजर है ऐसे बहुत सारे डिकम्पोजर हैं उनका उपयोग करके उनको वहीं गलन करके, मतलब अल्टीमेट ये है कि हमको मिट्टी को कार्बन देना है और कार्बन देंगे तो वो जैसे हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन तो वो उसका सॉइल का हीमोग्लोबिन है, यदि जैसे जैसे कार्बन घटता जाता है मिट्टी की अपनी शक्ति है वो कम होती जाती है। तो किसान भाइयों को यही है कि ऐसी फसलें अपनाएं जिसके द्वारा हम ज्यादा से ज्यादा अवशेष या हम ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल मिट्टी को दे पाएं और उसकी उर्वरकता हम बढ़ा पाएं।
1: डॉक्टर जैसे अभी हम बात कर रहे हैं जैविक खेत, गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट के

0: बारे में। हरिकाद मतलब इन तकनीकों को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है मृदा जो पोषक तत्वों को बढ़ाने में, डॉक्टर नवाज साहब?
1: जैसा कि आप जानते हैं कि हमें जितने भी खादों के बारे में डॉक्टर साहब मीना ने जिक्र किया है, एक्चुअली जो हरी खाद है ये तो हमेशा सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के साथ साथ में उसका ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ाती है, और साथ साथ में मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाने के साथ साथ में उसके जो भौतिक गुणों में उनमें भी काफी सुधार लाती है। तो हमें समय समय पर इसका उपयोग करना चाहिए, और अगर हम उपयोग नहीं कर पाते हरी खाद का तो हमें दो फसलों के बीच में एक दलहनी फसल जरूर लेनी चाहिए। उसमें क्या होता है, दलहनी फसल काफी मात्रा में नाइट्रोजन भी फिक्स करती है और हमारा ऑर्गेनिक कार्बन भी बढ़ाने में मदद करती है, और उसमें हम केवल फली का उत्पादन ले लें यानी दाना आदि का उत्पादन ले लें, बाकी पौधों को अगर सॉयल में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं तो हरी खाद का भी काम करता है। एक तो ये बात होगी, दूसरी बात है कि जितनी भी हमारे पास पशुओं की संख्या आजकल संसार में सबसे ज्यादा है, और आज हम काफी बड़ी मात्रा में लगभग 2 लाख करोड़ के करीब रुपए खर्च करते हैं विदेशों या तो खाद आयात करने में या उनके ऊपर सब्सिडी देने में, जबकि हमारे जो अपने संसाधन है वो वेस्ट हो रहे हैं, जिनकी वजह से नदियां भी पोल्यूट हो रही हैं और साथ साथ में हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी बाहर से मंगाने पड़ते हैं, तो उनका भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। अगर हम इन सबको बायोगैस के माध्यम से, एनारोबिक डाइजेशन के माध्यम से उनका खाद भी बनाए, साथ में उसका गैस का उपयोग भी करें, तो ये हमारे मिट्टी के स्वास्थ्य को भी सुधारेगा, साथ साथ में हमारा पैसा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जाता है उसकी भी बचत करेगा, और हमारी गैस के माध्यम से भी हमें स्वावलंबी गांव बन सकते हैं। और आजकल इस गैस के माध्यम से हम गाड़ियां भी चला रहे हैं तो उसका भी काफी बड़ा लाभ हो सकता है, और जबकि ये हमें बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ में मैं ये कहना चाहूंगा, जितने हमारे देसी खाद अगर बनाने का कंपोस्ट भी बनाते हैं तो उसमें भी आजकल बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, यानी कि कंपोस्ट बनाते समय उन चीजों को अगर हम इनकॉर्पोरेट लगा देंगे तो एक तो कंपोस्ट जल्दी बनेगा, कंपोस्ट की गुणवत्ता बेटर होगी, इसमें एक तो वेस्ट डिकम्पोजर होगा, इसके साथ साथ में हमारे पास कुछ जैविक खाद है जिनके माध्यम से दे सकते हैं, या कुछ जैविक ऐसी भी चीजें हैं जो फफूंद नाशक है, जैसे ट्राइकोडर्मा वीडी का जिक्र किया था, सिडोमोनस का जिक्र किया था, उनका भी उपयोग कर सकते हैं। तीसरी बात है, हमें एक तो खरपतवारों का प्रबंधन बहुत अच्छी तरह करना है जिससे कि हम कीड़े के प्रकोप को या जो नुकसान को भी कम कर पाए। एक पानी हमारे पास सीमित संसाधन है, तो पानी का सदुपयोग होना या सही मात्रा में उपयोग होना बहुत जरूरी है। एक्सेस पानी हमारे न्यूट्रिएंट को भी लॉस करता है, खरपतवारों को भी बढ़ावा देता है, कीड़े और बीमारी को भी बढ़ावा देता है, तो इसका उपयोग ठीक से होना बहुत जरूरी है। और कई बार जब कम बारिश होती है तो उसमें और ज्यादा इसका महत्व बढ़ जाता है, तो इस साल हमारे किसानों को बहुत जागरूक रहना चाहिए कि बरसात से पहले ही अपने खेत की मेड़ मजबूत रखें और अधिक से अधिक पानी खेत के अंदर जाए और बह के ना जाए, क्योंकि जो पानी बह के जाता है वो न्यूट्रिएंट को भी लेके जाता है और नुकसान करता है। तो हमारे किसानों को उन सब बातों का विशेष ध्यान रखना,
0: ये बहुत जरूरी बात आपने कही कि जल संरक्षण भी साथ साथ बहुत जरूरी है। उड़ीसा से हमारे साथ एक श्रोता जुड़े हैं, देशदीप दास जी। हेलो
2: जी, नमस्ते।
0: नमस्कार
2: जी, मेरा प्रश्न है
0: जी,
2: बीज उपचार करने से फसलों को बीमारियों से कैसे बचाया जा सकता है?
1: मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि फसलों बीज उपचार करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो बीज के माध्यम से ही अगली फसल में जाती हैं, या अगर हम उसको बीज को उपचार कर देते तो मिट्टी में भी कुछ अगर फफूंद है तो उसका रोकथाम हो जाती है, जमाव भी अच्छा होता, पौधा बहुत हेल्दी होता है। और बीज उपचार करने के लिए जितनी भी फसलें हैं उनके साथ साथ में दिया होता है कि हमें किस चीज़ से उपचार करना है। जैसे कि मैं छोटा एक एग्जाम्पल लेता हूं कि हमारे यहाँ ब्लैक समटिक गेहूं में बीमार वो आती है और इससे बाली काली हो जाती है, उसमें दाना नहीं बनता है, और यही इसी किस्म के अगर बीज का हम बार बार उपयोग करेंगे तो काफी बड़ा नुकसान होता है। लेकिन इसमें अगर हम सही से फफूंदनाशक दवाई से बीज उपचार कर देंगे तो इस बीमारी का स्वतः ही नियंत्रण हो जाएगा, तो आपके आगे फसल में भी नहीं जाएगा, आप बीज भी अच्छा पैदा कर पाओगे और बहुत अच्छा कर पाओगे। तो बीज उपचार बहुत ही जरूरी है, बीज उपचार के लिए दोनों चीजें उपलब्ध हैं, रासायनिक भी उपलब्ध हैं और आजकल जैविक भी कई सारे ऐसे संसाधन हैं जो कि जिनकी रिकमेंडेशन की जाती है कि बीज बोने से पहले हम उसका उपचार कैसे करें। कई बार हमें जो हमारी प्योद होती है जैसे हमने रुपाई करनी है तो उसमें भी फफूंदनाशक दवाई भी काफी प्रयोग किया जाता है, और साथ साथ में कुछ जीवाणु खाद के टीके भी होते हैं जिनका बीज के माध्यम से भी प्रयोग करते हैं, और साथ साथ में इसको पौध को भी इसमें अगर उसको उपचारित करके लगाते हैं तो खाद की भी बचत होती है और किसान का उत्पादन लागत बढ़ती है। कुछ हमारे खाद के टीके ऐसे हैं जैसे आपकी धान की फसल है उसमें ब्लूग्रीन एल्गी है या अजूला है, तो ये भी ऐसी चीजें हैं जो कम खर्चे में किसानों को ज्यादा लाभ देती है, इनका भी उपयोग कर सकते हैं।
0: छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं इंद्रभान सिंह जी।
3: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कॉलेज जिला कुंजा छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ
0: जी।
3: प्रश्न यह है, मैदानी भागों में की जाने वाली खेतों में तो कृषि उपकरणों का उपयोग आज किया जाने लगा है, लेकिन ऊंची नीची जमीनों पर और सुदूर पहाड़ियों में की जाने वाली खेती में जनजाति

0: लोग नवीन उपकरणों का प्रयोग नहीं करते हैं, ऐसा क्यों?
1: डॉक्टर मीना आप क्या कहेंगे?
2: जैसे इंद्रमान जी जो पूछ रहे हैं कि जैसे ऊंचे नीचे जो एरिया है प्लेन में, तो देखो अभी मैकेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है और अभी हम बहुत सारे जैसे मेजोरिटी हमारे किसान भाई मतलब मशीनरी का उपयोग करते हैं, लेकिन जैसे ऊंचे नीचे भागे तो वहां पे क्या ना एक विशेष स्पेशल मशीनरी की जरूरत होती है, मतलब छोटी मशीनरियों की जरूरत होती है जो उसको हम आसानी से मतलब उन पे वहां पे एरिया में ले जा सकते हैं, कर सकते हैं। दूसरा उनका था कि जनजाति जो पीपल भाई हैं कि वो उनका उपयोग मतलब कम कर पा रहे हैं। तो देखो सबसे बड़ी बात वही है कि जैसे एक तो उनकी अवेलेबलता मतलब वो ऐसी छोटी मशीनें अवेलेबल हैं कि नहीं है, दूसरी है किसान की जागरूकता। जैसे हम जो जनजाति किसान भाई हैं अभी उनमें मतलब मशीनरी के बारे में अवेयरनेस नहीं है, बहुत कम लोग जान पाते हैं कि किसके लिए कौन सी मशीन उपलब्ध है। और जैसे छत्तीसगढ़ में है या MP में है अपने बहुत सारे जो इंजीनियरिंग मशीनरी के जो संस्थान हैं और वहाँ पे छोटी छोटी मशीनें अवेलेबल हैं, बस बात यही है कि उनको किसान तक पहुँच नहीं है और किसान को भी उनके बारे में मतलब नॉलेज नहीं है कि
1: कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर अगर जिसपे किसान कॉल कर सकते हो और जो उनकी जिज्ञासा है, जो अगर समस्या है वो पूछ सकते हो।
3: मैं इसमें दो बार ऐड करना चाहूंगा कि हमारा जो और भारत सरकार है उन्होंने एक अलग से हेल्पलाइन नंबर दे रखा है किसान कॉल सेंटर का, और वो पूरे देश में है और कहीं का किसान अगर वहां से कॉल करता है तो उसके राज्य के ही हेल्पलाइन सेंटर पे जाएगा और उसकी जिज्ञासा का समाधान होगा और जो भी जानकारी उसको मिलेगी। ये नंबर है 1800 1551
1: जी।
3: तो ये हमारा किसान कॉल सेंटर का नंबर, इसी तरह पूसा संस्थान का भी कॉल सेंटर का नंबर है और वो है 1800118989। तो उसमें भी कर सकते हैं। पूसा में एक और भी नंबर है जिसमें आपका यहाँ का STD कोड लगाएंगे 0112584 1670, ये भी एक नंबर है जो पूसा संस्थान में जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार के जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके भी नंबर हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ एक और जो भी हमारे से एक साथी ने क्वेश्चन पूछा था ऊंची नीची जमीनों में, देखो जो ऊंची नीची जमीनों में जब टेक्नोलॉजी गई है तभी बहुत उत्पादन हुआ। खासकर अगर मिसार का हरियाणा का नंबर बात करें या राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे स्प्रिंकलर इरीगेशन और ड्रिप इरीगेशन से जहाँ पे कोई पैदावार नहीं होती थी आज वो एरिया बहुत ही उपजाऊ हो चुके हैं। तो ये टेक्नोलॉजी तो जा रही है, लेकिन हाँ क्योंकि जनजाति क्षेत्र में कम जा रही है उसको जाने के लिए उनके स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी भी वहां पे डेवलप हो रही है और प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन और भी प्रयास करने की आवश्यकता है।
1: जी हरियाणा के हिसार से जुड़े हैं राजेंद्र जी।
4: नमस्कार जी प्रियंका जी और विशेषज्ञ जी को भी नमस्कार जी।
2: नमस्कार जी
4: प्रियंका जी, आपने मनोज कुमार की फिल्म के बारे में वो गीत बताया, अच्छे बताए, और धरती कहे पुकार के ये भी एक
1: जी। राजेंद्र जी हमारे पास समय कम है, अपना प्रश्न पूछे।
4: जी जी, जो शहर का वेस्ट पानी होता है वो सीधा खेतों में जाता है, इसमें केमिकल तरह तरह के केमिकल मिले होते हैं, इसको सफाई करके अगर पानी को खेतों में डाले जाए तो बंजर होने से खेती को बचाया जा सकता है? और क्या किसी की खेती बंजर हो चुकी है तो क्या इस पर कोई लोन मिलना?
1: जी डॉक्टर मीना।
2: हाँ, तो अभी राजेंद्र जी जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, देखो ऐसा नहीं है, और हमारे जो सरकारें हैं वो जितना भी हमारा वेस्ट आ रहा है उसको ट्रीट करके, जैसे हमारे स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं और ये सब ट्रीट करके ही उसको डिस्पोज कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ऐसा यदि मान लो उनको देखने में आया है तो उसको क्या है ना, थोड़ा अपने लेवल पे भी किसान भाई इकट्ठा करके उसको ट्रीट कर सकते हैं। अब उसमें दो तरह की होता है, कभी कभी जैसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, कभी कभी साल्ट की प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज को पहले हम उसका क्या है ना, जो भी वेस्ट आ रहा है उनके एरिया में उसको पहले जांच करा लें, क्योंकि जांच से ही हमें एग्जैक्ट पता लगेगा कि इसमें किस तरह की समस्या है, कोई केमिकल की समस्या है कि साल्ट की समस्या है या बायोलॉजिकल सिस्टम, क्योंकि अलग अलग तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। और उसका एक बार जब पता लग गया कि इसमें ये प्रॉब्लम है तो उसका निवारण आराम से उपलब्ध है, और उसकी परामर्श करके वो उसका ट्रीट करके उसको फसल के लिए वो कर सकते हैं। दूसरा वो कह रहे थे कि इसके लिए देखो सरकार का बहुत सारे प्लान चल रहे हैं, जो जैसे हमारे जमीन सुधार के लिए, तो उसमें जैसे मान लो कहीं लवणीयता हो गई, क्षारीयता हो गई, अम्लीयता हो गई, उस कारण से कभी कभी क्योंकि एसिडिक नेचर का भी तो pH डाउन हो जाता है, तो उनको सुधार के लिए बहुत सारे प्रोग्राम है, तो उनकी मदद वो ले सकते हैं।
1: डॉक्टर दबास, आपसे अंत में ये सवाल जानना चाहूंगी, क्योंकि उर्वरक और का जो अत्यधिक उपयोग होता है उससे हमारे पर्यावरण को, हमारे स्वास्थ्य को, जो मानव स्वास्थ्य की बात करते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है?
3: देखो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, कोई भी चीज हम अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं उसका बहुत ही नुकसान होता है, और यही उर्वरकों का हाल है। जब हम उसको सही हम फसल से ज्यादा

0: संतुलित मात्रा में प्रयोग करते हैं तो उसमें से फसल तो उसका कम प्रयोग कर पाते हैं, लेकिन उसमें से अधिकतर भाग या तो वातावरण में जाता है जो उसको प्रदूषित करता है, या मिट्टी में या पानी के होते हुए हमारे पानी को भी प्रदूषित करता है, क्योंकि हमें सही मात्रा में प्रयोग करना बहुत जरूरी है। और हमें ये भी देखना है कि हमारी मिट्टी कैसी है, उसमें कौन से किस्म के उर्वरक का और कब और कितना उपयोग करना है, तो ये जानकारी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से लग सकती है। तो हर किसान को अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में रहना चाहिए और अपने जिले के बारे में जाने, हमारी कौन सी समस्या, उनका समाधान क्या है, उनकी रिकमेंडेशन क्या है, क्योंकि यहाँ पे पूरे भारत सरकार के लेवल पे हमको एक रिकमेंडेशन नहीं बता सकते, वो जगह जगह पे वेरी करेगी। और उसको अगर सही मात्रा में देखना तो हमें कृषि विज्ञान केंद्र से या कृषि विश्वविद्यालय से या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जो संस्थान है उनके माध्यम से मिलकर उसको हम टैकल कर सकते हैं। किसानों को संगठित कर होकर एक सामूहिक प्रयास करते हैं उसका ज्यादा लाभ मिलता है। पानी का भी हमें प्रॉपर शब्द उपयोग करना चाहिए और मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखना है, तो आपको समेकित पोषक तत्व प्रबंध करना बहुत ही जरूरी है।
1: तो जो समय जो कह रहा है, जो आज की जरूरत है कि हम मृदा स्वास्थ्य को समझें, उर्वरकों का संतुलित और वैज्ञानिक उपयोग करें और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए खेतों को सुरक्षित रखें। डॉक्टर डबास, डॉक्टर मीणा, आप दोनों का धन्यवाद, आपने इस चर्चा में भाग लिया। अपने श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी पब्लिक स्पीक में एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।
0: नमस्कार।

मीटिंग वेव 196.1 मीटर 30,530 किलोहर्ट्ज पर ही आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद, जो कि फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम है। संवादक गरिमा शाक्य, प्रस्तुतकर्ता अनेंद्र सिंह।

0: हेलो मेरी पसंद, एक ऐसा सुरीला सफर जहां गीत सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचते बल्कि सीधे दिल में उतर जाते हैं। यहां हर नगमा अपने साथ लेकर आता है कोई याद, कोई मुस्कान, कोई भूला बिसरा लम्हा और दिल को छू जाने वाला एक प्यारा सा एहसास। कहते हैं संगीत वह साथी है जो हर मूड में हमारे साथ रहता है। कभी कोई गीत हमें बीते हुए दिनों की गलियों में ले जाता है, कभी किसी अपने की याद ताजा करा देता है और कभी यूं ही मन को हल्का कर चेहरे पर मुस्कान सजा देता है। तो आइए आज की इस सुरीली मुलाकात में हम फिर से खोलते हैं यादों की पोटली, सुनते हैं आपकी पसंद के खूबसूरत गीत और सजाते हैं सुरों, एहसासों और फरमाइशों से भरी एक प्यारी सी महफिल। अगले कुछ पलों तक आप बस दिल को थोड़ा आराम दीजिए, मन को संगीत के हवाले कीजिए और खो जाइए उन नगमों में जो कभी आपकी यादों का हिस्सा रहे हैं और आज फिर आपके दिल के करीब आने वाले हैं, क्योंकि अब शुरू हो रहा है सुरों, यादों और आपकी पसंद से सजा आपका अपना कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद। आइए अब सुनते हैं अपने पहले श्रोता को।
1: हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है, कौन बात कर रहे हैं?
2: मेरा नाम नीलेश।
1: नीलेश आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: मैम मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ।
1: अच्छा, और आप क्या करते हैं?
2: मैं बाटा में स्टोर मैनेजर हूँ।
1: अच्छा, शूज का शोरूम, राइट?
2: जी मैम।
1: तो इसके अलावा आप क्या करते हैं?
2: इसके अलावा मैम वैसे तो कुछ नहीं करते, एक गाना गाने का मैंने किसी के लिए डेडिकेट करना था।
1: अच्छा, आपको गीत संगीत का शौक है?
2: जी मैम।
1: जी, कौन सा गीत आज सुनने के लिए आपने कॉल किया है?
2: मैम कुमार सानू का कोई सा भी हो अच्छा होना चाहिए, और या सोनू निगम का हो। एक मेरे भैया हैं जिन्हें मैं लाइक करता हूँ, तो उनके लिए गाना गाना था।
1: तो सोनू निगम का कोई सॉन्ग प्ले करते हो?
2: जी मैडम।
1: ठीक है, आपको सोनू निगम का गीत हम सुनवाते हैं और आप आगे भी कॉल करते रहिएगा, बने रहिएगा आकाशवाणी आगरा के साथ।
2: जी मैम,
1: धन्यवाद कॉल करने के लिए।

0: हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन बात कर रहे हैं?
1: जी, मैं भानु भूषण बोल रहा हूँ,
0: भानु जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: कमला नगर आगरा से। जी,
0: अच्छा, और आप क्या करते हैं?
1: मैं जीएसटी का काम करता हूँ मैडम।
0: जी, पूरा दिन इसके अलावा और क्या करते हैं आप? कोई शौक, आपका कोई हॉबी?
1: क्रिकेट देखना बहुत पसंद है मेरे को, गाने सुनना बहुत पसंद है, और आकाशवाणी आगरा में आप लोगों को सुनना बहुत पसंद है।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सुनकर अच्छा लगा कि आप आकाशवाणी आगरा के प्रोग्राम सुनते हैं। तो आपको कौन से प्रोग्राम्स पसंद हैं यहाँ के?
1: मेरी तो आंखें ही खुलती है मैडम, आकाशवाणी आगरा के पहली जो पहला अनाउंसमेंट आता है उसी
0: जी,
1: से आंखें खुलती है मेरी, और न्यूज सुनना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है।
0: अच्छा, हाँ, ये तो अच्छी बात है।
1: हाँ, क्योंकि आपके न्यूज सुनकर ही एग्जाम्स की तैयारी होती है, बोलना आ जाता है, प्रोनाउंसिएशन आ जाता है, बिल्कुल एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन अगर मिलता है तो आकाशवाणी की न्यूज से मिलता है।
0: जी, आप बहुत कुछ सीख रहे हैं हमसे।
1: जी हाँ, बिल्कुल, मैंने हमेशा आकाशवाणी आगरा से बहुत सीखा।
0: जी, तो आज आपने कौन सा गीत सुनने के लिए कॉल किया है?
1: जी, फरमाइश है, जान से गुजरते हैं, फिल्म का नाम धुरंधर।
0: हम आपको आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं और आप
1: जी
0: हमें आगे भी कॉल करते रहिएगा, बने
1: जी मैम,
0: रहिएगा आकाशवाणी आकर के साथ।
1: जी
0: धन्यवाद।
1: धन्यवाद मैम।

0: दोस्तों, आपको बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हर सोमवार रात 10 बजे सुन सकते हैं। इसका पुनः प्रसारण हर मंगलवार दोपहर 3 बजे किया जाएगा। और अगर आप अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं तो अपनी फरमाइश दर्ज कराने के लिए आप हमें हर शुक्रवार दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 0562-350-1852 और 0562-2970-337। तो अपनी पसंद हम तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि आपकी फरमाइश ही बनाती है इस कार्यक्रम को और भी खास। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अपने अगले श्रोता को।
1: हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन बात कर रहे हैं?
2: मेरा नाम यश
1: है। यश, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ।
1: अच्छा, और आप क्या करते हैं?
2: मैं भी स्टूडेंट हूँ।
1: स्टूडेंट है, क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप?
2: 12th में हूँ मैं।
1: अच्छा, 12th में है, तो साइंस स्ट्रीम है या आर्ट्स स्ट्रीम है आपकी?
2: साइंस।
1: साइंस, तो आगे का क्या सोचा है आपने साइंस से पढ़ने के बाद?
2: मैडम, वैसे तो बाउंसर का ज्यादा शौक है, रेसलिंग का।
1: अच्छा,
2: इंटरनेशनल लेवल पे खेलना है।
1: अच्छा, तो आप उसके लिए तैयारी कर रहे हैं?
2: जी मैडम।
1: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और गीत संगीत का शौक रखते हैं आप?
2: जी मैम।
1: तो आज कौन सा गीत सुनने के लिए आपने कॉल किया है?
2: मैम, कोई सा भी सुना दीजिए मेरे फ्रेंड के लिए।
1: कोई तो पसंद होगी ना आपकी, कोई सिंगर जिसके सॉन्ग्स आपको पसंद हो, कोई एक्टर जिसके सॉन्ग्स आप देखते हो?
2: मैम, शोले मूवी का ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे।
1: अच्छा, ठीक है, आपको आपकी पसंद का गीत हम सुनवाते हैं और आप आगे भी कॉल करते रहिएगा, बने रहिएगा आकाशवाणी आगरा के साथ। कॉल करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन बात कर रहे हैं?
1: मैडम, मैं आगरा से बात कर रहा हूँ, प्रेम सिंह।
0: प्रेम सिंह, आप क्या करते हैं?
1: मैडम, मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ अभी।
0: अच्छा, आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं?
1: मैं बीकॉम कर रहा हूँ,
0: अच्छा, तो बीकॉम करने के बाद आपने क्या सोचा है, क्या करेंगे आगे?
1: MBA करना है।
0: ओके, ठीक है, तो आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं।
1: हाँ जी मैडम।
0: तो आपके क्या क्या शौक है?
1: मैडम, शौक तो मेरे को है बाइक राइडिंग करना
0: जी,
1: और गाना सुनना, लेकिन
0: अच्छा,
1: आज मैंने आपको फोन इसलिए किया है मैम, क्योंकि मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो रेडियो सुनती है और वो मेरे से रूठ गई है, मेरा फोन नहीं उठा रही है। तो मैंने
0: अच्छा
1: इसलिए फोन किया कि जिससे कि अगर आपकी मदद से, रेडियो की मदद से, अगर मैं
0: जी,
1: उसको मना सकूं तो बहुत अच्छा रहेगा।
0: जी हम बिल्कुल आपकी मदद करेंगे। तो आप उनको कोई एक प्यारा सा सॉन्ग डेडिकेट कर दीजिए। कौन
1: जी मैम, मैं उनको एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: सा सॉन्ग? आप एक काम
1: हेलो।
0: कीजिए,
1: जी जी मैम,
0: डर मूवी का जादू तेरी नजर डेडिकेट कर दीजिए अपनी
1: जी
0: गर्लफ्रेंड
1: जी
0: को।
1: मैम, जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: ठीक है, तो ये गाना आपकी गर्लफ्रेंड के नाम, और आगे भी आप हमें कॉल करते रहिएगा, बने रहिएगा आकाशवाणी आगरा के साथ।
1: जी बिल्कुल मैम, थैंक यू।
0: धन्यवाद।

तो दोस्तों, गीतों और एहसासों से सजी आज की ये प्यारी सी महफिल अब यहीं विराम लेती है, लेकिन संगीत की यही तो खूबसूरती है, कार्यक्रम खत्म हो जाता है पर धुनें दिलों में देर तक गूंजती रहती हैं। आज हमने कुछ यादों को छुआ, कुछ नगमों के साथ मुस्कुराए और आपकी पसंद के गीतों के साथ ये सुरीला सफर तय किया। आपका साथ, आपका प्यार और आपकी पसंद ही हेलो मेरी पसंद को खास बनाती है। इसी उम्मीद के साथ कि आज का कार्यक्रम आपके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान छोड़ गया होगा।

0: मैं गरिमा शाह के लेती हूँ आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे, फिर होंगी गीतों की बात और फिर सजेगी आपकी पसंद की महफिल। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और संगीत से जुड़े रहिए। नमस्कार।
1: पिटम वेव 196.1 मीटर 30,530 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद। आइए अब आपको सुनवाते हैं शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में शहनाई वादन। कलाकार हैं अनंत लाल। राग पूरिया कल्याण पेश कर रहे हैं।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अनंत लाल से रागपुरिया कल्याण। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिसकर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाले देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल हो गया है। ये योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार ने आज नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से मुलाकात की। बैठक में पश्चिम बंगाल के विकास को गति देने, विभिन्न क्षेत्रों में ऋण उपलब्धता बढ़ाने और केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जनधन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम स्वनिधि जैसी प्रमुख योजनाओं का व्यापक अभियान चलाया जाएगा ताकि सभी पात्र लाभार्थियों तक इनका लाभ पहुंच सके। इंडिया ब्लॉक की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सूले शामिल थीं। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि 25 राजनीतिक दलों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
1: सभी ने 5 पॉइंट पे आज सहमति जताई है और इनके लिए इन मुद्दों पर हम डट के काम करेंगे, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।
0: उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक की लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है।
2: पिछली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाया गया था नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी वंदन अधिनियम के लिए, तो इनमें से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आई थी। ये सब नदारद थे। जब पार्लियामेंट में सत्र के दौरान बैठक बुलाई जाती है ये कोई नहीं आते हैं और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि सर्वदलीय बैठक होना चाहिए। जनता ने इनको इनएक्टिव कर दिया है और ये जबरदस्ती एक्टिव होने की कोशिश कर रहे हैं।
0: ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने आज कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष ऋतव्रत बनर्जी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने के फैसले को चुनौती दी है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने का निर्णय संसदीय परंपराओं और नियमों के खिलाफ है। मामले की अगली सुनवाई 11 जून को होगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में आज हुए एक बड़े आग हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने घटना की विस्तृत जांच के भी आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम संयंत्र में जानमाल की हानि पर गहरा

शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में रेडियो जॉकी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बैठक की आयोजना की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के लिए जन जागरूकता अभियान को मजबूत करने पर चर्चा हुई। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन पारी और 300 रन से हराकर अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। मानव सुधार को अपने पहले ही मैच में 7 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।